ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। हमारे सभी श्रोताओं का मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हार्दिक अभिनंदन है।

सुप्रभात की मंगल बेला में आकाशवाणी लखनऊ पर आप सुन रही हैं नमस्कार लखनऊ। आज इस मंगलमय सुप्रभात की बेला में आपके साथ है लवि सिन्हा। ट्यून रखिए मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज। हमको ऊर्जावान और अपने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेन प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 22 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, LPG आपूर्ति, AI सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने ट्यून इन किया है नमस्कार लखनऊ। सुबह के 6:05 पर आप सुनते हैं रोजाना कृषि चर्चा। तो आपको बता दें, आज की चर्चा हमारे किसान भाई बहनों के लिए बड़ी ही उपयोगी है और आज हम जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर जानकारी।
1: शुभ प्रभात। बीज पौधे का वह अंग है जो परिपक्व होने पर नई पीढ़ी को जन्म देता है, यानी बीज से तात्पर्य विभिन्न फसलों के बीज या फिर बीज के समान प्रयुक्त होने वाले पौधों के उन भागों से है जो संवर्धन यानी बुआई अथवा रुपाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न फसलों एवं पौधों के बीज, फल, कंद, जड़युक्त तना, उतक संवर्ध या फिर अन्य भाग को संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार खाद्य अनाज एवं बीज एक दूसरे से भिन्न है। खाद्य अनाज में आनुवंशिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। बीज सामान्यतः एक निश्चित अवधि तक प्रयुक्त रहने के बाद आवश्यकता अनुसार उचित जलवायु एवं तापमान मिलने पर अंकुरित होता है। प्रत्येक स्वस्थ एवं परिपक्व बीज में जीवित पौधे का एक छोटा प्रारूप पाया जाता है जो बड़ा होकर पूर्ण पौधा बनता है या पेड़ बनता है। अधिक उपज देने वाले किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज के प्रयोग से उत्पादन 20% तक बढ़ता है, परंतु इतने प्रयास के बाद भी बोए जाने वाले बीजों की कुल मात्रा का लगभग 30% ही, जो कि 2008 से लेकर 2009 के बीच सर्वे किया गया था, उसमें यह तथ्य सामने आया था। यानी अधिकांशतः किसान स्वयं द्वारा पैदा किए गए बीज का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसी दशा में काफी कुछ प्रयास किया गया सरकार के द्वारा और विभिन्न तरह की कंपनियां हमारे बीच आईं जो विदेशों से भी संबंधित रहीं। उनके बीज अलग तरह के रहे, संकर प्रजाति विशेष रूप से हमारे बीच आई, तो अब यह स्थिति बदलती जा रही है और साल दर साल यह बदल रही है। अच्छा बीज जरूर होना चाहिए, इसलिए आपको यह देखना है कि किसी फसल किस्म विशेष के बीजों में दूसरी फसल या खरपतवार के बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। बीजों की अंकुरण क्षमता को भी परखना चाहिए। फसलों के बीज का मूल्यांकन उनकी अंकुरण क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए फसलों की अंकुरण क्षमता के आधार पर ही प्रति इकाई क्षेत्रफल में बीज की मात्रा निर्धारित करें। सामान्यतः परिपक्व बीज चमकीला, साफ, स्वस्थ एवं भरा हुआ होता है। बीज के आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वस्थ होने पर जीवन क्षमता, स्वस्थ पौधा उत्पन्न करने की क्षमता अच्छी होती है। अपर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई के अभाव, अपरिपक्व होने, बीमारियों द्वारा क्षति पहुंचाने, अधिक नमी एवं ताप पर भंडारण करने पर बीजों की जीवन क्षमता कम या फिर समाप्त हो जाती है। बीज का प्राकृतिक रंग, सुडौलता व आकृति में समानता के साथ साथ वह रोगाणुओं से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। अगर आपने इतना सब कुछ देख लिया तो आप मान करके चलिए कि उपज अच्छी प्राप्त होगी, प्रजातीय शुद्धता बरकरार रहेगी, खरपतवार कम निकलेंगे क्योंकि बीज स्वस्थ होता है तो बढ़वार उसकी तीव्र गति से होती है। अधिक पैदावार व अधिक लाभ आपको इसके परिणाम स्वरूप मिलेगा। बीज की श्रेणियां भी होती हैं जिनको पहचानना, जानना, समझना आवश्यक होता है, जैसे कि प्रजनक सीड जिसे ब्रीडर सीड कहते हैं, आधार सीड को हम फाउंडेशन सीड कहते हैं और सर्टिफाइड सीड जिसे हम प्रमाणित बीज कहते हैं। ये तीन तरह के बीज होते हैं जो बोए जाते हैं फसल उत्पादन के लिए। लेकिन ब्रीडर सीड जो है वह बीज जो पादप प्रजनक या जिस संस्था द्वारा पैदा किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। यह आनुवंशिक रूप से 100% शुद्ध होता है। इसकी थैली पर सुनहरे पीले रंग का लेबल लगा होता है जिस पर फसल एवं किस्म के विवरण के साथ प्रजनक की सील एवं हस्ताक्षर भी होते हैं। आधार बीज प्रजनक बीज से उत्पन्न किया हुआ रहता है। इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इससे आनुवंशिक गुण और शुद्धता बनी रहे। इसके थैलों पर सफेद रंग का टैग लगा होता है जिस पर संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी होते हैं। आधार बीज की भी दो श्रेणी होती है, आधार बीज एक एवं आधार बीज दो। आधार बीज एक से आधार बीज दो उत्पादित किया जा सकता है जिनके मानक समान होते हैं। आधार बीज दो का प्रयोग पुनः आधार बीज बनाने में आप नहीं कर सकते हैं। प्रमाणित बीज जो होता है, सर्टिफाइड बीज बाजार में जो मिल रहे हैं बहुतायत से वही होते हैं। यह आधार बीज की संतति होता है जो बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रमाणित

0: किया जाता है। इनके थैलों पर नीला टैग लगा होता है। बीज की कमी होने पर प्रमाणीकरण संस्था स्वपरागित फसलों में प्रमाणित बीज से प्रमाणित बीज पैदा करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और श्रोता, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की इस जानकारी से लाभ अवश्य हुआ होगा और आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ पर नमस्कार लखनऊ, और ये समय होता है सुविचारों के संग विचार मंथन का।

के अधिपति भी हैं और उनको मकर और कुंभ राशि का स्वामी भी कहा जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को पूर्ण रूप से समर्पित है। कहा जाता है कि शनिदेव का वर्ण नीला और काला है। वो नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और गिद्ध और कौआ उनके वाहन है। उनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वरमुद्रा है। शनिदेव व्यक्ति को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों पर उनकी कृपा दृष्टि और बुरे कर्म करने वालों को प्रभु दंड देते हैं। भक्त शनिवार को संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम नीलांजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चराय जैसे मंत्रों का निरंतर जब भी किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने और जल चढ़ाने तथा जरूरतमंदों को दान देने से भी शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वे व्यक्ति को अनुशासन और उसके कर्म के अनुरूप सही मार्ग पर लाते हैं। शनि देव को न्याय का देवता स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। भगवान शिव ने ही उन्हें तीनों लोकों का न्यायाधिपति नियुक्त किया था, जहां वे बिना किसी भेदभाव के अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का कठोर फल प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो मानव हो या देवता, असुर हो या फिर गंधर्व, सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही वो निष्पक्ष फल देते हैं। इसके पीछे की सही पौराणिक मान्यता ये है कि शनि देव ने कठोर तपस्या करके ये शक्ति प्राप्त की कि वो संसार के हर प्राणी को न्याय दिलाएं। इसके अलावा शनि देव को उनकी न्यायप्रियता के लिए मृत्यु के देवता यमराज से भी सम्मान मिला। ये भी कहा जाता है कि जब ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार को शनि देव का जन्म हुआ, उस समय उनका वर्ण बहुत काला था। पुत्र का ये वर्ण देखकर उनके पिता सूर्यदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने शनिदेव की माता छाया से कहा कि वो उनके पुत्र हो ही नहीं सकते। अपनी माता का अपने पिता द्वारा यह अपमान देखकर शनिदेव को बड़ा आघात पहुंचा। शनिदेव ने माता के अपमान का बदला लेने के लिए और सूर्यदेव से अधिक शक्ति प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या की और अन्य जल त्याग दिए। शनिदेव की भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनसे वर मांगने को कहा। तब शनिदेव ने कहा कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मिले जो मेरे पिता से भी श्रेष्ठ हो और वो शक्ति तीनों लोकों में पूजनीय हो। तब महादेव ने शनिदेव को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान के साथ साथ तीनों लोकों का दंडाधिकारी भी नियुक्त किया। देव ने शनिदेव से कहा कि तुम मानव, देवता, असुर सभी के न्यायाधीश होगे, इसीलिए शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शनि ग्रह को सबसे धीमा ग्रह माना जाता है। यही वो समय होता है जब व्यक्ति जीवन के सबसे जटिल संघर्षों का अनुभव करता है और उस समय ये कहा जाता है कि उसका शनि दोष है या उसकी साढ़े साती या ढैया चल रही है। परंतु वास्तविकता ये है कि ये धीमी गति से चलने वाला ग्रह ही हमारे कर्म का ग्रह है। जो व्यक्ति ईमानदारी से सच के मार्ग पर चलता है, उन्हें शनि देव का आशीष सदैव प्राप्त होता है। उसका जीवन सुख समृद्धि और आनंद से युक्त व्यतीत होता है। वहीं यदि व्यक्ति गलत कर्म करके अपना जीवन यापन करता है, उस पर शनि देव की कृपा दृष्टि कभी नहीं होती। कठोर परिश्रम के बावजूद उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। शनि देव वृद्धावस्था, श्रमिकों एवं निरीह जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में वृद्धजन, माथत एवं पशु पक्षी एवं समस्त जीव जगत के कल्याण एवं सम्मान हेतु उन्मुख हों, जिससे शनि हमारे सत्कर्मों के विधाता बने, न कि मानव जीवन के दंडनायक। इस प्रकार कर्मों के माध्यम से शनि देव की पूजा करने से उनका बड़ा आशीष मिलता है। यही कहा जाएगा कि जो लोग धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, उनको भगवान शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, वरन अपने कर्मों में संतुलन, न्याय और सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। कोई दैवीय शक्ति हमारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि हमें कर्मों के विधान से मजबूत बनाकर जीवन रूपी नैया को आनंद सागर तक पहुंचाने की

कहते हैं कि जब हम उम्मीद और आस की पूर्ति और अपने समस्त कष्टों के निवारण के लिए ममता मई माता के चरणों में जाते हैं या फिर करते हैं प्रभु की आराधना, तो हमें हमारे लोभ मोह और अहंकार का त्याग कर प्रभु हमें अपनाने की प्रेरणा हमेशा देते हैं।

दीपक, फूल और मिष्ठान का भोग सिर्फ पूजन कर्मकांड की प्रतीत मात्र है, जिसमें हमें शक्ति मिलती है कि हम दीपक की भांति प्रकाशवान, फूलों की तरह मधुर व पवित्र विचारों को फैला सके और मिठास का वातावरण तैयार कर सके।

हमारा शरीर तो बस नश्वर है, सब मिथ्या है, सच है तो बस वो श्याम का नाम। और इसी श्याम के नाम को जब हम गुणगान करते हैं तो हमें ऐसे ही भक्ति रस की प्राप्ति होती है।

शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए हमें जैसे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उसी प्रकार जीवन के तमाम संघर्ष हमारे लिए मददगार होते हैं, जिसके लिए बस धैर्य के साथ पे हम ईश्वर के साथ जुड़ते रहें, उनका गुणगान करते रहें, उनके आदर्शों पर, उनके बताए मार्ग पर चलते रहें।

इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही अब समापन करते हैं आज की आराधना का। सभी का जीवन स्वस्थ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ अब संपन्न करते हैं आराधना।

आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। सुबह के 6:43 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज के श्री रामचरितमानस गान की प्रस्तुति, भाग संख्या 173।

भरद्वाज आश्रम में विश्राम करने के पश्चात श्री राम सीता तथा लक्ष्मण समेत यमुना पार करके गहन वन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर वनों, सरोवर तथा पर्वतों की निराली छटा देखते हुए श्री राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे। वन, पर्वत श्रृंखलाओं तथा पवित्र जलाशयों से घिरा ऋषिवर का निवास स्थान अत्यंत रमणीय है। सरोवरों में कमल तथा वन वृक्षों पर पुष्पों की भरमार है। ऋषिवर ने श्रीराम के आगमन का समाचार सुन उनकी अगवानी की, उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदित कर श्रीराम आदि ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुकों की छवि देख

के नेत्र शीतल हुए। मधुर कंद मूल और फलों का आहार प्रस्तुत करके अतिथियों के विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई। श्री राम ने विनयपूर्वक हाथ जोड़ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि से अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

अपने वनवास की कथा सुनाई। बोले, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही तथा धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर आपके दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके चरण स्पर्श करके आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर थे सुरेश वाडेकर की और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। मीडिया वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। प्रातः के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्डदेशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्य

0: तया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिकरूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी प्रसारसंस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोक नगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेङ सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचितसमीक्षाव्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीयसमीक्षाप्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपुस्तिकानां स्कैन् इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीयमाध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीयचरणे छात्राः विसङ्गतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन् नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य 2-3 दिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायण्ट्स् इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स् इति दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। CSK इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन LSG इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् 38 कन्दुकेषु मिचेल् मार्शल् इत्यस्य 90 धावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। आकाशवाणी लखनऊ पर चल रहा है नमस्कार लखनऊ। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा और आज का विषय है लीची के स्वास्थ्य लाभ। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो गर्मियों के आरंभ में ही अपनी खुशबू, सुगंध, मिठास और ताजगी से सभी का मन मोह लेता है। इसका रंग गुलाबी होता है, स्वाद रसभरा और ठंडक देने वाला होता है। हम बात कर रहे हैं लीची की। लीची न केवल स्वाद का खजाना है बल्कि इसमें छुपे हैं कई ऐसे गुण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। गर्मियों की धूप में जब शरीर थक जाता है तब लीची का ठंडा रस और रसीला स्वाद हमारे तन और मन दोनों को तरोताजा कर देता है। इसकी मिठास प्राकृतिक होती है और इसमें उपस्थित जल तत्व हमारे शरीर की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। लीची को

0: सर, हम केवल एक मौसमी फल की तरह देखते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसके पोषक गुण इसे सुपर फूड की श्रेणी में ला सकते हैं। लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। जब गर्मियों में शरीर थकावट और लू का शिकार होने लगता है, तब ऐसे में विटामिन सी हमारी रक्षा करता है। ये न केवल संक्रमण से बचाता है, बल्कि हमारी त्वचा को भी चमकदार और युवा बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कॉपर, फास्फोरस और कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो हृदय, मस्तिष्क और लीवर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। लीची एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा प्राकृतिक रूप से संतुलित होती है, जिससे ये तुरंत ऊर्जा देता है। गर्मी के मौसम में जब शरीर सुस्त पड़ जाता है, तब कुछ लीचियां खाने से शरीर को तुरंत ताजगी का एहसास होता है। खासकर बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है, जो स्वाद में तो मीठा है ही, लेकिन साथ में ऊर्जा और जल की पूर्ति भी करता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या गर्मियों में आम होती है। लीची इसमें विशेष रूप से सहायक होती है, क्योंकि ये लगभग 80% पानी से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर में तरलता बनाए रखता है और ये त्वचा की कोशिकाओं को भी हाइड्रेट करता है। यही कारण है कि लीची खाने से त्वचा मुलायम, चमकदार और ताजगी भरी बनी रहती है। लीची का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर भी सकारात्मक होता है। इसमें उपस्थित फाइबर मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा ये गैस और अपच जैसी परेशानियों को भी कम करने में मददगार है। अगर भोजन के बाद लीची खाई जाए तो ये पाचन में सहायता करती है और पेट को हल्का बनाए रखती है। कुछ वर्षों में हमने देखा है कि लीची को लेकर कई भ्रम फैले हैं, खासकर छोटे बच्चों में इसके अधिक सेवन से जुड़ी कुछ घटनाएं चर्चा में रहीं। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी चीज अगर संतुलन में ना ली जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। लीची में प्राकृतिक शुगर अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे खाली पेट या बहुत अधिक मात्रा में खाने से शरीर में ग्लूकोज असंतुलन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लीची हानिकारक है, बल्कि ये है कि इसे संतुलन और सही समय पर लेना चाहिए। जैसे कि दिन के समय भोजन के बाद अगर आप वजन घटाने की सोच रहे हैं तो भी लीची एक अच्छा विकल्प हो सकती है, बशर्ते इसे सीमित मात्रा में लिया जाए। इसमें जीरो फैट और कम कैलोरी होती है, और यदि ये अन्य फलों और हल्के नाश्ते के साथ खाई जाए तो ये एक हेल्दी विकल्प बन सकती है। इसे स्मूदीज, शरबत या सलाद के रूप में भी लिया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बना रहता है। भारत में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लीची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मुजफ्फरपुर की लीची तो GI टैग भी पा चुकी है और उसकी मिठास के चर्चे देश विदेश में हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये फल न केवल पोषण और स्वाद का स्रोत है, बल्कि हमारे किसानों की मेहनत और भारत की कृषि विविधता का प्रतीक भी है। श्रोताओं, जब अगली बार आप लीची खाएं तो उसे केवल स्वाद का फल न समझें, उसमें छुपे पोषण, ताजगी और स्वास्थ्य के गुणों को भी पहचाने। ये फल हमें प्रकृति की तरफ से गर्मियों में मिला एक उपहार है, जो हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमेशा याद रखें, हर अच्छी चीज की तरह इसका भी सेवन संतुलन के साथ करें। ताजगी से भरपूर फल खाएं और गर्मियों की इस मिठास को स्वास्थ्य के साथ बांटें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: लीची के स्वास्थ्य लाभ विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। अब आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी लखनऊ से आज प्रसारित होने वाली इंद्रधनुषी कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 से आप सुन सकेंगे राष्ट्रीय पत्रिका चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण सुनिए आज रात्रि 10:00 से। ये दोनों ही प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, जिसका रिले प्रसारण आप सुन सकेंगे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से।

आज हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे से सुनिए वार्ता समय और संवेदना के रचनाकार पद्म नारायण राय, प्रस्तुति है सुरेंद्र राजेश्वरी की। जिले की हलचल में आज प्रातः 9:15 से सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों के हालचाल। उर्दू कार्यक्रम में आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश में नशर किया जाएगा कैंपस डायरी इरम मेडिकल कॉलेज। शिरका हैं डॉक्टर सना, शफक हुसना और शाबिया तारिक। आज की विविधा में प्रातः 7:10 से सुनिए विषय शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा। प्रातः 7:31 से आप जुड़ सकेंगे प्रोग्राम आज सुबह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति से। ग्रामीण बहनें सुनेंगी आज घर आंगन में 1:15 से डेंगू कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर चमन लाल रावत से भेंटवार्ता। भेंट करता है प्रतिभा त्रिपाठी। आज दोपहर 2:30 से विज्ञान और किसान कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी हरा चारा के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। डॉक्टर केशव कुमार से की गई ये भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 5 बजे से दैनिक कार्यक्रम के प्रसारण के अंतर्गत युवा साथी आज शाम 5:10 से सुनेंगे स्वास्थ्य जागरूकता में युवाओं की भूमिका, डेंगू से बचाव की दिशा में कदम और सोशल मीडिया के दौर में जिन जी की भूमिका। नई उड़ान के श्रोता शाम 5:45 से सुन सकेंगे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पर मिशन निदेशक श्री पुलकित खरे एवं प्रशिक्षार्थियों से बातचीत। ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा सुशील सीतापुरी की ये वार्ता आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोकायतन में आज शाम 6:30 से। खेती किसानी में आज शाम 6:50 से सुनिए डॉक्टर संदीप कुमार से जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य विषय पर भेंटवार्ता। भेंट करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। विज्ञान जगत में आज शाम 7:31 से प्रसारित होगा शिवा राकेश से विज्ञान समाचार और पूर्व वैज्ञानिक बीरबल साहनी विज्ञान संस्थान लखनऊ के डॉक्टर सी एम नौटियाल से की गई भेंटवार्ता। 21वीं सदी का ईंधन परमाणु सपनों को पंख लगाएगा थोरियम। भेंट करता है प्रवीण कुमार। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज प्रातः 9:50 से और दोपहर लोक माधुरी में 2:45 से आप सुन सकेंगे अलका चतुर्वेदी के गाए अवधि लोकगीत। श्रोताओं ये सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और DTH पर भी। इसके साथ ही साथ आपके लिए कुछ कार्यक्रम YouTube चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उपलब्ध हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में अगला कार्यक्रम अगला समय होता है विविधा का। आज का विषय है शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा।

शांति ओम शांति। जब हम ऐसा दिल से कहते हैं तो दोस्तों निश्चित ही उसका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर भी पड़ेगा। जब इसी प्रभाव के साथ हम जीवन यापन करते हैं तो हम सुख की अनुभूति करते हैं। हम की भावना में हम सुखी होते हैं, मानते हैं ना आप ऐसा? तो चलिए थोड़ा विचार करते हैं हम आज के विषय पर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा पर। यू तो बातों में कुछ खास बात कह देना सरल लगता है, लेकिन जब उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं और साथ ही उसको हम अपने आसपास के लोगों के साथ फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ वो अच्छी भावना सब तक पहुँचे, तो थोड़ा प्रयास करना होता है। जी हाँ, जल थल और गगन, चाहे जहाँ भी बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं शांति की और सह अस्तित्व की। बात चाहे भौगोलिक हो या हो राष्ट्रीय या हो अंतर्राष्ट्रीय, और चाहे देश देशांतर की बात हो या हो घर पड़ोस की या मोहल्ले की, जब हम बोली भाषा खान पान रहना अपने रहन सहन और विचारधारा जीवन शैली धार्मिक मान्यता और विभिन्न व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उनके साथ अपने और दूसरों के अस्तित्व को सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई अवश्य आती है। इसीलिए तमाम तरह की अशांति भी कई बार पैदा हो सकती है और पैदा होती भी है, जिसे स्वाभाविक कहा जा सकता है। किंतु जब सबको एक दूसरे के साथ रहने की मजबूरी हो तो भी, ना हो तो भी, जब हमेशा हर जगह बेवजह हम अपनी मोनोपोली तो नहीं चला सकते, अपने ही नियमों को सब पर तो नहीं थोप सकते, सबको सम्मान सबको सहयोग और अधिकार की आवश्यकता होती है, जो सभी का मौलिक अधिकार भी है। फिर हमें सामंजस्य बिठाने के लिए समान भाव और समान रूप से नियम और कानून बनाने पड़ते हैं और उनका पालन भी करना पड़ता है।

और बात जब इसके वैश्विक स्तर की हो, तब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच मतभेदों के बावजूद सद्भाव, आपसी सम्मान और सहयोग के साथ एक साथ रहना जरूरी होता है। किसी समस्या के लिए हिंसा के बिना संघर्षों को सुलझाने, सहिष्णुता और समानता के आधार पर विश्व में शांति, विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का एक वैचारिक सिद्धांत है जिसे हमें अपनाना होता है। ये मूलभूत सिद्धांत दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करने, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और पारस्परिक लाभ पर आधारित होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की विदेश नीति में इसे सन 1954 में पंचशील समझौते के माध्यम से अपनाया गया, जो कई देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की नींव है। जियो और जीने दो, यानी कि लिव एंड लेट लिव, ये अवधारणा केवल कोरा दर्शन नहीं बल्कि दया, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। वैश्विक स्तर पर शीत युद्ध के दौरान ये समाजवादी और पूंजीवादी गुटों के बीच संघर्ष को रोकने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आज ये विविधताओं से भरी दुनिया में संघर्षों को कम करने और सतत विकास के लिए आवश्यक है। अगर हम अपने के साथ दूसरे के प्रति सद्व्यवहार अपना सकें तो निसंदेह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की धारणा शाश्वत बनी रहेगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय था शांति और सह अस्तित्व की अवधारणा। मीडियम वेव की मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ, राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट UG 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हुए IPL मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं

0: का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्ष में तेजी से हुए विकास के चलते उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया।
1: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया और गोरधोइया नाला परियोजना की प्रगति जानने के बाद सड़क परियोजना के चौड़ीकरण का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
2: स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी देर एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: उधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने NEET UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और NTA की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपये प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीश की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों की

0: लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर कल से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। बांदा जिले में केन नदी में कल नहाने के दौरान 2 किशोर सहित 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 1 किशोर का शव नदी से तत्काल निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 शव रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद किए गए। आईपीएल में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिया है। देर रात तक चले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ की टीम को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया, जिसे लखनऊ ने 3 विकेट खोकर मात्र 16.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने 38 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। राष्ट्रहित की भावना के साथ बिजली और ईंधन की बचत का किया आह्वान। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपने पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए हुआ महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में हुए आईपीएल मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में अब अगली पेशकश है कार्यक्रम आज सुबह की।

0: और आज सुबह कार्यक्रम लेकर के आ गए हैं आपके दो दोस्त। मैं हूँ आपके साथ लवी सिन्हा, स्वीकार करें हमारा
1: नमस्कार। जी हाँ, और मैं भी हूँ आपके साथ, लवी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा पांडे।
0: जी हाँ, और नमस्कार। देखिए, आपने कह दिया तो हमारा साथ आपका साथ एक साथ जुड़ गया, हमारे सभी दोस्तों तक पहुँच गया वो प्यार भरा सलाम, नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत, है ना शिखा?
1: जी बिल्कुल सही कहा। और जब हम लोग हों और हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ हों तो क्या खास बात है। जी हाँ, आज बहुत सी खास बात है आपके साथ करने के लिए, और साथ ही साथ आप इंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने भी।
0: जी हाँ, और गाने हम शुरू करें, गीत हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा सुविचार ज़रूर होना चाहिए। ये सुविचार है कि अगर शब्दों में हम मिठास भरे रिश्तों को जोड़ लेते हैं, और मिठास भरे रिश्ते के साथ अगर हम ये उदाहरण लें कि जैसे मिट्टी का गीलापन पेड़ों की जड़ों को जकड़ कर रखता है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, वो भी मिठास से, खूबसूरती से बनते और बढ़ते चले जाते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा लवी आपने। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हमारे जीवन की नींव होते हैं। अगर रिश्ते हैं तो हमको लगता है कि हम हैं, तो जितना प्यार और मिठास आप रिश्तों में भरते जाएंगे ना, वो एक नींव का काम करेंगे।

श्रोताओं, प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं है फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, जिसे अपनी आवाज़ दी है रफ़ी जी ने और आशा जी ने, और ये गाना बेस्ड है राग केदार पर। थाट कल्याण है, जाति औड़ो शाड़व है, इसमें शुद्ध और तीव्र मध्यम लगते हैं, ऋषभ और गंधार का प्रयोग विशेष होता है, वादी स्वर शुद्ध मध्यम, संवादी स्वर षड़ज है।

0: जी हाँ बिल्कुल शिखा, देखिए हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, है ना। कभी कहते हैं रिश्तों की शुरुआत रिश्तों की मिठास, और रिश्तों का जो खास सौगात है वो तभी बढ़ता है जब हम मिलना जुलना जारी रखते हैं ना।
1: जी बिल्कुल।

0: एक और ये बात हमारे श्रोताओं के लिए भी है कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें तो ये जो प्यार और ये एहसास आपके साथ है ये बढ़ता ही जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और देखिए एहसास बढ़ेगा साथ ही साथ बात बढ़ेगी, और आज के दिन की कुछ ख़ास बातें भी जो हम लेकर के आए ना वो भी हम ज़रूर अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, और आज के दिवस में कौन से दिवस महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आज यानी कि 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है, और इस दिन बात करें 1875 में आज ही के दिन सिक्किम राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था।
0: हाँ, और इस दिन पूरे राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और आधिकारिक समारोह भी आयोजित किए जाते हैं।
1: जी, और इसके साथ ही शिखा आपको बता दें कि सिक्किम का जो राज्य पशु है वो क्या है, लाल पांडा।
0: जी बिल्कुल, लाल पांडा राज्य पशु है।
1: जी, और हरा शाही कबूतर ये राज्य पक्षी है, और खंग चेनजोंगा ये यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है ना।
0: जी, और कितनी अच्छी अच्छी बातें लवी बता रही हूँ, और जितने भी हमारे श्रोता हैं वो सुनकर खुश हो रहे होंगे कि भाई बैठे बैठाए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं।
1: जी देखिए, जानकारियाँ तो और भी हैं, दिवस और भी है, तो दिवस और कौन सा होता है आज?
0: तो आज होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हर साल 16 मई यानी आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मैमन द्वारा पहले सफल लेजर ऑपरेशन की याद में विज्ञान, कला, संस्कृति और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है।
1: जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि ये जानकारी सिर्फ लेजर के इतिहास से कुछ अंश दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस केवल लेजर और विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, इसमें कला, संस्कृति, मनोरंजन यानी कि हर क्षेत्र को शामिल किया जाता है।
0: बिल्कुल
1: है ना? अच्छा, इसके अलावा आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है ना शिखा?
0: जी,
1: डेंगू में अचानक तेज बुखार होता है, बुखार की शुरुआत होती है तो गंभीर सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और चकत्ते हो जाते हैं ना।
0: जी, और भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी आज के दिन डेंगू दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित यह दिवस डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने, बचाव के उपायों को बढ़ावा देने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है।
1: जी, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, सावधान रहना है मच्छरों से, और बच करके रहना है, सावधानी बरतना है ना।
0: जी,
1: इसके अलावा शिखा हम और कोई और जानकारी हमें लग रहा है कि आप बताना चाह रहे
0: हैं। जी बिल्कुल, बताना चाह रहे थे, उसके अलावा ये बताना चाह रहे थे कि जैसे डेंगू से बचाव के लिए, मच्छरों से बचाव के लिए हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, स्प्रे लेते हैं, कई तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो घर में भी आप यूज़ करके जैसे नीम की पत्तियों का छिड़काव करके उसका जो ऑयल होता है उसको भी लगा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप घर में भी करके अच्छी खासी चीज़ें कर सकते हैं।
1: जी,
0: और आपको एक और दिवस बता दें कि आज है शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: जी,
0: हर साल 16 मई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2017 को मान्यता दी थी, और पहला दिवस 16 मई 2018 को मनाया गया था। तो 16 मई 2018 को सबसे पहले ये दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विविधता के बावजूद एकजुट होकर शांति, सहिष्णुता, समावेश और सद्भाव के साथ रहने को बढ़ावा देना है।
1: जी, और देखिए बढ़ावा देने की बात है तो हम यहाँ पर शांति के साथ ही साथ मिठास और गीत की बात कर रहे हैं, तो चलिए गीत को भी ले चलते हैं, आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोताओं, प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, जो बेस्ड है राग मियां मल्हार पर। थाट काफी है, जाति शाड़ो शाड़व है, वर्जित स्वर धैवत है या राग गंभीर शांत वियोग व करुण रस से परिपूर्ण है।

0: शिखा, ये जो दास्ता है ना हमारी और आपकी और साथ ही हमारे सभी साथियों की जो सुनने वाले हैं आकाशवाणी लखनऊ पर कार्यक्रम आज सुबह में, ये दास्ता कार्यक्रम की बढ़ती रहेगी और बातें होती रहेंगी। तो आगे हम बढ़ाएं, कुछ खास जानकारी जो लेकर के आए हैं आज उसको भी सुनवा दें अपने अपने सभी दोस्तों को, सभी श्रोताओं को।
1: जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे।
0: जी, हम सबको पता है दोस्तों कि हम भारतीय नागरिकों की जनगणना एक बार फिर से शुरू होनी है और इस बार हम डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके स्व जनगणना भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को अच्छी तरीके से हम जानते हैं आज एक बार फिर से। जनगणना 2026 डेटा विकास की दिशा, इस विषय पर जनगणना पर्यवेक्षक अजीत प्रताप सिंह से बातचीत कर रहे हैं रमनप्रीत सिंह।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान पर, जो देश की विकास योजनाओं और नीतियों की आधारशिला मानी जाती है। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजीत प्रताप सिंह जी, जो कि जनपद बाराबंकी में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, परंतु जनगणना जैसे इस महत्वपूर्ण विषय पर उनको पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, और आकाशवाणी लखनऊ के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जनगणना करने की आवश्यकता क्या है और ये किस लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
3: देखिए, किसी भी देश की जो सरकार है या जनता है, तो उसके बारे में जो योजनाएं बनती हैं और किसको किस चीज की आवश्यकता है, इसके लिए सबको पता होना चाहिए कि एक परिवार है या देश है तो कितनी आबादी वहाँ पे है, क्या संसाधन है वहाँ पे हैं और किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं और क्या क्या उनको चाहिए और क्या कमियां उनके पास में है और कौन चीज उपलब्ध है। तो इसकी गणना के लिए जनगणना का ये कॉन्सेप्ट लाया गया है,
2: मतलब देश के विकास के लिए जनगणना आवश्यक।
3: जी,
2: आप हमारे श्रोताओं को अजीत जी ये बताइए कि जनगणना 2027 के कितने चरण हैं और ये कब से कब तक चलने वाले हैं।
3: देखिए, जो जनगणना 2027 है इसके मुख्यतः दो चरण हैं। पहला चरण हमारा शुरू हो गया है और ये 7 मई से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो मकान गणना होनी है 22 मई से 22 जून तक। उसके पहले एक अवसर दिया गया है, एक व्यवस्था की गई है कि सभी लोग जो परिवार के लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मकानों की गणना स्वगणना के माध्यम से कर सकता है। तो वो गणना खुद करना है, उसको एंड्रॉयड फोन होना चाहिए या स्मार्टफोन होना चाहिए। उसमें आप जब पूछेंगे गूगल से कि स्वगणना करना है तो अपने आप बड़े सामान्य ढंग से वो दे देगा।
2: तो वेबसाइट पे जाना है,
3: वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in। इस पे लॉगिन करेंगे तो सब कुछ खुल के आ जाएगा।
2: ठीक है।
3: और अगर बहुत जानकार कोई नहीं है, सामान्य जनता है, तो केवल ऐसे गूगल पे या क्रोम पे जाके पूछ ले कि मुझे स्वगणना करना है कैसे करें, तो तुरंत खुल के आ जाएगा और डिटेल बता देगा।
2: ठीक है, मतलब इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना।
3: हाँ, स्मार्टफोन होना ये पहली शर्त।
2: तो अगर जनगणना 2027 में आपको भाग लेना है तो सबसे पहले आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, यानी स्मार्टफोन जरूरी है। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मकान गणना।
3: जी,
2: इसी को स्वगणना भी कहते हैं।
3: नहीं, देखिए, जो पूरी जनगणना 2027 है इसके दो चरण हैं।
2: जी,
3: पहले चरण में हमें मकानों की गणना करना है।
2: जी,
3: और मकानों की गणना तो प्रगणक करेंगे।
2: जी जी,
3: जो प्रगणक के पॉइंट है उस क्षेत्र के, एक निश्चित क्षेत्र होगा उसके प्रगणक करेंगे आके 22 मई से 22 जून तक। लेकिन उसके पहले एक व्यवस्था दी गई है जनगणना में, पहली बार, क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है और ये पेपरलेस है, पहली बार की गई है, तो इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है लोगों को कि आप अपने मकानों की गणना का स्वगणना भी कर सकते हैं।
2: इस स्वगणना के बारे में

0: हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी, ऐसा मैंने बताया कि स्मार्टफोन एक जरूरी है इसके लिए। ये उस परिवार के व्यक्ति का भी हो सकता है, वो किसी से मांग सकता है, दूसरे के फोन से भी कर सकता है, लेकिन एक मोबाइल नंबर, परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर जरूरी है इसकी स्वगणना के लिए। क्योंकि जब इसमें लॉग इन किया जाएगा तो एक ओटीपी आएगी, ओटीपी उसी नंबर पे आएगी जो मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। तो उस ओटीपी से फिर आगे के चरण खुलते जाएंगे इसमें, और उसमें धीरे धीरे करके वो जो भी सूचनाएं मांगेंगे, तो परिवार का जो मुखिया होगा उसका पहला नाम होगा, नाम पड़ेगा, और उसके बाद में फिर जो भी 34 प्रश्न इसमें आएंगे उसमें बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न के आगे जो है विकल्प होंगे कि क्या चीज है आपके पास में।
0: मतलब श्रोताओं को यहां बता दें कि 34 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए ऑप्शंस आपके पास होंगे।
1: हाँ, उसमें ऑप्शन आएगा।
0: ठीक है, तो जनगणना यानी लोगों की गणना कब से प्रारंभ हो रही है?
1: देखिए, जो पहला चरण है ये मकान गणना हमारा 22 जून को पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में जो लोगों की गणना होगी, व्यक्तियों की गणना की जाएगी, वो फरवरी में होगी, फरवरी 2027 में, और उसका जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मार्च का रात का 12 बजे का समय होगा। उस समय बिल्कुल जो वास्तविक संख्या होगी उसको दर्ज करके और उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया जाएगा।
0: अजीत जी, आप ये बताइए कि आपके अनुसार जनगणना में आम जन की क्या भूमिका?

0: चरण है, ये मकान गणना हमारा 22 जून को पूरा हो जाएगा और उसके बाद में जो लोगों की गणना होगी, व्यक्तियों की गणना की जाएगी, वो फरवरी में होगी, फरवरी 2027 में, और उसका जो अंतिम तिथि होगी वो 31 मार्च का रात का 12 बजे का समय होगा। उस समय बिल्कुल जो वास्तविक संख्या होगी उसको दर्ज करके और उसके बाद में इसको क्लोज कर दिया जाएगा।
1: अजीत जी, आप ये बताइए कि आपके अनुसार जनगणना में आम जन की क्या भूमिका है?
0: देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो भारत देश है दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है आज की तारीख, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने देश के प्रति और दुनिया के प्रति। जो भी हमारे कार्यक्रम है, ये तो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है जनगणना, इससे गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है योजनाएं बनाने के बारे में और उन्हें पता है इससे कि क्या संसाधन हमारे देशवासियों के पास में है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग इसमें भाग लेंगे और जैसे आपकी पहली बार व्यवस्था की है, अभी तक क्या होता था कि प्रगणक आए, सुपरवाइजर्स आए और उन्होंने आपसे पूछा और दर्ज कर लिया और चले गए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है अभी मकान गणना की पहले भी स्वगणना का, और मुझे लगता है कि अगला जो चरण होगा उसमें भी स्वगणना का एक समय दिया जाएगा। तो स्वगणना से होता क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ती है, हमको पता है कि हमारे परिवार में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मेरा मकान बना हुआ है तो उसकी दीवार किस चीज की है हमें ज्यादा पता है। दूसरा कोई अगर आएगा तो हो सकता है उस समय मैं घर में ना उपस्थित हूँ, जानकार व्यक्ति ना हो, कोई दूसरा होगा तो उस समय हो सकता है वो कुछ जानकारी उतनी अच्छी ना दे पाए,
1: या जितने लोग नियुक्त भी किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, हो सकता है वो सभी जगह ना पहुंच पाए।
0: नहीं नहीं, एक भी मकान नहीं छूटेगा, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हम घर के मुखिया अगर हैं, हम जवाब दे रहे हैं तो हमारे घर के बारे में, हमारे जो परिवार में संख्या है, लोग हैं, उनके बारे में हम सटीक जानकारी दे पाएंगे, तो वो सटीक जानकारी जब हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा बेहतर डेटा मिल जाएगा जनगणना के लिए और उसका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से आगे हो सकेगा।
1: श्रोताओं, आपने सुना कि आम जन की क्या भूमिका जनगणना में हो सकती है, उम्मीद है आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अजीत जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, संदेश तो यही है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारा देश सबसे ज्यादा आबादी वाला है और गणना अगर एक्यूरेट होगी, उसमें सबका योगदान रहेगा, बिल्कुल सही तथ्य सामने आएंगे, तो हमारी जो सरकार है वो 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेके चल रही है, तो उस आधार पर ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब हमारे पास 2027 के बाद 47 का 20 वर्ष बचा है और 20 वर्ष में जो डेटा आ जाएंगे उस डेटा के माध्यम से गवर्नमेंट को नीतियां बनाने का, उनको लागू करने का बहुत ही सरल उपाय गवर्नमेंट के पास रहेगा और बहुत बेहतर तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध है सभी जितने देशवासी हैं कि ये जनगणना में जो भी जानकारी आप देंगे प्रगणक को, ये आप पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसका ना तो पुलिस इस्तेमाल कर सकती है ना किसी कोर्ट में ये साक्ष्य के तौर पे हो सकता है, तो इसमें कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसको कहीं से भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इसलिए आप सही से सही जानकारी दें, अच्छी से अच्छी जानकारी दें, जिससे कि बेहतरीन डेटा बन सके और जनगणना का कार्य पूरा हो सके।
1: तो श्रोताओं, अजीत जी ने जनगणना 2027 के विषय में हमें आज बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से काफी फायदा पहुंचेगा। आप हमारे कार्यक्रम को इसी प्रकार सुनते रहिए। अजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जनगणना 2026 डेटा से विकास की दिशा, शिखा, हमने आज इस विषय पर जानकारी ली है ना, और उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इसका लाभ उठाएंगे, और श्रोता ही नहीं, हम पूरे भारतीय नागरिक इसका लाभ उठाएंगे। और अब वक्त हो चुका है गीत सुनने का, तो क्या गीत सुन लें?
3: जी बिल्कुल, भेजते एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं तक।

श्रोता, ये प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं, एक प्यार का नगमा है, बेस्ड है राग मालकोस पर, थाट भैरवी है, कोमल स्वर गाधानी है और वर्जित स्वर रे वा पा, वादी स्वर मध्यम, समवादी स्वर षड्ज है।

0: बड़ा ही प्यारा सा गीत और वाकई बड़ा ही खूबसूरत। सतीश कहते हैं ना शिखा कि जब हम अपने जीवन में तमाम काम करते हैं तो हर काम में एक ना एक कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें क्या अच्छा करना है और क्या बुरा करना है ना। तो हर काम में एक दिशा होनी चाहिए और तभी हमारे जीवन का सही किनारा लगता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और सारे जितने भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं एक मोटो छुपा होता है और वो प्यार का नगमा वैसे ही पड़ जैसे जिंदगी है वो प्यार के साथ बढ़ती जाती है।
0: जी और देखिए जब आपने कहा है कि प्यार के साथ बढ़ती जाती है तो देखिए कुछ गर्मी भी बढ़ती जा रही है ना।
1: जी गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।
0: तो क्या जानना चाहती है कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है?
1: जी बिल्कुल,
0: तो चलिए सुनवाते हैं श्रोताओं को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानी जी से जो कि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं।
2: दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय भारत मौसम विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। आइए जानते हैं आज के मौसम की क्या है ताजा जानकारी। नमस्कार दानिश जी।
3: नमस्कार
2: जी, आज जानना चाहते हैं एक बार फिर से कि आज कैसा रहने वाला है मौसम।
3: जी गुड मॉर्निंग, मौसम की बात करें तो मौसम इधर साफ रहेगा, दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी और जैसे कि पिछले कई दिनों से मौसम थोड़ा अनुकूल था, बीच में थोड़ी बारिश भी हो रही तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से तापमान में गर्मी होगा। तो इसको देखते हुए जो साउथ का रीजन है, जो दक्षिण का है, एमपी से सटे हुए जो जिले हैं बुंदेलखंड विंध्यान रीजन, वहाँ लू का अलर्ट है जारी है। लखनऊ के लिए अभी कोई ऐसा लू का अलर्ट नहीं है लेकिन तापमान आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिला के कहे तो आने वाले दिनों में गर्मी काफी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमको बचाव रखने की आवश्यकता।
2: जी तो इस ताजा
0: जी हाँ ताज़ा जानकारी के लिए हम धन्यवाद देते हैं मोहम्मद दानिशी का। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिखा हम जैसे कि बहुत सारी बातों के साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बहुत सारी बातें भी हैं लेकिन एक ख़ास बात जो आज है वो ये है कि आज एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जो रिश्तों की मिठास को बना के रखता है ना।
1: जी बिल्कुल, और ये आज है त्यौहार सभी को पता है लेकिन नहीं पता तो हम बताते हैं, आज है वट सावित्री व्रत। ये सुहागने औरतों का बहुत बड़ा व्रत है, पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है। और आपको बता दें कि हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है।
0: जी और जब हम त्यौहार की बात कर रहे हैं साथ ही साथ आज के ऐतिहासिक घटनाओं की बातें भी कर ले है ना। आज कोलकाता में 1911 में आज ही के दिन तला वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ जिसे तत्कालीन दुनिया का सबसे बड़ा वो ओवरहेड वाटर टैंक माना गया।
1: और सन 1920 में आज ही के दिन फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गई थी।
0: 2013 में आज ही के दिन वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव भ्रूण के क्लोन से स्टेम सेल प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी।
1: और सन 1960 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी।
0: जी और 1975 में जापानी पर्वतारोही जुनको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी।
1: और सन 2004 में आज ही के दिन टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हैमबर्ग मास्टर्स का खिताब जीता था।
0: तो ये तो जानकारी हो गई हमारे आज के इतिहास से जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें जिनको हम याद करते हैं और जानकारी लेते रहते हैं। साथ ही साथ

0: देखो शिखा, हमें लगता है ना कि जो रक्तदान है ये महादान कहलाता है ना। और 16 मई से यानी कि आज से 4 दिन के लिए ये जो 4 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो रहा है, और हम सब समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे कि किसी की जान बचाई जा सके और किसी के जीवन को, किसी के स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सके, है ना
1: जी, और इसमें हम सबको और आप सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
0: जी। और अब जल्दी से हम एक गीत भी सुन लेते हैं, और गीत के साथ ही साथ देखिए कार्यक्रम का जो समय है वो भी ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।

0: श्रोताओं, प्यारा सा गीत जो अभी आप सुन रहे हैं है फिल्म पाकीज़ा से, जिसे लता जी ने अपनी आवाज़ दी है। बेस्ड है राग यमन पर, थाट कल्याण है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है, इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है और बाकी सभी सात स्वर शुद्ध लगते हैं।
1: जी हाँ, और इस खूबसूरत और बेहतरीन गीत को आप तक पहुंचाया शिखा ने, और बहुत ही खूबसूरत गीतों को चुन चुन कर कर आप तक पहुंचा रही हैं। और हम चाहते हैं ये जो सफ़र हमारा ऐसे ही चलता रहे, हमारे जो ये खूबसूरत सा मौसम है जीवन का, हमारी बातों का, हमारे कार्यक्रम का, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के साथ आज सुबह कार्यक्रम का, तो बस सफ़र आज का इतना ही रहा। तो अब लवि सिन्हा
0: और शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ, ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इसे समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए

0: समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता

0: के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के

0: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़राई के दौरान अबूजबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर्स की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबूजबी की

0: तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तवानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस, नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वजीर अजम रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर अजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती माहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसी तर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम माहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अजम को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल्स से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरकर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर मुआजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय 16.50 रुपए फी लीटर होगी। हवाई जहाज के ईंधन ATF पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में भी कमी करके इसे 33 रुपए से 16 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। तब्दील की गई ये शरें अगले 15 दिन तक आयद रहेंगी। 15 दिन की यह मुद्दत आज से शुरू हो रही है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोलियम और डीजल पर आयद एक्साइज ड्यूटी की मौजूदा शरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि भारत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में 2047 तक मुनशियात से पाक करने का कौमी मकसद तय किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की हिफाजती एजेंसियों ने मुनशियात के मुनज्जम गिरोहों का खात्मा करने का एक खाका तैयार किया है और वो इस मकसद की जानिब सरगर्मी से काम कर रही है। कल नई दिल्ली में RN Kao यादगारी लेक्चर देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नशीली अशिया की नाजायज तजारत महज नज्म व जब्त का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जिसके तवील मुद्दती असरात समाज और मुस्तकबिल की नस्लों पर मुरतब होते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए जामे कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नशीले मादों के तहत हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का ये कहते हुए एक बार फिर जिक्र किया कि मुल्क इस बात को यकीनी बनाएगा कि महज एक ग्राम नशीला मादा भी इसके इलाके को गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हुए भारत में न तो दाखिल हो और न यहां से जाए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम का दौरा करेंगे। दौरे में नायब सदर जमहूरिया सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रियासत के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इन तकरीबात में शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी शिरकत करेंगे। सिक्किम आज अपना यौम तासीस मना रहा है।

0: 1975 में बादशाहत के खत्म होने के बाद ये भारत की 22वीं रियासत बनी थी। इम्कान है कि नायब सदर जमहूरिया अपने क्याम के दौरान चंद अहम मकाम का भी दौरा करेंगे। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। ये FIR मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात की हालिया चुनाव मुहिम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज बयान देने के इल्जाम में दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले का इल्जाम है कि उसने बाज बयान जिनमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नाजेबा तबसरे भी शामिल हैं सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर शेयर किए गए, जिनमें रुकन पार्लियामेंट का सरकारी फेसबुक पेज भी शामिल है। इसी दौरान एक और वाकये में मगरबी बंगाल हुकूमत ने 3 सीनियर IPS अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल भी शामिल हैं। ये कार्रवाई RG कर मेडिकल कॉलेज इस्मत दरी और कत्ल केस की तहकीकात में मुबैना कोताहियों के सिलसिले में की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने मुनसिफाना और शफाफ जांच के अजम का इरादा करते हुए 12वीं जमात के तलबा के लिए नतीज के बाद फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक एक नोटिस जारी किया है। नोटिस बोर्ड में कहा गया है कि अपने नतीज से गैर मुतमईन तलबा 2 मरहलों पर मुश्तमिल नजर सानी के निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले मरहले में तलबा अपनी जाँच की गई जवाबी कापियों की स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जिन्हें जायजे के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरे मरहले में तलबा किसी भी फर्क या गलती की तस्दीक करा सकते हैं या मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर मखसूस जवाबात की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। CBSE के मुताबिक स्कैन शुदा नकूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस ₹700 फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अजम है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनकदा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1.5 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए NEET UG 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ NTA के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जामात के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात इस वक्त मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौरे के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। यह फैसला अमेरिका की मेज़बानी में अमेरिका और लबनान के दरमियान 2 रोज़ तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुज़ाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया, जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हफ्स वाले मौसम की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक

0: मेराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई हैं। जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहयान के साथ हुई दोतरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए, जिनमें LPG की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आला मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निज़ाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में ये बात कही गई। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट UG 2026 का इम्तिहान दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीछिंग में हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोज़नामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफ़र पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जाँचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी मेल आपकी गीत।

कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में लवि सिन्हा आप सभी का स्वागत करती है। आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से हम और आप शामिल हो चुके हैं और शामिल होता है आपका पत्र। जी हाँ, वो पत्र जिसे आप भेजते हैं ईमेल के माध्यम से। तो चलिए, आपकी फरमाइशें जो लगभग हमारे पास पहुंच भी चुकी हैं और काफ़ी पहुंचती जा रही हैं, उन सब के ईमेल के माध्यम से करते हैं आज के गीत का आगाज़। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सभी नए श्रोता ज़रूर नोट करें हमारा ईमेल एड्रेस। हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। एक बार फिर से आपको बता दें आपके पत्र आपके

mail@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी और हमारे साथ आप जुड़ करके अपनी फरमाइशें पूरी करें। तो चलिए, आप में से बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उन सब ने अपनी फरमाइश को किसी भी गीत में शामिल करने की बात कही है, तो उन्हीं की फरमाइश के तौर पर हम इस पहले से जो हमने आपके लिए निकाल कर रखा है, चुन कर रखा है, ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी की ईमेल फरमाइशों का हम करते हैं तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत।

और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये अनाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में जी। और गीत जो मुकेश की आवाज़ में बहुत लोगों ने फरमाइश भी की है, तो जाहिर सी बात है कि बेहद ही गायकी के, जिसे कहते हैं ना कि माइलस्टोन बन चुके हमारे मुकेश साहब की आवाज़, उनके गीत और उनके गीत में जो वो सादगीपन है, वो जो ख़ास बात है, वो शायद हम सबको इसीलिए ज़्यादा पसंद आती है। और देखिए, गीत की जब फरमाइश की जब बात है, तो इसमें मुकेश कश्यप इन्होंने लिखा है ज़िला मुरादाबाद से, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने, इन्होंने भी कार्यक्रम को कहा है कि किसी भी गीत से आप इनके मेल को शामिल कर लीजिए। और यकीनन आपके मेल को हमने शामिल कर लिया है, आपके नाम को शामिल कर लिया है। साथ ही साथ हमारे पास और भी जो श्रोता हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने मेल को जो शामिल करने कहा था, किसी भी गीत में शामिल करने के, उनके भी नाम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसमें से एक हमारे पास है, ये है हमारे भगवत, जी हाँ, भगवत वर्मा जी, और ये दतरिंगी से

लिखते हैं, ये भागवत वर्मा जी हैं, शांति देवी हैं, लीलावती हैं, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, किसी भी गीत में शामिल करने की बात कही, साथ में मुकेश की फरमाइश आप तक पहुंची जो हमारे और अन्य श्रोताओं ने कर रखी थी। और अब हमें लगता है कि इतने सारे जो हमारे पास ईमेल आते हैं उसमें हर ईमेल को और हर ईमेल के आधारित गानों को, फरमाइशों को शामिल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने यहाँ पर एक ऐसी खोजबीन कर रखा है, लेकिन नाम आपका ज़रूर करेंगे हम यहाँ पर शामिल। और देखिए इसमें वारिस अली खान हैं, इन्होंने भेजा है जो कि हमेशा हमारे पास इनका मेल आता है, सभी का स्वागत हम करते हैं। वारिस अली खान जी आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और लालगिरी जी हैं, इन्होंने भी अपने गीत को शामिल करने की बात कही है। सरिता अभिजीत जी, इन्होंने भी अपने नाम को यहाँ पर मेल के माध्यम से शामिल करने की बात कही है, और गीत तक भी हम ज़रूर पहुँचेंगे। और अमोल मानकर हैं, रश्मि पांड्या हैं, जॉन डी कैस्ट्रो हैं, बाल कृष्ण हैं। तो चलिए अब वारिस अली खां की फरमाइश आप तक पहुँचा दें। और हमें लगता है कि जी देखिए और भी गीत यहाँ पर शामिल होते जा रहे हैं, जल्दी से हम पहुँचा दें ताकि किसी भी तरीके से आप तक गीतों की जो फरमाइश है अधूरी ना रह जाए। तो चलिए अगले गीत की ओर हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं वारिस अली खां का यहाँ पर गीत, ये है दिल तुझको दिया। जी ये चलिए इस गीत की फरमाइश है तो आप तक पहुँचा रहे हैं।

और सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हुए, सुप्रभात करते हुए हम कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत को आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जो श्रोता हैं अपने हमारे पास, उनकी फरमाइशें लगातार आती जा रही हैं, तो हम निश्चित तौर पर आपकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, पर समय की साथ में थोड़ा बढ़ना पड़ता है। और देखिए, कभी किसी का कभी किसी का यहाँ पर गीत ज़रूर शामिल होता है। और देखिए, हमारे पास बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी फरमाइशें लिख रखी हैं, यहाँ पर भेज रखा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। आपका नाम तो शामिल होता ही है, हमारे दिल के करीब आ जाता है आपका नाम। आपके जब नाम के साथ में हम ये देखते हैं तो हमारी आपकी पहचान, आपकी मुलाकात और भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है। देखिए, सतीश अनेजा जी का भी ये गीत यहाँ पर शामिल हो चुका है। इन्होंने हीरा पन्ना जी, फिल्म की पन्ना की तमन्ना है, इसके लिए इन्होंने भी फरमाइश की है। चलिए, वो भी हम देखते हैं। और साथ ही इस गीत के साथ और भी हमारे पास जो है श्रोता, उनका भी यहाँ पर हम शामिल करते हैं, नाम उनका हम शामिल करते हैं उसमें। हम देखिए, एक नाम है यहाँ पर जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कांबड़े, करुण, मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े का भी, इन्होंने रमेश चंद्र कांबड़े की ओर से आया है मेल, लिखा है सादर नमस्कार। और ये जो गीत इन्होंने सुनना चाहे, दिल तेरा दीवाना, फिल्मकार मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, तो इस गीत को भी हम शामिल करते हैं। और साथ में ही और भी हमारे जो श्रोता हैं, उन सब को भी हम यहाँ पर उनका नाम लेते रहेंगे, उनका जो गीत है वो शामिल होता रहेगा।

आपके पत्र, आपके मेल कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें, आपके मेल, आपके गीत कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और आपके नाम ज़रूर हम एक बार बताते चलेंगे जिन लोगों ने हमारे पास बड़ी शिद्दत से लिखा है, बड़ी तन्मयता से हमारे साथ जुटे रहते हैं और कार्यक्रम को सुनते हैं, साथ ही साथ अपने ईमेल पत्र हमारे पास पहुँचाते हैं। जी, अशोक सिंह जी हैं, इन्होंने भी अपने नाम को यहाँ पर शामिल करने की बात कही है। किसी भी गीत में इनका नाम शामिल हो जाएगा तो उनको खुशी होगी, बिल्कुल हमें भी खुशी होती है। अशोक सिंह, इन्होंने भेजा है सुनीता सिंह के साथ, प्रीति सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से इनका नाम शामिल हो चुका है। हमें बड़ा ही खुशी का एहसास होता है। और साथ ही ये है शहरू नूर अंसारी, ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शहरून नूर अंसारी, फरियाद शकील अहमद, इदरीशी मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजे प्रधान, हमें भी शुक्रिया कहना है आपको आपके मेल के लिए। साथ ही साथ हमारे पास बिट्टू गगनीचा जी हाँ, इनके भी गीत को हम सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे समय के मुताबिक। फ़िलहाल इनका नाम बता दें, इन्होंने जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया और दिशानी व निमित आहूजा, इन सब की ओर से भेजा है हमारे पास अपना ईमेल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही ये है निट्टू मल्होत्रा, इनकी फरमाइश भी हम पूरी करते हैं और इन्होंने जो भेजा है हमारे पास फिल्म वो सात दिन का गीत सुनना चाहा है। चलिए ठीक है, सुनवाते हैं। और खेल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और टुक्कू भाविक सिक्का, इन सब के जो गीत की फरमाइश है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने नाम को शामिल करा देते हैं, गीत बस सबका होता है, सबके पसंद का होता है, उनका भी नाम शामिल करते हैं। और साथ ही देखिए, ये आर कुमार जी हैं, इन्होंने भेजा है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पंकी लवली, आरती अरोड़ा जी, इनके भी गीत को पहुँचाने की कोशिश हमारी रहेगी। साथ ही रमेश चंद्र विश्वकर्मा जी, इन्होंने भेजा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ईमेल भेजने का। और देखिए, किसी भी गीत में जब शामिल करने की बात है तो आप सबकी पसंद की ओर से हम आपको सुनवा रहे हैं। ये थोड़ा सा ये गीत है

जो थोड़े नए समय का है, कह सकते हैं कि गीत की जो बदलती हुई संगीत की जो धारा है वहाँ हम पहुँचा रहे हैं आपको। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जी, इस फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है अरमान मलिक की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे हैं वो सात दिन फिल्म का नगमा। और इस गीत की भी फरमाइश हमारे श्रोता ने की थी, साथ ही साथ और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है, चलिए जल्दी से उनका नाम शामिल कर लेते हैं। ये हमारे साथ है सुनील पाठक जी, जी इन्होंने भी अपने नाम को हमारे साथ शामिल किया है और बड़ी खुशी हो रही है आपके नाम को शामिल करते हुए हमें। और मुकेश जी की फरमाइश, इनकी हमारी पूरी हो चुकी थी, इस गीत को इन्होंने जो सुनना चाहा था ये हमारे थे, ये इन्होंने भेजा है कहाँ से जी, इनके जी हाँ इनके हम पते तक नहीं पहुँच पाए हैं, इनका पता क्या है, चलिए कोई बात नहीं, आपका मेल शामिल हुआ हमें खुशी हो रही है। साथ ही साथ रहमान जी हैं, इन्होंने भी अपनी पसंद का कोई गीत जैसे कि बात की थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इनके मेल को पढ़ते हुए बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद बेबी शालिया डाबर, बेबी हलीमा डाबर, बेबी जिगरा डाबर और बेबी आयशा खत्री घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से, मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, इन्होंने भी गीत की फरमाइश की थी। साथ ही रहमान जी, इनका नाम हो चुका है राजकुमार डॉडी जी, इन्होंने में भेजा है शहरुन अंसारी जी ने, और बिट्टू गनेजा जी का भी नाम शामिल करते हैं, आर कुमार जी भी ने भी हमें भेजा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे और भी श्रोता हैं जैसे संतोष नामडे, इन्होंने भी हमें भेजा था अपने इस मेल को शामिल करने के लिए, इस बार के लिए क्षमा चाहते हैं, अगली बार ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। राजक महमूद जी हैं, राजक महम्मद जी इन्होंने भेजा, और टी डी मल्होत्रा साहब, इनके भी ईमेल को शामिल करते हुए हमें अच्छा लग रहा है। और सतीश अनेजा जी हैं, इनका भी पत्र हमारे पास आया, अब्दुल गफ्फार भाई इनका भी पत्र हमारे पास आया, ईमेल पत्रों के लिए यानी कि आपके ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अब कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत से लेवे सुना आप सबसे आज के लिए लेते हैं इजाज़त, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
2: बिजनौर में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारी तेज हो गई है। स्वयं जनगणना के अंतर्गत 7 मई से 21 मई 2026 के बीच नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा रहे हैं। जनगणना का मुख्य प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना 22 मई से 20 जून 2026 तक चलेगा, जिसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के रूप में न्याय की ओर कदम बढ़ाते हुए 9 मई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रिकॉर्ड 13,000 से अधिक मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और बैंक रिकवरी जैसे मामलों में समझौते के आधार पर करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई। जिला जज ने आम जनमानस से अपील की कि वे सुलभ न्याय के लिए लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाएं।
3: लिटिगेंट्स के सुविधा के लिए ऐसे मामले जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस दिया है। विवादकारी अधिक से अधिक संख्या में आए, इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने वाद निस्तारित करें। पिछली बार की लोक अदालत में जनपद बिजनौर में लगभग 14,000 के आसपास वाद निस्तारित हुए थे एक दिन में, तो इस बार भी हम यह आशा करते हैं कि उसको क्रॉस करेंगे।
2: महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद की होनहार छात्रा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान सांकेतिक डीएम के तौर पर छात्रा ने कलेक्ट्रेट में बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में प्रशासनिक नेतृत्व की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना है। बिजनौर से ताल्लुक रखने वाली पूर्व राज्य मंत्री ओमवती देवी का निधन हो गया। वह नगीना विधानसभा से 4 बार विधायक और 1998 में बिजनौर से सांसद रही। 9 मई को हुए उनके निधन से जिले के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगीना सांसद चंद्रशेखर और विधायक मनोज पारा सहित

0: विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी इकाई की स्थापना की गई है। इस नई मशीन के आने से अब मरीजों को बड़े चीरे वाली सर्जरी के बजाय छोटे छेद के माध्यम से सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी। मशीन का औपचारिक उद्घाटन सदर विधायक और जिलाधिकारी द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम उपस्थित रही। स्थापित की गई मशीन अत्याधुनिक 4K अल्ट्रा HD विजन सिस्टम से लैस है। मशीन की विशेषताओं के बारे में महात्मा विदुर राज्य स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर तुहिन वशिष्ठ ने बताया।
1: सरकार ने ये मशीन उपलब्ध कराई है लेप्रोस्कोप। इसके द्वारा आप क्या होगा कि सिर्फ छोटे से चीरे लगा के दूरबीन के द्वारा हम पेट के अंदर के सभी ऑपरेशन कर पाएंगे, जिससे कि क्या फायदा होगा, पहले चीरा लगता था बड़ा, उससे खून भी ज्यादा बहता था, उसके अलावा इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते थे, दर्द ज्यादा होता था मरीज को। अब क्या होगा कि छोटा सा चीरा लगेगा, अगले दिन छुट्टी होगी, खून भी कम बहेगा और इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे।
0: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की क्षेत्रीय पोषण सलाहकार नोरा होप ने जनपद बिजनौर के विकास खंड नूरपुर स्थित THR ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय विदुर प्रेरणा उत्पाद प्लांट का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इस समग्र मॉडल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इसे एक अद्वितीय प्रेरणादायक और विश्व स्तर पर अनुकरणीय अनुभव बताया। निरीक्षण के दौरान सुश्री नोरा ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा चालित उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और लाभार्थियों तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि THR प्लांट में महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि निर्णायककर्ता, प्रबंधक और उद्यमी के रूप में स्थापित है। सुश्री नोरा ने कहा कि भारत में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत और प्रेरणादायक मॉडल देखा है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि परिवर्तन की नेतृत्व करता है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण को जिस आत्मविश्वास और दक्षता से संचालित कर रही है, वह वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने यह भी किया कि पिछले वर्ष रोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा THR प्लांट की कार्यप्रणाली पर एक प्रस्तुति दी गई थी, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरे प्लांट का संचालन करते हुए दिखाया गया था।
2: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख है अम्मार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वगणना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतगणना में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में सबसे पहले 7 से 21 मई तक स्वगणना होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपेक्षित तैयारियां समय रहते ढंग से पूरी करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों के लिए स्वगणना का भी प्रावधान होगा। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनेगी। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने तहसील इकौना सभागार में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अधिकांश पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। शेष लाभार्थियों को शीघ्र आच्छादित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती द्वारा ग्राम पझलिया में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकारों, श्रम कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने बताया कि देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जनपद श्रावस्ती में संध्या संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत दिन भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान, विकास कार्यों का निरीक्षण और योजनाओं का लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। श्रावस्ती में कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज एवं देखभाल के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुपोषित बच्चों का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। NRC में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को ₹50 प्रतिदिन नाश्ता

0: दोपहर व रात्रि का भोजन और भर्ती बच्चों को डायटिशियन के हिसाब से दलिया, खिचड़ी और हलवा उपलब्ध कराया जाता है। एनआरसी के चिकित्सक डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने बताया कि केंद्र पर भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयां, चिकित्सा प्रबंधन और विशेष पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है। माताओं और देखभाल करने वालों को बच्चों के उचित खानपान, साफ सफाई और सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। भर्ती बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, वजन और लंबाई की जांच की जाती है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए एनआरसी में एक प्ले एरिया की सुविधा भी है। उन्होंने जनपद वासियों से आग्रह किया है कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे जनपद का कोई भी बच्चा कुपोषित न होने पाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव एक दिवसीय जनपद भ्रमण के लिए विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर पहुंची। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए नारी शक्ति वंदन जन आक्रोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। जब तक नारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करेगी, तब तक समाज का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बेहतर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो निश्चित ही समाज सशक्त होता है और राष्ट्र प्रगति करता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी ने विकासखंड जमनुहा के अंतर्गत कई गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर चल रही गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं क्रय केंद्र क्रमशः बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समिति लक्ष्मणपुर सिमरहिया, साधन सहकारी समिति लिमिटेड शिकारी चौड़ा और महादेवा नासिरगंज का औचक निरीक्षण कर गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय करने आए किसानों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। गेहूं बेचने आए किसान भाइयों के लिए क्रय केंद्र पर आने जाने का रास्ता और वाहनों के पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुने राष्ट्र गीत, देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, ये आकाशवाणी लखनऊ है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी लखनऊ है, प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।

0: क्या होगा।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया तारिक है। मैं इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बैच 2025 से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है खुद पर एतमाद। निशानों से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है। निशानों से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है। खुद पर यकीन हो तो हर जीत आसान बनती है। शहर के कोने में एक पेंटर रहता था। वो अपनी बनाई गई तस्वीरों के लिए लोगों के बीच बहुत मशहूर था। एक दिन उस पेंटर ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखने के बाद उसे लगा कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी इस तस्वीर को लोगों को दिखाया। वो अपने एक दोस्त के पास गया और उसे उस तस्वीर के बारे में बताया और कहा कि देखो, ये कितनी खूबसूरत तस्वीर है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम वाकई जानना चाहते हो इसमें कोई कमी है या नहीं, तो तुम इसे एक ऐसी जगह ले जाके रख दो जहाँ से लोगों का आना जाना हो, और साथ ही में इसके एक बोर्ड भी रखना जिस पे तुम ये लिख दो कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उस पे निशान लगा दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानी और बिल्कुल वैसे ही किया। अपनी बनाई हुई तस्वीर को उस जगह पर रख के वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी तस्वीर निशानों से भर गई थी। वो ये देखकर बहुत मायूस हुआ। वो अपने दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने इसमें इतनी गलतियाँ निकाली।

0: हैं कि इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उसके दोस्त ने उसकी बात सुनी और वो कुछ देर चुप रहने के बाद उससे कहा कि सुनो, तुम अब एक काम करो, तुम दोबारा एक ऐसी ही तस्वीर बनाओ और उसे उसी जगह पे ले जाके रख दो, लेकिन इस बार तुम उस बोर्ड पे ये लिखना कि अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए। उस पेंटर ने अपने दोस्त की बात मानते हुए ऐसे ही किया। दोबारा वैसी ही तस्वीर बनाई, लेकिन इस बार उसने ये लिखा कि अगर आप लोगों में से किसी को भी इस तस्वीर में कोई कमी नज़र आती है तो आप उसे ठीक कर दीजिए, और उसे वहाँ पे रख के वहाँ से चला गया। जब शाम हुई तो वो वापस लौटा। वो अपनी तस्वीर को देख के हैरान रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं थी। वो अपने दोस्त के पास वापस गया और उसे सारी बात बताई। उसके दोस्त ने कहा कि सुनो, जो लोग होते हैं उनका काम होता है चीज़ों में, लोगों में कमियां निकालना, गलतियां निकालना, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप इस कमी को ठीक कीजिए या फिर बताइए कि ऐसे इसे कैसे ठीक की जाए, तो वो लोग खामोश हो जाते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और वो करना चाहिए जो हमें सही लगता है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उस दिन उस पेंटर के एक बात समझ में आई, खुद पर एतमाद होना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इससे हम हर इम्तिहान जीत सकते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क हुस्ना है। हम इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट प्रॉफ के स्टूडेंट हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका टॉपिक है डिलीट बटन। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ का एक दिन डिलीट करने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन चूज़ करेगा? क्या वो दिन जब सब कुछ गलत हुआ था, या वो दिन जहाँ से सब बदला? ये कहानी है नैना की। नैना एक नॉर्मल सी कॉलेज जाने वाली लड़की थी, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, पर थोड़ी सी सेल्फ डाउट वाली। हर चीज़ परफेक्ट करने की आदत, और जब परफेक्ट ना हो तो ख़ुद को इल्ज़ाम देने की आदत। एक दिन उसके फ़ोन पर एक अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन डिलीट करो। पहले उसने इग्नोर किया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया। क्यूरियोसिटी डर से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसने ईमेल ओपन किया, अंदर सिर्फ एक लाइन थी, अपना वो दिन चुनो जो तुम मिटाना चाहती हो। नीचे एक बटन था, सेलेक्ट। नैना की माँ उसे हमेशा कहती थी, बेटा ज़िंदगी में हर हार ज़रूरी होती है। जीत तुम्हें खुशी तो देती है, पर हार तुम्हें मजबूत बनाती है। पर नैना को ये बातें थोड़ी फिल्मी लगा करती थी। उसे लगता था डर का क्या फ़ायदा अगर उसे अवॉइड किया जा सकता हो। उसने बिना सोचे एक दिन चुन लिया, वो दिन जब वो इम्तिहान में फ़ेल हुई थी, वो दिन जब उसने ख़ुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस किया था। उसने क्लिक किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन सब नॉर्मल था, कॉलेज, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, पर कुछ अलग था। नैना को वो हार याद ही नहीं थी, ना वो रात, ना वो आंसू, ना वो अफसोस, जैसे वो दिन कभी मौजूद ही नहीं था। शुरू में उसे ऐसा लगा कि मुझे हल्का महसूस हो रहा है, पर धीरे धीरे कुछ अधूरा लगने लगा, जैसे कोई मखसूस चीज़ जो उसे याद ही नहीं आ रही है। कुछ दिन बाद एक और इम्तिहान आया। इस बार नैना पास हो गई, अच्छे मार्क्स के साथ। सब खुश थे, पर नैना कुछ फील ही नहीं कर पाई, ना रिलीफ, ना एक्साइटमेंट, ना कॉन्फिडेंस, ना खुशी। उसे सिर्फ एक खालीपन महसूस हो रहा था। तब उसे अपनी माँ की बात याद आई, हार तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। तब उसे समझ आया, उसने सिर्फ एक दिन नहीं डिलीट किया था, उसने वो स्ट्रगल डिलीट किया था जिसने उसे फील करना सिखाया था। उसने दर्द नहीं, अपनी तरक्की की बुनियाद डिलीट कर दी थी। उस रात नैना ने अपना फ़ोन उठाया वो ईमेल ढूंढने के लिए, पर इनबॉक्स में कोई ईमेल था ही नहीं, डिलीट बटन कभी था ही नहीं। वो खुद ही अपने दर्द से भाग रही थी, क्योंकि ज़िंदगी में हम कुछ डिलीट नहीं करते, हम बस उन्हें महसूस करना बंद कर देते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अपने फेलियर, अपने दर्द को मिटाने की कोशिश मत करो। वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम बिना दर्द के कभी बन ही नहीं पाते। इसी स्टोरी पर मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। शुक्रिया।
2: सामाइन, ये था हमारा आज का खुसूसी ओबी प्रोग्राम कैंपस डायरी, जिसमें हमने इरम मेडिकल कॉलेज की बासलाहियत तलबा की खूबसूरत तख्लीकात आप तक पहुँचाई।

0: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ।
1: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में, क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के लोक रंग में आपको हम सुनवा रहे हैं अलका चतुर्वेदी के स्वर में गाए अवधी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में गाए गंगा गीत। आपके साथ ढोलक पर हैं नरेंद्र सिंह, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर हैं दिंगत सैकिया और साइड रिदम पर हैं आशीर्वाद कठोरिया।

आप सुन रहे हैं अलका चतुर्वेदी के स्वर में गाए अवधि लोकगीत, और अब लोकरंग में आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में ही नकटा गीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका चतुर्वेदी की स्वरमिकाएं अवधि लोकगीत और आपने सुना गंगा गीत और नगटा। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर नरेंद्र सिंह, हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिंगत सैकिया और साइड रिदम पर थे आशीर्वाद कठेरिया। अब लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग यहीं पर संपन्न होता है। आपको साथ ही बता दें दोपहर 2:45 पर आप सुन सकेंगे अलका चतुर्वेदी के स्वरमिकाएं अवधि लोकगीत कार्यक्रम लोक माधुरी में। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी लखनऊ, आइए सुने फिल्म संगीत।

दम लगा के हईशा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम के आवाज में। संगीत अनु मलिक का है और गीत है वरुण ग्रोवर का।

0: बाहुबली द बिगनिंग इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी एम एम करीम की और पलक मुच्छल की। गीत रचना मनोज मुंतशिर का था, एम एम करीम का संगीत था। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा बस एक थोड़े से अंतराल के बाद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया।
2: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता किया है। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इस समझौते से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री टॉम बेंडरसन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा महाराज और रानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो सही काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अमरीका के साथ बातचीत में ईरान के रवैये की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा व्यवहार करता है जैसे बातचीत कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं। चीन से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापार करने में आसानी और देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह से फेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामा को 21-12, 21-13 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची से हार गईं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विदितसन से हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडारण सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़। न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर और DTH पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी लखनऊ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार। आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार। खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार। घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार। सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार। ईमेल और पाती के होए भरमार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत का, आइए नए गीतों को सुनते हैं।

जी हाँ, ये गीत हमने लिया है नए तराने में। सबसे पहले इस गीत को शामिल किया है और कोई मिल गया फिल्म का ये नगमा है, जिसे आवाज़ दिया है उदित नारायण और चित्रा ने। राजी

अमावस फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे अरमान मलिक और पलक मुछाल की आवाज़ में। और श्रोताओं, आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। ये नगमा हमने लिया है फिल्म प्रीतिजिंटा, अलका याग्निक और कुमार सानू, उदित नारायण के स्वर में ये गीत है। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सलाम नमस्ते। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ शान और गायत्री अय्यर की है। गीत रचना जयदीप सहनी की है और संगीत से सजाया है विशाल और शिखर ने।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

सरफरोश फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे आमिर खान और अलका याग्निक के आवाज़ में, समीर के बोल थे और जतिन ललित का संगीत था।

सरफरोश फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे आमिर खान और अलका याग्निक के आवाज़ में। समीर के बोल थे और जतिन ललित का संगीत था।

राज रिबूट। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। और श्रोताओं, अब फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अंतिम नगमा आपको सुनवा रहे हैं और अगली आवाज है इस गीत में अभिजीत की। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है जतिन ललित का। फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। 11 बज चुके हैं। अब पेश है फरमाइशी फिल्म नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिली जज्बात अधूरी रहती। सभी सुनने वालों को राजेश्वरी का नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: राजेश्वर सर जी बोल रहे हैं आप?
0: जी राजेश्वरी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप?
1: जी, आपसे बहुत दिन बाद बात हो रही है।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: आज असल में लाइन गड़बड़ कर रही 25 वाली है,
0: हाँ आज ये
1: तो हमारे
0: जानकारी।
1: स्रोता 0522 2238 845 वाला नंबर मिला है।
0: जी
1: यही हम नंबर मिलाया है।
0: हाँ जी, हाँ जी, आज जो टेलीफोन नंबर है वो है 2238845।
1: हाँ, जी यही है
0: जी
1: सर।
0: भाई अपना नाम बताएं।
1: जी, विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर से। ठीक
0: अच्छा, कैसे हैं भाई? घर में सब लोग ठीक हैं?
1: है सर, बढ़िया है सब।
0: गाना कौन सा सुनवाना है आज?
1: शंकर फिल्म का है, जाना नैन नैन मिला के। दो तीन नाम सर ले सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बताएं।
1: ओमकार सीतापुर से हैं, सुनील गोकुलपुर से हैं, और भगवान सिंह परमार हैं, गंगनदीप है औरैया से, और सुरभि सीतापुर से हैं, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से हैं, अजने सुने सभी के लिए आपके लिए सर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी?
0: जी अपना नाम बताएं।
1: संत राम, लखीमपुर खीरी अलीगंज।
0: क्या हाल चाल है भाई?
1: बढ़िया है सर, कैसे हैं आप बताइएगा?
0: सब ठीक है, दुआएं हैं आपकी। गाना कौन सा सुनवाना है आज?
1: जी गाना हमको यही सुनना है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: अच्छा,
1: और हम दोनों आंखों से ब्लाइंड हैं, मतलब बात

0: रहे हैं आपसे, और सबसे पहले आपको और सारी टीम एफएम को जितने सुन रहे हैं उनको प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई आपकी जो नमस्कार है वो तमाम सुनने वालों तक पहुंच गई है, अच्छा लगा आपने आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है।
0: जी,
1: गाना कौन सा सुनवाए हैं?
0: गाना बताया था आपने कि ये सावन को करके झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: सुनवाया जाए फिर।
0: और क्या, और मतलब ये तो क्या सर, ये कुछ नियम बदल गया क्या? पहले तो कार्यक्रम संदेश अजीत पे हमारे आता था कार्यक्रम,
1: नहीं वो दूसरे चैनल पर आता है इस समय, जब अच्छा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें प्राइमरी चैनल का जो प्रोग्राम है वो तो कई लंबे वक्त से चल रहा है। हाँ जी,
0: ये कौन सा चैनल भाई?
1: ये प्राइमरी चैनल है आकाशवाणी लखनऊ का, मीडियम वेव पर।
0: अच्छा, ये प्राइमरी चैनल में लगा?
1: जी जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार, राधे राधे।
0: जय श्री राधे राधे। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ और सार से मेरा पहली बार बात हो रहा है।
0: अरे वाह आशुतोष जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो आपको। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली मरतबा आपसे मुलाकात हो रही है।
1: सार जी, आपकी आवाज कम आ रहा है।
0: अच्छा, कम आ रही है। ओके,
1: कम आ रहा है अभी।
0: चलिए कोशिश करते हैं कि कहते हैं अपने टेक्निकल के साथियों की थोड़ा सा आवाज और बढ़ा दें।
1: तो मेरा फरमाइश बोल देता हूँ क्योंकि आपकी बात क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है।
0: जी जी जी, बताएं बताएं।
1: तो सर आज मुझे सुना दीजिए, 1978 में रिलीज हुआ था, फिल्म का नाम है आजाद। गाने का बोल है मैं हूँ तेरे प्रेम दीवानी, मशहूर सिंगर लता जी ने गाया है, आनंद बख्शी जी ने लिखा है, राहुल देव बर्मन जी ने सुर से साधा इस गाने।
0: वाह वाह, क्या क्या क्या बात है, पूरी डिटेल आपकी, आपको याद है गाने की, अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।
1: सर आपका इजाजत हो तो मैं दो चार दोस्तों भी याद करता हूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें याद करें।
1: पहले आपको सुनाना चाहता हूँ त्रिपुरा से अविनाश तेली, मेरे धर्म पत्नी संगीता देवनाथ, मध्य प्रदेश से रमेश प्रजापति जी, भगवान सिंह परमार, मांगीलाल जी, केसरी सिंह राजपूत, राम बाबू शर्मा, और उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद जी, प्रेम दास बाबा जी, पूनम जी, विजय पांडे जी, देवी शंकर जी, और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी दोस्तों का। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन साहब बोल रहे?
1: जी मैं श्रीपाल गोयल, दिल्ली से।
0: ओके श्रीपाल जी, कैसे हैं आप?
1: सर ठीक है सर, सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
0: अच्छा
1: जी सर, पहली बार शायद आपसे बात हो रही
0: है। सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जी,
0: क्या करते हैं आप जी?
1: सर दिल्ली में काम करते हैं कंपनी में।
0: ओके, रहने वाले कहाँ के हैं?
1: सर हरियाणा के।
0: ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, शुभ हो, मंगलमय हो आपके लिए सब कुछ। अच्छा लगा कि आपने आकाशवाणी लखनऊ को याद किया है। गाना कौन सा सुनवाना है आज?
1: कुछ है, कभी कम से दिल लगाया।
0: ओके, सुनवा जाए।
1: हाँ जी, धन्यवाद आपका।
0: लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: अच्छा, मौसम ठीक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम ठीक है और हवा भी चल रही है।
0: वाह।
1: और इस ठंडी ठंडी हवा में आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं,
0: क्या कहने। क्या काम करते हैं आप?
1: जी हम तो सेब की बागवानी करते
0: हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा काम है भाई
1: जी।
0: कैसे चल रहा कारोबार? ठीक चल रहा
1: है? जो हमारे जो सेब है पूरे देश तक पहुँचे हैं, खासकर

0: आप तक जो लखनऊ तक या पूरे भारत तक पहुंच जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, आपका व्यवसाय सफल रहे। शुभ आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो। गाना कौन सा सुनवाना है
0: जी? मुझे गाना सुनना है रब करे तुझको प्यार हो जाए।
1: अच्छा
0: जी जी जी,
1: तो सुनवाई जाए फिर।
0: बिल्कुल सुना दीजिए।
1: लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कैसे हैं आप भाई?
1: जी सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आकाशवाणी लखनऊ का नियमित होता हूँ जी, और फोन लगा के बात भी करता हूँ। अभी हमारे दोस्त जैसे कि शिवपाल गोयल, उसके बाद में आशुतोष जी, इनका कॉल आया। उन्होंने बताया कि अभी नंबर चेंज कर दिया ना, कल से आज नंबर अलग है।
0: हाँ हाँ, आज टेलीफोन चेंज हुआ है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि
1: नंबर हाँ हाँ हमें, और हम आपको आपसे बात हो गई हमारी।
0: हाँ,
1: मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुन रहा हूँ सर मैं आपका।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: जी फिल्म का नाम है जन्नत, और गाने के बोले जो ख्वाबो ख्यालों में सोचा नहीं था।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: सर जी, नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार। कौन बोल रहे हो, कहाँ से फोन किया है?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना,
0: ओह,
1: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ सर जी।
0: मांगेलाल चंदेल जी, एक मखसूस अंदाज है आपका बात करने का, भाई क्या कहने,
1: जी
0: वाह।
1: जी सर जी, बहुत अच्छा लगा आप आ जाए, बहुत दिनों बाद अच्छा लगा हमको, क्योंकि आप अच्छा कार्यक्रम पेश करते हो। और हमारा एक सुझाव मान लो या शिकायत, कुछ भी मान लो, हम
0: अच्छा
1: आकाशवाणी लखनऊ के जो उच्च अधिकारी है उन तक हमारा ये सुझाव आप पहुंचा देना।
0: अच्छा
1: सुझाव ये है कि हमारे भाई साहब को जल्दी जल्दी ड्यूटी दें तो और भी अच्छा रहेगा।
0: आपकी इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वो ज़रूर अवसर देंगे इस बात का कि मैं लगातार आपकी
1: जी।
0: सेवा में
1: और
0: हाज़िर
1: एक
0: हूँ।
1: बात जी है कि जो आज आपने लाइन बदली है, इस लाइन में बढ़िया आवाज आ रही है।
0: हाँ, ये टेलीफोन लाइन थोड़ा
1: हाँ,
0: सा
1: ये
0: वो
1: टेलीफोन लाइन में बढ़िया आवाज आ रही। वो 25 वाली लाइन में कुछ आवाज कट पिट के आती थी, लेकिन इसमें होल्ड पे भी बढ़िया आई, ऑन ईयर भी बढ़िया आ रही है,
0: बहुत
1: बढ़िया
0: अच्छा,
1: आवाज आ रही मेरे को तो
0: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी घर में सब लोग ठीक है भाई?
1: जी।
0: वाह,
1: और भाई साहब, फिल्म का नाम रहेगा शहनाई,
0: अच्छा, गूंज
1: और
0: उठी
1: बोल
0: शहनाई।
1: रहेंगे जीवन मितिया तेरा साथ रहेगा।
0: आए हाय, क्या फरमाइश की है भाई, वाह वाह।
1: और कुछ मेरे मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: क्यों नहीं, उनके बगैर तो कोई मसला
1: नरेश
0: ही नहीं है।
1: प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं,
0: जी
1: बेटा सिंह यादव जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं मनकारी से, दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से,
0: जी
1: प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, और रमेश प्रजापति जी हैं सीहोर से, और गोपाल ओझा जी हैं गुना मध्य प्रदेश से।
0: वाह,
1: इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं मांगेलाल जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हम इटावा से ओम नारायण कुशवाहा जी बोल रहे हैं साहब।
0: अच्छा, कैसे हैं कुशवाहा जी आप?
1: अरे बहुत बढ़िया है साहब।
0: अभी कहाँ?
1: बहुत दिनों बाद आपकी कॉल, वो आए आप।
0: हाँ चलिए चलिए, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात हो।
1: अरे बहुत धन्यवाद।
0: आपकी आवाज़ कहीं गूंज रही है, कहाँ पर बैठे हैं आप इस वक्त? अच्छा, गाना बताइए, कौन सा सुनवाना है?
1: गाना वो ये आया आया अटरिया पे कोई चोर आया।
0: अरे वाह,
1: मेरा गांव मेरा देश का है।
0: जी जी,
1: मित्र हैं हमारे साथ।
0: हाँ जी बताएं।
1: हाँ, इटावा से, लालपुरा से वो राहुल जी है।
0: अच्छा,
1: लालपुरा से राहुल जी है इटावा से, और औरैया से वो है गगनदीप कमल, और मध्य प्रदेश से है मामीलाल, और थाकावास से हैं सतीश जी। इन लोगों को और आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आज जिस टेलीफोन नंबर से बात हो पा रही है 0522 कोड नंबर है लखनऊ का

0: हेलो।
1: हाँ साहब।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्ते
1: जी, मैं ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल बोल रहा हूँ।
0: जी मनीराम जी, क्या हालचाल है आपके?
1: बस आप लोगों की शुभकामनाएं हैं सर, बहुत अच्छे हैं सर।
0: क्या करते हैं भाई आप?
1: जी हम लोग खेती किसानी काम करते हैं।
0: अच्छा, ठीक चल रहा है काम धंधा? काम ठीक चल रहा है?
2: हेलो,
0: काम ठीक चल रहा है?
1: अभी समय तो फ्री है, शादी विवाह चल रहे थे अभी।
0: अच्छा, गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: फुर्सत हो गए
0: जी, गाना बताएं।
1: जी साजन फिल्म का हमें सुनना गीत, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी को राधे राधे।
0: जय श्री राधा दे। कौन बोल रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
0: क्या हाल चाल है भाई?
1: बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हैं? हाल चाल
0: दुआएं हैं आपकी। गाना कौन सा सुनवाएं?
1: गाना सर सुनेंगे, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
0: क्या बात।
1: और बताना चाहूँगा सर कि अभी हम प्रयागराज गए थे, काशी बनारस भी गए थे,
0: अच्छा।
1: अयोध्या भी गए थे, तो प्रयागराज में नहाकर बहुत अच्छा लगा सर।
0: जय हो जय हो जय हो जय हो आपकी। वाह, आपकी आवाज़ सुन के हमने भी,
1: मैं ये गाना सुनना चाह रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी फरमाइश है आपकी।
1: और सर कहना चाहूँगा सभी सुनने वालों को, कोई एक एक बार जीवन में समय निकाल कर, अपना कीमती वक्त निकाल कर, जरूर प्रयागराज और अयोध्या में राम जी लला के दर्शन करने अवश्य जाएं।
0: क्या बात।
1: काशी जी में शिव शंकर भोलेनाथ के भी दर्शन करें।
0: जय हो।
1: जिससे अपना जीवन सफल हो और सफल बनाए।
0: जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। कौन साहब?
1: और भाईजान, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकायरी गांव से।
0: जी, फूलचंद जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बहुत बढ़िया है भाईजान, बहुत अच्छे हैं। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, का आनंद ले रहे हैं।
0: बहुत धूप है, बहुत गर्मी है और आनंद ले रहे हैं, क्या कहने।
1: जी।
0: बहुत अच्छा।
1: देखिए भाईजान, हर मौसम का अपना एक आनंद होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कभी बरसात का आनंद होता है, कभी सर्दियों का आनंद होता है, कभी गर्मियों का आनंद होता है। जी,
0: हाँ जी
1: मौसम है, सबका मन मजा
0: बिल्कुल
1: लेना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल। यही तो अपने भारत की तो खूबसूरती है,
1: जी सर,
0: तरह तरह के मौसम। गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: बिल्कुल भाईजान, कैसे हैं आप?
0: दुआएं हैं आपकी। गाना कौन सा सुनवाएं?
1: जी, फिल्म का नाम है शेष नांग और गीत के बोले कि हम आसमान भेजा इस जहान पे,

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? जी बताएं, अपना नाम बताएं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
1: अरे जोर से बोलिए ना सर, जोर से बोलिए। हेलो, आवाज थोड़े धीमे से आ रहा है।
0: अच्छा, आप
1: हेलो
0: जल्दी से कौन साहब बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: जी, पहले गुड मॉर्निंग और आकाशवाणी लखनऊ के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनु कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना।
0: जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत दूर से हमें याद किया है। गाना
1: और
0: कौन जी बताएं।
1: राजेश्वरी जी से बातचीत हो रहा है, मतलब बहुत बहुत एकदम बाकी दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें याद करना दिल को बेहद अच्छा लगता है, जैसे राजेश्वरी जी, है ना।
0: सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया
1: और
0: आपका भाई।
1: आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का
0: जी
1: दुख बताना चाहता हूँ,
0: जी जी
1: किशोर साहब के आवाज में। गाने का बोले से चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल चल खटारा खींच के चल यार, धक्का मार बंद है मोटर कार, ऐसे करके
0: क्या
1: गाने
0: बात,
1: हैं।
0: बहुत बहुत
1: और
0: है।
1: कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ
0: जी जी बताएं।
1: फटाफट।
0: जी जी
1: हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी है, अमर सिंह साहू जी है, विजय पांडे जी है, श्रीकांत जोशी जी है, प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, और अनवर भाई जी है, ओम प्रकाश नेमा जी है, और है ढेर सारे अभी सुन रहे हैं इस मन भावन। ओ हो, एकदम भूल गया हमारे राहुल भाई के लिए। और बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, आज मेरा फोन लग ही गया।
0: थैंक यू।
1: भगवान को मेरा बहुत प्रार्थना है, किया है आज लग तक।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताएं
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी। देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं सर।
0: जी बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर, हम बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपके, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, अहमदपुर बाजार में
0: दुकान। अरे वाह वाह वाह, बहुत मुबारक हो भाई, कैसा चल रहा है काम?
1: जी सर, काम तो बढ़िया चल रहा है, गर्मी चल रही है ना,
0: स्टेबलाइजर
1: वगैरह
0: अच्छा।
1: बनाते हैं।
0: हाँ, गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत होती है बिजली वालों
1: जी,
0: की,
1: लाइट गांव में कम रहती है ना, इसलिए
0: तो काम ज़्यादा रहता होगा।
1: जी

0: ये भी बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, जब लाइट जाएगी तब काम शुरू होगा अपना, है ना
1: जी।
0: चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका गाना कौन सा सुनवाना है?
1: जी सर, फिल्म का नाम है जिंदा दिल और गाने के बोल हैं आगे आगे तुम पीछे पीछे हम थक जाओगे ले लो जरा दम, और सर डेडिकेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को।
0: जी
1: सबसे पहले सर आपको।
0: अच्छा।
1: और हमारे कुलदीप गुप्ता जी हैं, मोहम्मद फैज अंसारी हैं, मुनान अंसारी जी हैं, नसीम अंसारी जी हैं, और हमारे जो है साहिबा अंसारी जी हैं।
0: बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो, जय माता दी। कौन साहब बोल रहे?
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी भैया, कैसे हैं आप?
1: बस सर बढ़िया हूँ और बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बात हो गई और आपसे यहाँ आकाशवाणी लखनऊ में कॉल लगाना इतना वो है कि हमारे हाथों से छूट के आसमान की तरफ पतंग कट के जा रही है और उसको लूटना जैसे पकड़ना होता है ना डोर से, जैसे आपको पकड़ना मुश्किल होता है सर, तो भगवान की दया से मेरा कॉल लग गया, तो वो फिर और सुनाइए सर।
0: बस दुआएं आपके, ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है भाई। गाना कौन सा सुनवाएं?
1: जी सर मैं आज गाना सुनूंगा क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ पर मेरा कॉल लगा, तो उसमें गाने को बोला है चुप चुप करे हो जरूर कोई बात है, कैसी मुलाकात है ये कैसी मुलाकात, और आपकी इजाजत हो तो दो तीन मित्रों को याद कर लूं।
0: जी जी जरूर
1: जी। सबसे पहले तो आप सुनेंगे और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है और गोल्डी भाई है, पुरुषोत्तम है, इटावा से रोहित है और दिनेश है, और आकाशवाणी लखनऊ के श्रोता चाहने वालों को उन श्रोताओं के लिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: आपसे ही बात हुई थी, मेरा खुश नसीब है सर जो आज फिर आपसे बात हो रही है।
1: मेरा भी नसीब है कि बहुत दिनों के बाद अगर आपसे मुलाकात हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का बहुत धन्यवाद, उसका शुक्राना भेजना।
0: सर फिल्म का नाम है वो दिल ये पागल दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे, माफिया फिल्म का है सर।
1: अच्छा,
0: और सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे जो अभी लाइव सुन रहे हैं सर।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितने भी साथी आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं आपका ये गीत सबके लिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर नमस्कार, ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: वाह भगवान जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपको कैसे हैं आप?
1: जी सर, आपको भी प्रणाम सर। मेरी पहली बार जब कॉल मिली थी सर आकाशवाणी लखनऊ पर सर, सबसे पहले

बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए सुबह से इंतज़ार किया और कोशिश भी की, फ़ोन कॉल लग भी गया, लेकिन धन्यवाद उनका और ज़्यादा जिन्होंने कोशिश भी की, इंतज़ार भी किया, लेकिन फ़ोन कॉल नहीं शामिल हो सका। कम से कम प्रोग्राम तो सुना, एक उम्मीद थी, एक भरोसा था, वो कायम रहे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले दिनों में कहीं ना कहीं कोशिश करते रहिएगा, आपके कॉल ज़रूर शामिल होगी। आपके धैर्य को प्रणाम करते हैं, आपके विवेक को प्रणाम करते हैं, आपकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिर कभी इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। मीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। फिल्म संगीत।

दिल है बेताब। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ उदित नारायण की थी। गीत के बोल लिखे थे रानी मलिक ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शे का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम है फूल।

जिगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत आनंद मिलन का था। आइए अब नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ अलका याग्निक की है, फिल्म का नाम है राज़।

राज फिल्म का गीत आपने अलका याग्निक के स्वर में सुना। शब्द रचना समीर की थी और संगीतकार थे नदीम श्रवण। आइए अब उदित नारायण के साथ अलका याग्निक का गाया हुआ गीत आपके लिए। फिल्म का नाम है कसूर, गीत समीर का है और संगीत नदीम श्रवण का।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म कसूर के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश हैं कुछ सदाबहार फिल्म नगमें।

प्रतिज्ञा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इससे पहले जो गीत आपने सुना फिल्म का नाम था अनोखी अदा, आवाज़ किशोर कुमार की थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शे का लिखा हुआ एक गीत जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लोफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। आइए अब लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी का गाए हुए गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है इंतकाम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे, फिल्म थी इंतकाम। आइए अब आज के इस प्रोग्राम के आखिर में, आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का एक गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना निदा फाजली की और धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

आप तो ऐसे न थे। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। गीत के बोल लिखे थे निदा फाजली ने और धुन बनाई थी उषा खन्ना ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमों का प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है।

0: मीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। एक बजा है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने यह बात कही।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता

0: नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। दुर्गा साहू, पत्नी श्री स्वर्गीय तीरथ साहू, निवासी तृप्ति नगर गणेशपुर, थाना चिन्हट, लखनऊ से हमें सूचित करती हैं कि दीपिका उर्फ गौरी साहू, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है। दीपिका पिछले 6 मार्च 2026 से कहीं लापता हो गई हैं। जिस किसी को भी दीपिका उर्फ गौरी साहू के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। दुर्गा साहू, पत्नी श्री स्वर्गीय तीरथ साहू, निवासी तृप्ति नगर गणेशपुर, थाना चिन्हट, लखनऊ। श्री देवेंद्र कुमार, पुत्र श्री स्वर्गीय दयाराम, निवासी एच प्रतिभा विकास पब्लिक स्कूल अवंती बिहार, राजाजीपुरम, थाना पारा, जनपद लखनऊ से हमें सूचित करते हैं कि प्रत्यूष पटेल, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच लगभग, रंग गेहुआ है, चेहरा पतला है। प्रत्यूष पटेल पिछले 30 अप्रैल 2025 से कहीं लापता है। जिस किसी को भी प्रत्यूष पटेल के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री देवेंद्र कुमार, पुत्र श्री स्वर्गीय गयाराम, निवासी एच प्रतिभा विकास पब्लिक स्कूल अवंती बिहार, राजाजीपुरम, थाना पारा, जनपद लखनऊ। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
3: ओ, 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आज रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा समय और संवेदना के रचनाकार पद्म नारायण राय, इन पर एक विशेष कार्यक्रम हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे। विज्ञान जगत में 7:31 पर परमाणु ऊर्जा पर चर्चा होगी। इसके अलावा विज्ञान समाचार और साथ ही 21वीं सदी का ईंधन परमाणु सपनों को पंख लगाएगा थोरियम। डॉक्टर सीएम नौटियाल के साथ बातचीत करेंगे प्रवीण कुमार। विज्ञान जगत कार्यक्रम में 7:31 पर यह थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747

0: आवर्स पर, दिन के 1:10 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद और भूमि पूजन प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में हलचल है, इन हालात में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है।
2: बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सस्सी नेतृत्व में, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंध का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर तेल कंपनियों पर बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी।
1: मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है।
3: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है।
1: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव, गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जिज अफराद भी मौजूद थे। ताल नादौर गोरखपुर में वाक़ ये बैनुल अक़वामी स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। तामीर के लिए 633.9 मिलियन रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 46 एकड़ रकबे में बने इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश होगी। स्टेडियम की तामीर 23 दिसंबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने गोड धुइया नाला प्रोजेक्ट के पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे का मुआयना किया और जरूरी हिदायत जारी की। दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने मुआशे की तश्कील और दानिश्वरों के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत ने सिर्फ तरक्की को तेज कर रही है बल्कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को रोजगार की जमानत भी दे रही है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मुनक़दा मुश्तरका डिवीजनल खरीफ पैदावारी सेमिनार का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब शाही ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने को है, रियासती हुकूमत की तरजीह किसानों को बेहतर बीज फराहम करना है। मेरठ से प्रयागराज तक चलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर सहूलत कल खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस रूट पर 15 दिन की टोल फ्री सफर की मुद्दत का ऐलान किया था। कल लखनऊ मुनक़दा AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 में मुल्क भर से 50 से ज्यादा सीनियर इंतजामी अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महत्वाकांक्षी AI पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के विजन पर कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसील से तबादला ख्याल किया गया। रियासती तब्दीली कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रियासत सरकारी कामकाज में AI की तब्दीली के लिए कौमी मॉडल बनने की तरफ बढ़ रही है और इससे रियासत के $1 ट्रिलियन की मईशत बनने के हदफ को नई तहरीक मिलेगी। आज रोशनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 16 मई को माहिर फिजिस्ट और इंजीनियर थियोडोर मेमन के 1960 में लेजर के पहले कामयाब ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। वहीं आज डेंगू का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए सरकारी तौर पर इस दिन का ऐलान किया गया। इस दिन का मकसद डेंगू के बारे में बेदारी पैदा करना और मानसून से कबल इसके खिलाफ हिफाजती इकदामात को मजबूत बनाना है। यह दिन मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए सादा कंट्रोल हिकमत अमली को फरोग देने के लिए मनाया जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एहतियात, सफाई, चौकसी और बरवक्त इलाज के जरिए डेंगू पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने रियासत के लोगों से मुतालबा किया कि वह अपने घरों, इर्द गिर्द और मुआशे को साफ सुथरा रखने का अहद करें। रियासत भर में आज वट सावित्री का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज में खवातीन संगम मुकद्दस गुस्ल कर रही हैं और बरगद की पूजा कर अपने शौहरों की सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हैं। खवातीन ने भी आज निर्जल

0: जल व्रत रखा है। उन्नाव में भी सुबह से ही शादीशुदा खवातीन रवायती मेकअप कर रही हैं और वत सावित्री का व्रत रख रही हैं और दुआएं मांग रही हैं दायमी खुशी के लिए। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने कामयाबी हासिल की। रात गए तक जारी रहने वाले मैच में लखनऊ ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को जीत के लिए 188 रन का हदफ रखा, जिसे लखनऊ के सिर्फ 16.4 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्शल ने लखनऊ की जानिब से 38 गेंदों में 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:15 हो चुके हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुने वाले सभी श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी क्या नमस्कार। साथे हमरी सभी सखियन होरिन का वट सावित्री पूजा के हार्दिक शुभकामना। सखियों, आज जेठ माह के अमावस तिथि आए, जोने का बड़ मावस या बरगदाही भी कहा जाते है। और यह दिन सभी सुहागिने अपने अटल सुहाग बदे, अपने सुहाग के लंबी उम्र बदे बट यानी बरगद बिरवा की पूजा करती हैं। या वट सावित्री पूजा हमका पर्यावरण संरक्षण के संदेश भी देते हैं कि बरगद विरवा जोन है वही हमका शुद्ध प्राणवायु देते, हमरे जीवन क्या रक्षा करते है। तो हमका अपने जीवन बदे बरगद विरवा के संरक्षण भी करे का चाहिए। लेकिन देखो, एक बात बताइए, आजकल आप सब भी देखे हो और हमू देखे हैं कि बहुत सी बहनी हो रे का करीन ही कि वही बरगद के डार लाए लाए के गमला में खोस के वही के पूजा कर ली ना। और हम तो यह सोच रहे हैं यही का देख के कि वैसे अखंड सुहाग के बर मांगत थी, तो सोचो जब हम बिरवा का ही खंडित कह दीन मने काट डारिन तो फिर वैसे हमका अखंड सुहाग के आशीष कैसे मिली। तो यह सोचनीय बात है, यही पर जरूर सोचे का चाहिए। तो हम तो यह कही थन कि देखो आज बट सावित्री पर हम सब का या काम जरूर कहे का चाहिए कि भाई हम अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य बदे और पर्यावरण के शुद्धता बदे बरगद पीपर जैस बिरवा जरूर लगाई। और पंचो देखो, आप सबका एक बात और याद रखे का चाहिए कि हमारे पुरखे जोन है वही पर्यावरण संरक्षण का तीज त्यौहार में समेट के विरासत के रूप में हमका दई गए हैं, जैका कि हमका सहेजे का चाहिए। मूल हम जोन है थोड़ा सा भाई हमें लापरवाही कर रहे हैं, वो जो एक विरासत हमका मिली है वही का सहेज नहीं पाए रहे हैं अगर कही तो। हाँ, और इतनी एक बात और कि देखो जो हमारी परंपरा है ना, जैसे कि हम बतावा कि भाई बरगद जैसे विशाल होते वह तान हमारी परंपरा भी विशाल है। हाँ, कैसे कि देखो बरगद की बिरवा कितना छाही देते हैं और सबका छा देते हैं, वो कौनों के भेदभाव नहीं करत, सबका शुद्ध वायु देते हैं। तो यह तान हमारी परंपरा भी है जोने माँ की सर्वे भवंतु सुखिना सिखावा गवाह है हम कहाँ। और या सर्वे भवंतु सुखिना जब हम कही थन तो यही में सब कुछ आए जात है, नदी ताल पेड़ पौधे पशु पक्षी या सब कुछ हमरे प्रकृति के यार हिस्सा हैं, हमरे पर्यावरण के यार हिस्सा हैं। और हमका या सिखावत है कि इनकर जब जीवन है तब है हमार जीवन भी ठीक ठाक चली, और अगर यही माँ असंतुलन हुई तो वही से हमार पंच के जीवन भी प्रभावित हुई। तो देखो हम तो यही कही थे कि भाई हमका अपनी जो परंपरा है वही का सही रूप में अगली पीढ़ी तक पहुँचावे का चाहिए, वही माँ कोनो काट छाट कही के विकृति न ले आवे के चाहिए जैसन कि आजकल देखे में मिल रहा है। और अगर आज हम डार काट के पूज रहे हैं तो सोचो अगर यह रहा, अगर अभिनों हम नहीं चेतन बिरवा नहीं लगाएं तो जो हमारी आवे वाली पीढ़ी है वही का तो डारो न मिली, फिर वही का करी है, वही तो भाई कागज पर जो चित्र बनाई है और वही के पूजी हैं, तो कागज के चित्र से भला उनका शुद्ध वायु मिली नहीं मिल सकत है। तो यही का हमका सोचे का है और यही के लिए जरूरी है कि आज वट सावित्री पर सबसे बढ़िया उपहार यह है, सबसे बढ़िया आशीष यह है कि हम एक ठे बिरवा लगाई और अगले साल देखो जब फिर से वट सावित्री की पूजा होए तो हम अपने लगाए बिरवा में ही पूजा करी। और अब तो देखो मानसून आवे वाला है तो हमका भरपूर मौका मिली कि हम एक बिरवा जरूर लगाई। और यह के साथ अब तक हमारी बहुत सी सखी होरी जो है वो फेरी वोरी कही चुकी हुई हैं, पारण भी कही चुकी हुई हैं, तो आज सुहागिनन के दिन है तो एक सुहाग गीत तो बनते हैं। तो चलो कार्यक्रम में सबसे पहले हम अपनी सखियन होरिन का सुनवा रहे हैं सुहाग गीत। स्वर है सुमिता श्रीवास्तव बहनी की।

भाई सही बात है। देखो आज जोन सखियन होरी पूजे गई हैं वही 16 श्रृंगार माँ सजी धजी और सच्चो जोन है वही देवी स्वरूपा लगती हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य भी लगत है या पूजा करती वक्त हमरी सखियन जोन है। तो चलो अब आगे बढ़ी थन और आपका बताइए श्रोता पंचों की आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिवस आए और वह है राष्ट्रीय डेंगू दिवस जोने का कि हर बरस 16 मई का मनावा जाते है। अच्छा बहुत से श्रोता पद सोचत हुई हैं कि भाई डेंगू दिवस भला कौन मनावे वाला त्यौहार है। तो देखो हम बताएं कि या त्यौहार यह है कि यू लोगन में जागरूकता पैदा करे खातिर या दिवस के आयोजन किए जाते जोने कि लोग डेंगू के मच्छरन से अपन बचाव कर सके, डेंगू के लक्षण का पहचान अब सीख सकें। काहे से कि कौ बुर होत का है ना कि अगर हम सही समय पर लक्षण का नहीं पहचान पाई थन तो फिर उपचार करे में देरी हो जाते और हम जोने बहुत सारा घरेलू नुस्खा अजमाइज रही थन और वही में कबो कबो देर हो जाती हैं। तो एक तो एक उद्देश्य यह है कि हम लक्षण का पहचान अब सीखी, अपन बचाव कर सीखी कि कैसे हमका बचे का है और दूसरी बात कि यह कर सही उपचार का है यह जानना बहुत जरूरी है। काहे से कि बहुत बेर लोग जो उन्हें वही खुद से कोनो दवाई खरीद के खा लेते हैं, कबो कोनो घरेलू टोना टोटका भाई इस्तेमाल करते हैं, कोनो घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करे लगते हैं और वही से जब फायदा नहीं हो तो फायदा तो नहीं हो बल्कि नुकसान हो जाते। तो यह सब चक्रन में भाई लोग ना पड़े, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, वही सही समय पर लक्षण का पहचाने, सही उपचार करावे और पूरा उपचार करावें। तो यह सब उद्देश्य के बदे 16 मई का जैसे कि हम बतावा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनावा जाते और आज हम अपने कार्यक्रम में अपने श्रोता पंचन का भी यह विषय में विस्तार से जानकारी देवे के लिए कि डेंगू जोन है वही कैसे होते हैं, वही के लक्षण कहाँ हैं, वही से कैसे बचाव किया जा सकता है, का उपचार है, यह सब तमाम जानकारी बदे एक भेंटवार्ता ले आए हैं कि डेंगू के

0: निवारण, लक्षण, उपचार एवं बचाव और या विषय में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चमन लाल रावत जी, जिनसे की हमहीन बातचीत किया है। तो आप सब सुनो या भेंटवार्ता। श्रोताओं, वैसे तो ये चिलचिलाती गर्मी का मौसम है, मई का महीना है और हिंदी के महीने की बात करें तो ज्येष्ठ माह चल रहा है, लेकिन इस गर्मी के बीच बीच में बारिश भी दस्तक दे रही है, जिससे मौसम सुहाना तो हो रहा है, साथ ही वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिसके कारण मच्छरों को पनपने का पर्याप्त अवसर मिलता है और ये मच्छर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी भी ले आते हैं। लेकिन अगर थोड़ी समझदारी और थोड़ी तैयारी से हम काम करें तो हम डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं, मच्छरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही डेंगू के लक्षणों की पहचान और उपचार की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए, ताकि हम समय पर लक्षणों को पहचान कर डेंगू का सही और पूरा इलाज करा सकें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में डेंगू के कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के विषय में हमें जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर चमन रावत जी, जो कि एक होम्योपैथी चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद
0: जी। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि डेंगू क्या है और ये कैसे फैलता है।
1: देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है और ये मॉस्किटो की वजह से फैलता है। जब कोई भी मादा जो मच्छर होती है वो किसी भी एक ऐसे पर्सन को काटती है जिसको पहले से डेंगू होता है, तो अगर वो दोबारा किसी को काट लेती है तो फिर उसको भी डेंगू हो जाता है, और वो जितनों को भी काटती जाएगी सबको डेंगू होता चला जाएगा। तो ऐसे मौसम में हमें मच्छरों से बचना रहेगा, और अगर हम कुछ एहतियात रखें तो हम मच्छरों से बच सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये मच्छर के काटने से होता है और कोई मादा मच्छर के काटने से, ये कोई खास किस्म का मच्छर है?
1: जी जी, इसे हम लोग एडीज एजेप्टी कहते हैं, और ये मच्छर जो होता है ये दिन में ज़्यादा सक्रिय होता है, तो इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, ये ज़्यादातर लोगों के पैरों में ही काटता है, तो ऐसा नहीं कि रात में नहीं काट सकता है, लेकिन दिन में ज़्यादा सक्रिय होता है, तो दिन में इसकी सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं।
0: जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये मच्छर दिन में ज़्यादा काटता है, तो हमें दिन में भी अपना बचाव करना है, क्योंकि अमूमन हम लोग रात में तो मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन दिन में लापरवाही हो ही जाती है। और डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानना चाहें कि डेंगू का जो बुखार है वो जो सामान्य बुखार हैं और भी जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं, इसमें और डेंगू में क्या अंतर है?
1: देखिए, सामान्य बुखार बिल्कुल साधारणी बुखार कहते हैं, जिसे हम लोग सिंपल वायरस फीवर कहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। डेंगू वायरस के चार फेज होते हैं। तो अब सामान्य जो बुखार होता है वो जनरली धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जो बदन दर्द होता है, उसका जो हेडेक होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती है, उसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। लेकिन अगर आप डेंगू फीवर की बात करें तो डेंगू फीवर स्टार्टिंग से ही 103-104 डिग्री बुखार होगा। डेंगू फीवर में हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जॉइंट्स में बहुत तेज़ दर्द होगा। डेंगू फीवर में हड्डियों में इतना तेज़ दर्द होता है कि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसे भी कुछ लक्षण हैं जिसे कि मरीज जो है वो स्वयं देखकर पहचान सके कि हाँ, ये लग रहा है मुझे डेंगू है?
1: हाँ जी, डेंगू का फीवर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे बदन के साथ आपके आंखों में, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, या फिर आपको बुखार में मतलब घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है और फीवर तेज ज्यादा हो, तो ये डेंगू के समान लक्षण है। ऐसे कंडीशन में आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें।
0: जी, और डॉक्टर साहब, कुछ त्वचा पर भी ऐसे कुछ?
1: हाँ जी, अगर डेंगू का फीवर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, 5 दिन के बाद हो जाता है, तो फिर हमारे त्वचा पर रैशेस पड़ने लगते हैं, ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए।
0: मतलब लाल चकत्ते उभर
1: जी जी लाल चकत्ते उभर आते हैं, ये भी डेंगू का एक सामान्य से थोड़ा सा अलग लक्षण है।
0: जी डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में अक्सर ये भी सुना जाता है कि इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, वो कौन सी अवस्थाएं हैं बुखार की?
1: देखिए, डेंगू की अवस्थाएं, एक प्राइमरी फेज होती है जो कि पहले से 5 दिन तक चलती है, इसमें इतनी सीवियरिटी, इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो 5 दिन के बाद जब डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तब असली लक्षण शुरू होते हैं, तब असली जी मतलाना, तब बॉडी में रहते शुरू होते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें अपने तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने डेंगू के लक्षणों के बारे में बताया हमें, हम ये भी जानना चाहेंगे कि डेंगू के गंभीर लक्षण क्या हैं, ताकि जो मरीज हैं या उसके जो घर वाले हैं वो तुरंत बिना देर किए डॉक्टर के पास पहुंचे और उन्हें उपचार मिल सके।
1: हाँ जी, डेंगू का जो फीवर होता है, जब ये अपने 5 दिन से ऊपर जाता है
0: जी,
1: तब प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, और जब प्लेटलेट्स ये धीरे धीरे करके 20,000 या 25,000 ऐसे बचती हैं, तो हमें फिर जो है ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, जैसे यूरिन से ब्लीडिंग, स्टूल से ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, अगर ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं और पेशेंट को बहुत बेचैनी सी लग रही है, या इस तरह के और भी कॉम्प्लिकेशन

0: दिखते हैं, तो ये ऐसे अलार्मिंग साइन है जिससे पेशेंट को आप अपने तुरंत नज़दीकी डॉक्टर या अस्पताल में दिखाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, जब डेंगू का बुखार सामान्य तौर पर है, जो शुरुआती 5 दिन आपने बताए, तो हम गंभीर अवस्था तक पहुँचे ही ना, तो इसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डेंगू फीवर में अगर हम शुरू में ही एहतियात बरत लें, शुरू में ही अपने आप को हाइड्रेट रखें, अगर पानी पीते रहें, ताज़ा फलों का रस लेते रहें, अगर हम शुरू से ही ORS घोल लेते रहें जिसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या नारियल पानी लेते रहें, तो फिर ये आपको आगे के स्टेजेस में नहीं जाने देगा, ये आपको जल्दी फीवर से रिकवरी कर देगा। ऐसी कंडीशन में आप फीवर के उस फेज में जाने से बच सकते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़े, इसको आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये कि जब किसी को पता चलता है कि जांच में पुष्टि होती है कि डेंगू का बुखार है, तो बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंगू का क्या उपचार संभव है, और अगर उपचार है तो क्या उपचार है इसका?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो डेंगू फीवर जैसे ही आप के चिकित्सक जांच कराते हैं, डेंगू NS1 के नाम से ये जांच है, तो इसमें ऐसी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। डेंगू में 95% पेशेंट घर की दवाओं से ही, मतलब घर के अगल बगल के डॉक्टर से ही ठीक हो जाते हैं, उन्हें किसी तरह की एडमिशन की दिक्कत नहीं रहती है।
1: जी,
0: आप डेंगू को घर पर भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जो उपचार ले रहे हैं, उपचार के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो मरीज है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके?
0: जी हाँ, देखिए उपचार ऐसे है कि आप अगर ताज़े फलों का रस लेते हैं, आप अगर अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेशन में रखते हैं, तो आपकी प्लेटलेट्स इतनी जल्दी नहीं गिरेंगी, वो एक स्लोनेस से गिरेंगे। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अगर आप सेल्फ मेडिकेट करेंगे, खुद ही उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, या कुछ अपने मन से कोई एंटीबायोटिक ले लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी। तो इसीलिए डॉक्टर्स की सलाह से अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें खुद से किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं लेनी है। जी, और डॉक्टर साहब, चूंकि आप होम्योपैथी चिकित्सक हैं, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी में डेंगू का इलाज क्या संभव है, और कितने दिन लग जाते हैं डेंगू से पूरी तरह से स्वस्थ होने में?
0: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है डेंगू का। देखिए, डेंगू का फीवर जो होता है वो एंटीवायरल होता है, एंटीवायरल में होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयां हैं, जैसे मैं कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ। एक यूपिटेरियम परफोलेटम नाम से दवा आती है, करीका पपाया नाम से दवा आती है, जेलसीमियम नाम से दवा आती है। ये सब दवाएं होम्योपैथी में लेने से पेशेंट का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट का बोन मैरो जो कि सप्रेस हो जाता है बुखार के दौरान, प्लेटलेट्स नहीं बना पाता है, वो दोबारा प्लेटलेट्स बनाने लगता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी करता है दूसरी दवाओं की अपेक्षा।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात रही, और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि डॉक्टर साहब ने जिन दवाओं के नाम बताए हैं, लेकिन उन्हें आपको खुद से खरीद कर नहीं खाना है।
0: जी, जी, जी।
1: क्योंकि होम्योपैथी का एक सिस्टम भी है कि उसमें हर मरीज की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि पपीते का पत्ते का रस लेना चाहिए, या कुछ खास किस्म के फल हैं, या बकरी का दूध है, इनका सेवन जो है वो डेंगू में बहुत फ़ायदेमंद होता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है?
0: देखिए, ये तो ग्रामीण इलाकों में या ऐसे बहुत फैला हुआ है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो है ये बकरी का दूध पीने से या पपीते का पत्ते का रस पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। अक्सर हम लोग प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। उल्टा इसके कभी कभार नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर देखे गए हैं कि कोई सेकेंडरी, पपीते के पत्ते को अगर आपने बिना उबाले ले लिया तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई हो गया, आपको लूज मोशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गई, तो डेंगू भी बिगड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप घरेलू उपचार के बजाय आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपको अगर इनको भी लेना है तो सही तरीके से बताएगा कि कैसे लेना है आपको।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हम डेंगू पर बात कर रहे हैं, और डेंगू का मौसम अभी और तीव्रता से आने वाला है क्योंकि अभी मानसून आएगा। तो ऐसे में आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं?
0: देखिए, डेंगू से बचाव गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है, जगह जगह DDT के फॉग कर रही है, जगह जगह पेस्टिसाइड लगा रही है, लेकिन हमें खुद भी अवेयरनेस रखनी चाहिए। हमें अगर आपकी छत पे गमले पुराने पड़े हैं, पानी भर जाता है बारिश के दौरान, या टायरों में पानी भर जाता है, या ज़्यादातर आप देखते हैं बारिश में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो कूलर में लोगों का पानी यूं ही पड़ा रहता है, तो उसको आप बदल दें। हर तीसरे दिन पानी बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो तीसरे दिन अंडे उनके फूट जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो मच्छर इससे पहले डेवलप करें, आप उन पानी को बदल दें, तो आप पूरी तरह से ठीक रहेंगे।
1: जी, यानी कि उस जो साइकिल है उसको हमें ब्रेक करना,

0: करना जी
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने बहुत उपयोगी जानकारी दी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता इन बातों पर अमल करेंगे और डेंगू से अपना बचाव करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने डेंगू से संबंधित इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के संग साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोता पंचो, अभी आप सुनियो या भेंट वार्ता कि डेंगू के कारण, लक्षण, उपचार और बचाव। और एक बात देखो, हम सबका समझ में भी आई हुई कि भाई डेंगू से बचे के लिए सबसे ज़रूरी काम जो हमका करे का है वही है कि अपने आसपास साफ सफाई रखी, अपने घर में साफ सफाई रखी। और विशेष रूप से देखो, जैसे कि डॉक्टर साहब बताएं कि हमारे छतन पर अक्सर कबाड़ इकट्ठा रहते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, और होता का है कि वही में पानी जमा हो जाते, फिर वही में मच्छर पनपते हैं। और यह हाल भाई घर के आसपास भी रहते हैं कि कहूँ अगर मान लो गड्ढा गुड्ढी है, कोनो नाली है, तो वही का साफ सुथरा रखो जो कि वही में पानी न जमा हो पावे, कैसे कि यह जमा हुआ पानी ही मच्छरन का पैदा करते हैं। और गंदगी, एक बात बताई कि खाली देखो डेंगू की ही बात नहीं ना, बल्कि गंदगी जो है वही हर बीमारी का न्योता देती। अब चाहे वही हमारे पेट से संबंधित कोनो बीमारी हो, चाहे हमारे त्वचा से संबंधित कोनो बीमारी हो, और ये गंदगी के कारण होता का है कि संक्रमण फैलते हैं। और जब संक्रमण फैलते हैं तो भाई वही हम मतलब कि हमका बीमार कही देते हैं। तो यही से बचे के लिए हमका साफ सफाई रखे का है। और या जो संक्रमण के सफ़र है ना, यही की शुरुआत जो है वही हमारी हाथन से होती, यानी कि संक्रमण के जो सफर है वही हाथ से चल के और हमारी आंत तक पहुंच जाते हैं। कई बार जब हम पेट की समस्या से ग्रसित हुई थे तो डॉक्टर देखो यह कहते ना कि भाई कुछ उल्टा सीधा खाए हैं नहीं, कुछ दूषित खान पान हुई हुआ है, और या खान पान जो ने दूषित है कि नहीं है, लेकिन हमारे अगर हाथ गंदे हैं तो बहुत से भाई गंदगी हमारे पेट के अंदर तक पहुंचे थी। तो हम पंचन देखो हमेशा सिखावा जाते कि खाए से पहले हाथ अच्छी तरह से धोए लो, खाना बनावे से पहले अच्छी तरह से धोए लो। हाँ, जो आप खाना खाए रहे हो यह में ध्यान रखे का है कि भाई वही बासी बासी ना होए, वो कोनो तरह के पानी जो है वो दूषित ना होए। तो कहे के मतलब यह है कि हमका हर तरह के संक्रमण से बचे के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखे का है, और जैसा कि हम बतावा कि अपने हाथ की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देवे का है। और देखो आप सबका ध्यान भी होए कि पहले जो है जो ननुहार लड़का होते रहन, सौरी के नवजात शिशु होते रहन, तो देखो उनका कोऊ का छुए नहीं मिलत रहा है, उनका अलग कुठरी होत रही। वो अगर कोनो मनई जा रहा है सौर वाले कमरा में तो भाई नीके तान पहले हाथ गोड़ धोए के तब है जो ननुहार का छुअत रहा, गोदी लेत रहा, काहे से कि यह से होत कारा कि हमरे हाथ से संक्रमण उही के तक पहुंच जात रहा और वह के बीमार होए के संभावना हो जात रही। तो यह बहुत उपयोगी बात है कि हमका अगर स्वस्थ रहे का है तो अपने अंदर स्वस्थ आदत का भाई विकसित करे का है कि हम हमेशा अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखी, अपने हाथ की साफ सफाई पर ध्यान रखी। और बहुत लोग होते हैं ना कि बस ऐसे तनिक पानी छुटकाए लें तो ऐसे धोवे से काम नहीं चलत है। हाथ धोवे के एक बढ़िया पूरा तरीका है कि कैसे नाखून के धोवे का है, हाथ के आगे पीछे लाई तक पूरा हाथ धोए करके और बढ़िया से वेका सुखाए करके तब है जो उन्हें कोनो काम करेगा चाहिए हैं। तो भाई हमका उम्मीद है कि आप सब इन बातों पर अमल जरूर करियो। और यह कि चाहे चलो अब बढ़ चल रहे हैं हमारे श्रोता पंचन के जोन ईमेल हमारे पास आवत है, कैसे कि आज शनिवार के दिन हम अपने श्रोता पंचन के फरमाइशी मेल जो उन्हें पढ़ी थन और उनके पसंद के गवने सुनवाई थन। तो यह जो मेल हमारे पास आवा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से भेजे वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। और यह सब लोगों ने लिखी नहीं कि इनका घर आंगन कार्यक्रम बहुत नीक लागत है, साथ ही एक फरमाइश भेजी नहीं कि इनका नीरा मिश्रा और रेखा मिश्रा के स्वर्मा युगल लोकगीत सुने का है। तो भैया चलो हम आप सबके पसंद पर सुनवा रहे हैं या लोकगीत, स्वर है नीरा मिश्रा और रेखा मिश्रा के।

और श्रोता पंचों, यह के साथ अगला ईमेल हम ले रहे हैं। यह ईमेल हमारे पास आवा है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। भेजे वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, रिचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। और यह सब लोगन के पसंद पर हम सुनवा रहे हैं आप सबका या सोहर। तो आप सब आनंद उठाओ या सोहर क्यार।

और श्रोता पंचो, यह के साथ जो अगला ईमेल हमारे पास आवा है, यह ईमेल हमका मिला है ग्राम लखन गांव पोस्ट मलके गांव डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से। भेजे वाले हैं तुलसीराम गुप्ता, पंकज गुप्ता, शिवा देवता दीन मास्टर जी, बेनी नाई जी, आकांक्षा, अंशिका, शरद सिंह, और यह सब लोगों ने लिखी है कि कोई भी लोकगीत सुनवा दिया जाए। और यह के साथ एक अगला ईमेल हमारे पास और भी है जो उनकी आवा है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार, भाई वाले, रक्षा मौर्य, मिर्जा तुराब बेग, पप्पू पासी, और यह सब लोगों ने लिखी है कि कार्यक्रम इनका बहुत नीक लागत है और कोई भी लोकगीत की फरमाइश करी नहीं। तो चलो आप सबका हम सुनवाए रहे हैं एक और सुहाग गीत। तो आप सब आनंद उठाओ या सुहाग गीत के स्वराय पूजा तोमर बहनी के।

और श्रोता पंचों देखो भाई, यह सुहाग गीत के साथ हमू यह कामना करी थन कि हमरी सभी श्रोता सखियन जौन है वही अखंड सौभाग्यवती होए, उनके सुहाग की लंबी उम्र होए, और साथ ही साथ जैसे कि हम कहा कि हम सब जौन है पर्यावरण संरक्षण में अपन योगदान दी, तो यह आग्रह के साथ घड़ी के इशारा भी हमका समझे का है कि हमारे कार्यक्रम की बिरिया समाप्त होने वाली है। लेकिन चले से पहले हम आप सबका बता दें कि भाई देखो, हमारे बहुत से श्रोता जौन है नए श्रोता हमसे जुड़त हैं, तो आप भी अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हो। अगर आपका कोनो गीत विशेष सुनने का है तो भेजे के लिए आप हमारा ईमेल पता लिख लियो। हमारा ईमेल आईडी है gharanganairlko@gmail.com। और अगर आप पत्र लिखा चाहत हो तो पत्र लिखे के लिए हमारा पता नोट कर लियो। हमारा पता है घर आंगन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। और यह के साथ आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का देव अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

सिकंदर आज़म। फज भाई, अभी आपने मोहम्मद रफ़ी के गाए इस फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के थे और धुन बनाई थी हंसराज बहल ने। आइए अब कार्यक्रम का यह गीत जिगरी दोस्त फिल्म से, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: बहती है।
1: जिस देश में गंगा बहती है। फज भाइयों, ये गीत आपने सुना मुकेश के स्वर में। शब्द रचना शैलेंद्र की थी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आई फौज भाई, अब आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है देश प्रेमी।
2: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच

फौजभाई आक्रमण फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था किशोर कुमार ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आगे दीजिए, जय हिंद।

0: ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का

0: कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई, द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ২০২৫ में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों

0: भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री

0: यूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए हरे चारे के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर केशव कुमार के साथ की एक भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।

0: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां पूरे वर्ष आपको हरा चारा उत्पादन मिले, इसके लिए एक नई तकनीक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है। ये है क्या, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर केशव कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये हरा चारा की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है क्या?
1: जी किसान भाइयों बहनों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि जो हाइड्रोपोनिक तकनीक है इसमें बिना मिट्टी के पौधे तैयार कर लिए जाते हैं जो चारे के लिए उपयोग में आते हैं, और इस तकनीक में 7 से 10 दिन में हम लोग हरा चारा तैयार कर देते हैं, और बहुत कम समय में और बहुत कम जगह में हम लोग तैयार कर देते हैं, तो इस विधि को हम लोग हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं।
0: तो बिना मिट्टी की यानी पानी में?
1: जी हाँ।
0: कोई ढांचा रहता होगा?
1: जी हाँ, इसमें मुख्य रूप से ट्रे होता है, उस ट्रे में अंकुरित कर लेते हैं जो अन्न हम वो यूज़ करना चाह रहे हैं चारे के लिए, और अंकुरित करने के बाद उसकी एक लेयर बना देते हैं 2-3 इंच की, और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, तिरछा रख देते हैं ताकि पानी ना जमे, और उसको हर 4 घंटे पे छिड़काव करते रहते हैं, और एक बंद कमरे में रखते हैं जिसका जो तापक्रम है वो 15 से 35 डिग्री के बीच हो, और इस तरह से उसको हम लोग हवादार कमरा रखते हैं ताकि कोई भी उसमें फफूंद ना आए, और वो 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है।
0: तो इसकी उत्पादन प्रक्रिया में काफ़ी विशिष्टता है?
1: जी हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप लोग डिटेल जाने के पहले एक चीज़ अपने दिमाग में लगा लें, जो मैं बार बार उदाहरण देना चाहता हूँ वो ये है कि जब नवरात्रि में कलश स्थापित करते हैं तो हम लोग बालू में जौ डालते हैं, जौ को रात भर भिंगो देते हैं और उसके बाद पानी में डालते हैं, तो जब नवरात्रि ख़त्म होती है 8वें 9वें दिन तो वो जौ का जो विस्तार है ऊपर तक हो जाता है जो कलश को ढक लेता है
0: जी।
1: तो करीब करीब यही प्रक्रिया इसमें भी लागू होती
0: एक
1: है,
0: एक तरह का जवारा हो गया,
1: जवारा जैसा होता है, और उस जवारे को हम लोग पूरा यूज कर लेते हैं जिसमें लेकिन मिट्टी का कोई अंश नहीं होता है।
0: जी
1: जी हाँ।
0: तो इसकी उत्पादन प्रक्रिया में कौन कौन चीजें आवश्यक होंगी?
1: जी, इसमें पहली चीज है कि बीज का चयन, बीज में आपको कौन से फसल की बीज लेनी चाहिए, तो खासकर मक्का और जई इसमें ज़्यादा कारगर हैं। मक्का और जई के बीज को आप पहले बीज का अच्छा से चयन कर लें, और चयन करने के बाद फिर इसको ओवरनाइट 10 से 12 घंटा कम से कम इसको भिंगो के रखें,
0: रात भर
1: और एक जूट के बोरे में रखें ताकि इसमें अंकुर ठीक से निकल जाए, और अंधेरे स्थान पर रखें, अंधेरे स्थान पर अंकुरण अच्छा से हो जाता है, और अंकुरित करने के पहले बीज को अच्छी तरह से धो लें। कभी कभी कुछ कंपनीज जो होती हैं इसमें पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करती हैं, और जो हम पशुओं को खिलाने जा रहे हैं तो उचित होता है कि इसको कम से कम 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद अंकुरित करने के लिए छोड़ें, और ओवरनाइट या 12 घंटे करीब ये अंकुरित जब हो जाएगा तब इसको हम लोग अलग अलग एक ट्रे होता है उस ट्रे में इसको बिछा दिया जाता है,
0: और कई स्तर पे।
1: जी हाँ, उसके बाद इसको कई लेयर में हम लोग इसको स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद हर 2-4 घंटे पे पानी का छिड़काव करते हैं ताकि उसमें जो अंकुरण है वो तेज हो।
0: तो इसमें हवा का संचार भी जरूरी
1: है? जी हाँ बिल्कुल, हवा का संचार इसलिए ज़रूरी है कि जब हवा रुकी रहती है और टेम्परेचर ठीक रहता है तो उसमें फफूंद बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं, और जहाँ फफूंद आए तो वो पूरा फिर नष्ट कर डालते हैं।
0: ये जो हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चाहे मक्के का या जई का चारा तैयार करेंगे तो ये पूरे साल कर सकते हैं?
1: जी हाँ, पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी पहले बात हुई थी कि हम एक कमरे का चयन करें जिसका तापक्रम निर्धारित हो, तापक्रम हमारा एक रेंज होता है 15 से लेके 30-35 डिग्री के बीच ही हो, उससे अधिक और उससे कम ना हो, और दूसरा है वहाँ पानी की उपलब्धता रहे हमेशा, पानी जब ज़रूरत हो तो मिल जाया करे, और तीसरा है उसमें हवादार स्थिति हो।
0: तो बीच बीच में प्यास भी बुझानी होगी?
1: 60 से 80% की नमी आवश्यक होती है इसमें, और इसलिए हम लोग छिड़काव करते रहते हैं।
0: जिस ट्रे में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा तैयार कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसकी सफाई भी जरूरी होगी?
1: हाँ, ये इसमें प्रक्रिया पहले बता दें कि इसमें जब हरा चारा निकल जाता है तो उसको पूरे के पूरे चारे को एक कारपेट की तरह लेयर बन जाता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं और वो पशुओं को खिलाने के लिए देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जितने भी ट्रे हैं इनको अच्छी तरह से विधिवत धुलाई करते हैं, धुलाई करने के बाद इसको कड़ी धूप में रखा जाता है ताकि किसी तरह का कोई जीवाणु या फफूंद का कोई अंश उसमें ना रहे।
0: तो ये प्रक्रिया कितने दिन में पूरी हो जाएगी?
1: अगर मौसम ठीक

0: तो 8 दिन में तैयार हो जाता, कभी कभी इसमें 10 दिन भी लग जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार फफूंद लगने के कारण चारा को पशुओं को खिलाना सुरक्षित है?
0: जी नहीं, जब कभी फफूंद लग जाए तो पशुओं को चारा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक विष होता है जो अफ्लाटॉक्सिन कहलाता है, और वो किसी भी दुधारू पशु के या किसी भी पशु के लीवर के लिए बहुत ही घातक होता है, इसलिए उसको तुरंत फेंक देना उचित होगा।
1: डॉक्टर साहब, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से जो हरा चारा तैयार होगा वो पूरे साल हो सकता है?
0: जी हाँ,
1: तो
0: जी,
1: इसको पशुओं को खिलाने से क्या क्या फायदे हैं?
0: जी जी, तो दुधारू पशु में इसका दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और दूध की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, मात्रा करीब 10% तक बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई दुधारू पशु 9 लीटर दूध दे रहा है और 10-12 किलो अगर इसको हम खिला रहे हैं तो वो करीब 1 किलो दूध बढ़ा सकता है। इसके साथ ही साथ उसके दूध में वसा और SNF की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये 2 मुख्य फायदे इसके हैं। इसके साथ ही साथ उसके जो त्वचा है वो एक चमक उस पर आ जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होती है, तो उस तरह से उसके त्वचा में एक चमक आ जाती है। और इसके साथ ही साथ उसमें जो प्रजनन क्षमता है वो मेंटेन रहती है, समय पर पशु गर्मी में आते हैं और वो प्रेग्नेंट होते हैं, तो जो एक हीट लॉस होने पर नुकसान होता है उससे बचत हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, पोषण की बात करें तो इसमें प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम की मात्रा भी अधिक होगी?
0: जी हाँ, निश्चित रूप से इसमें जो सामान्य चारा खिलाते हैं उससे कम से कम 10-17% तक अधिक प्रोटीन होती है। और इसके साथ ही साथ विटामिन ए और सी इसकी प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है।
1: जिन पशुपालक भाइयों बहनों के पास खेत नहीं है,
0: जी हाँ,
1: और पशुधन है,
0: जी,
1: तो वो बिना खेत के भी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा पैदा कर सकते?
0: बिल्कुल, वो अपने जो इच्छा अनुसार जितना हरा चारा खिलाना चाहते हैं उसकी पूरी योजना बना लें, प्लानिंग कर लें, और बड़े छोटे स्थान पे इसको वो तैयार कर लें और प्रतिदिन खिलाएं पशुओं को, तो भी पशु भी स्वस्थ रहेंगे और पशुपालक भी खुश रहेगा।
1: तो कुछ सावधानियां भी होंगी डॉक्टर साहब इसमें?
0: जी हाँ, इसमें सावधानियों में सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे वो जो तैयार करते हैं हम लोग, तो इसको एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं हम लोग, या एक अपना तैयार कर ले नियम कि हम इतने घंटे में टाइम बाउंड पानी का छिड़काव करेंगे, इतनी देर सुखाएंगे उसको, इतने दिन में देंगे, धोएंगे, तो पूरा एक प्रक्रिया को आप लिख लें कहीं पर और उसी को आप फॉलो करें, तो आपके पास कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ जो फफूंद है, फफूंद से बचने के लिए जो आपको बताया गया था कि आप धूप में उसको अच्छी तरह से सारे ट्रे को सुखा दें अगले बैच के पहले।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भी हरा चारा के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपनाना चाहते हैं पशुपालक भाई बहन, तो क्या शुरुआत करने के पहले प्रशिक्षण लेना आवश्यक है?
0: जी हाँ, इसमें प्रशिक्षण लेके ही शुरुआत करना अच्छा रहेगा।
1: और ये प्रशिक्षण मिलेगा कहाँ?
0: भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो झांसी है वहाँ पर इसके विषय में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में जाके पशुपालक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है हरा चारा उत्पादन की,
0: जी,
1: इस की यूनिट स्थापित करने के लिए कोई सब्सिडी भी, अनुदान भी है क्या?
0: जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं, खासकर राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसमें फीड एंड फॉर्डर डेवलपमेंट के लिए जो चारा विकास के लिए एक फंड आता है इसमें इसको समाहित किया जाता है, और समय समय पर स्कीम्स आती रहती हैं। अपने पशुपालन विभाग या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से अगर किसान भाई बहन संपर्क में रहें तो जो अब स्कीम आती है तो उसका उनको जानकारी मिल जाएगी और अप्लाई कर देंगे, तो समय आने पर उनको यूनिट इस्टेब्लिश करने में आसानी होगी।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में
0: जी
1: अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे हरा चारा उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में।
0: जी,
1: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-15-23-45-89 94-15-23-45-89 94-15-23-45-89।
1: डॉक्टर केशव कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और हरा चारा उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है क्या, इसका लाभ पशुपालक भाई बहन कैसे लें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हरे चारे के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, इस विषय पर अभी डॉक्टर केशव कुमार के साथ भेंट कर रहे थे डॉक्टर

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जब सुने खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। छोटू शुक्ला पुत्र स्वर्गीय बावन शुक्ला निवासी कुर्सी रोड मिश्रपुर डिपो पुलिस चौकी गढ़ी थाना गुडम्बा लखनऊ से हमें सूचित करते हैं कि अजय शुक्ला जिसकी उम्र 12 वर्ष है और 4 फीट रंग गेहुआ चेहरा गोल है। अजय शुक्ला पिछले 1 अगस्त 2025 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी अजय शुक्ला के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। छोटू शुक्ला पुत्र श्री स्वर्गीय बावन शुक्ला निवासी कुर्सी रोड मिश्रपुर डिपो पुलिस चौकी गढ़ी थाना गुडम्बा लखनऊ। श्री रामवीर पुत्र करतार सिंह निवासी गोमती नगर जनपद लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवम जिसकी उम्र 16 वर्ष है कद 5 फीट 3 इंच रंग गोरा चेहरा लंबा है। शिवम पिछले 25 फरवरी 2026 से कहीं लापता हो गए हैं। जिस किसी को भी शिवम के बारे में कोई जानकारी हो या मिले कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री रामवीर पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गोमती नगर जनपद लखनऊ। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

जब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ पलों के बाद 2:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज हम आपको सुनवाएंगे अवधि लोक गीत। कलाकार होंगे अलका चतुर्वेदी। समय याद रखेगा आपसे कुछ ही पलों के बाद 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में। युवा तरंग में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे आज की बात। इसके अलावा स्वास्थ्य जागरूकता में युवाओं की भूमिका, डेंगू से बचाव की दिशा में कदम। इसके अलावा एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी आप सुन सकेंगे, सोशल मीडिया के दौर में जेंजी की भूमिका। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे मांडवी। नई उड़ान कार्यक्रम में 5:45 पर सामयिक चर्चा होगी शांति के साथ रहने का, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, कुछ विकास समाचार और कुछ समसामयिक विषय पर चर्चा 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। आज चर्चा का विषय होगा मिशन इंद्रधनुष और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। साथ ही एक वार्ता होगी ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा विषय पर। वार्ताकार होंगे श्री सुशील सीतापुरी। लोकायतन कार्यक्रम में 6:30 पर खेती किसानी में चर्चा का विषय होगा मृदा सौरीकरण। इसके अलावा जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य विषय पर डॉक्टर संदीप कुमार के साथ भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में। रात 9:30 पर राष्ट्रीय खेल पत्रिका चित्र भारती और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8:00 सुनिएगा समय और संवेदना के रचनाकार पद्म नारायण राय पर एक विशेष कार्यक्रम, हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसार और समय। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अवधि लोक गीत। कलाकार हैं अलका चतुर्वेदी। आइए पहले सुनते हैं एक सरिया गीत।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं अलका चतुर्वेदी के गाए हुए अवधि लोकगीत। इस सरिया के बाद अब सुनिए एक नकटा।

अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीत। कलाकार थी अलका चतुर्वेदी। आपके साथ ढोलक पर संगति की नरेंद्र सिंह, हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर आशीर्वाद कठेरिया। इसके साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

एंड वो चले हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया।

सोचना है कि हमें क्या करना है, किस बात की टेंशन ले रहे हैं।

सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीदरलैंड की अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि सभा में मौजूद गर्मजोशी और उत्साह ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे भारत में किसी उत्सव में भाग ले रहे हों। उन्होंने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान की निरंतर सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बनाकर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी दी है। वह गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को

को आस्था का जन सैलाब उमड़ आया। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में पवित्र स्नान कर भगवान कामदगिरि की पंचकोसी परिक्रमा की। धर्माचार्य विपिन विराट

अपने प्रोग्राम यू

चल ही रहा है, जहां मजेदार सा ट्रैक हमने एंजॉय कर लिया है। लेकिन हम सैटरडे का आज जो सेगमेंट है ना, उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। जी हाँ, आप जानते हैं कि सैटरडे को हम अपना बहुत ही स्पेशल सेगमेंट स्किल डेवलपमेंट लेकर आते हैं, और स्किल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, यानी कि कौशल जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब किसी व्यक्ति के पास हुनर होता है ना, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं है, बल्कि डट कर उसका सामना करते हैं, क्योंकि एक कुशल व्यक्ति हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है।

आपके व्यवहार, सोच और कार्य करने की क्षमता को भी इम्पोर्टेंस दे रही है। एंड यही रीजन है कि भाई, अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी में काम करना, तो आपको क्या करना है, बस अपने हुनर को निखारना, और देखिए कंपनीज आपको झट से हायर कर लेंगी। लेकिन लेकिन लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में काम नहीं करना है, बल्कि आप चाहते हैं कि आपका खुद का अपना बिजनेस हो, आप कुछ अपना काम करें, तो कोई टेंशन नहीं है। बस आपको अपनी जो प्रतिभा है ना, अपने जो स्किल्स हैं, उसे पहचानना है, उसे समझना है, उसे सही दिशा देना है, और फिर देखिए आपका जो करियर है ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यस, आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें या मेरे

करके एक छोटे से डीआईवाई को कैसे वो एक कंपनी एक बिजनेस में डील कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक हैंकी पे वो अगर कढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो अब उसका भी बिजनेस हो रहा है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, लोग ऐसा कर रहे हैं, कपड़ों पे कढ़ाई करके या फिर कस्टमाइज कढ़ाई करके वो उसे सेल आउट कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का, या अपने घर के किसी मेंबर्स का जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप गिफ्ट देना चाहते हैं, उनका नाम कढ़ाई करा कर भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो देखिए, छोटी सी चीज़ है कढ़ाई, कोई भी कर सकता है जिसे इंटरेस्ट है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे आता है, लेकिन जिसे इंटरेस्ट है, अगर वो थोड़ा बहुत भी कढ़ाई करता है, तो उसने कैसे एक छोटी सी चीज़ को, अपनी एक छोटी सी हॉबी को, उसने एक बिजनेस, एक करियर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी ही तमाम चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो है, फोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। और आपको पता है, ये सारी चीज़ें जो आप रील्स बनाते हैं ना, या आप वीडियोस बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, थंबनेल्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारी उसी के ही अंडर में आती हैं चीज़ें, जहाँ पर आपके छोटे छोटे जो स्किल्स हैं ना, वो आपको एक अच्छा करियर प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर में छोटी मोटी रिपेयरिंग का बड़ा शौक होता है, या उन्हें लगता है कि या फ्रिज खराब हो गई है, या आयरन खराब हो गया है, या फिर कोई सॉकेट खराब हो गया, तो उसे आप खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी रिपेयरिंग का जो स्टेप है ना, आपको यकीन नहीं होगा कि रिपेयरिंग का काम भी आज आपको एक प्रोफेशनल करियर में लेकर जा सकता है। जी हाँ, इसे सीख कर अगर आप थोड़ा सा अपने इसी स्किल को थोड़ा सा सीख ले, या इसमें डिप्लोमा कोर्स कर ले, सर्टिफिकेट कोर्स कर ले, तो आप एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम इन सेंस कि इसे आप एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का वर्क है, एसी, रेफ्रिजरेटर है, या होम अप्लाइंसेस का रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, और यहाँ तक कि जो स्किल्ड प्लम्बर्स है ना, उनकी भी काफ़ी डिमांड

को बढ़ने से आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता है। यस, तो आपको बस क्या करना है कि आपको समझना है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसे आप तराश सकते हैं, जिसे आप थोड़ा सा अगर सीख ले, और सीखने का कोई भी मीडियम हो सकता है। मैंने आपसे कहा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा भी कई ऑप्शन है, बताती हूँ आपसे कुछ।

4.7 FM Rainbow के साथ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के 3रे चरण के लिए स्वीडन के गोथनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में

0: मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गोस केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। सबसे पहले जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:10 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा तरंग। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में विमर्श के अंतर्गत विषय होगा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुशील सीतापुरी की वार्ता होगी ग्रामीण क्षेत्र में साइबर सुरक्षा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर संदीप कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम में डॉक्टर सीएम नौटियाल से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता का विषय होगा 21वीं सदी का ईंधन, परमाणु सपनों को पंख लगाएगा थोरियम। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा समय और संवेदना के रचनाकार पद्म नारायण राय, प्रस्तुति सुरेंद्र राजेश्वरी की होगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:10 पर गजलें सुनिएगा, कलाकार होंगी प्रतीक्षा मिश्रा। ये थी जानकारी इस सभा के कार्यक्रमों की और अब रूपरेखा कल के कार्यक्रमों की। कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय

रहेगा रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 9:30 मिनट पर उर्दू प्रोग्राम में डॉक्टर दरक्षा ताजवर से मकाला समाज फरमाइएगा। मौजू होगा हम गुलाम हिंदुस्तान में मरना भी गंवारा नहीं करेंगे। कलामी शायर में शायर होंगे जलाल सवानी। पेशकश आकाशवाणी गोरखपुर मरकज की होगी। प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में ढैंचा की उन्नत खेती के विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। आराधना कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:15 पर। सवेरे 6:43 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान। सदाबहार और स्वास्थ्यवर्धक जैतून, ये विषय होगा कल की स्वास्थ्य चर्चा का। समय रहेगा सवेरे 7:00। जानकारी देंगी नीना सोनकर। सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में विषय होगा नर हो न निराश करो मन को। सवेरे 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। नीरजा प्रकाश के गाए अवधि लोकगीत सुनिएगा सवेरे 9:50 पर और दिन में 2:45 पर। कार्यक्रम होगा लोक रंग और लोक माधुरी, आपकी पसंद के लोकगीत। ये कार्यक्रम सुनिएगा सवेरे 10:00। बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच दिन में 12:00। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम सुनिएगा आज इतवार है। इसमें विशाल तिवारी लिखित झलकी सुनिएगा हाय रे गर्मी, इसके प्रस्तुतकर्ता अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर रक्षावट कार्यक्रम में भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा वृद्धावस्था में वित्तीय प्रबंध। इस विषय में रविंद्र चतुर्वेदी से भेंट करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर दिवाकर वर्मा से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा गर्मी में पशुओं की आहार व्यवस्था और प्रबंधन। पत्र के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की वार्ता होगी अवधि लोकगीत। ये थी जानकारी हमारी इस सभा की और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस बेहतरीन कार्यक्रम युवा तरंग में। अभी समय है 5:10 और हर शाम इस समय हम लेकर आते हैं आपके लिए नई बातें और नए विषय। और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके दो रेडियो साथी, मैं आयुषी
1: और मैं मांडवी। वैसे आयुषी, मई का महीना चल रहा है और ऐसे महीने में लगता है कि सूरज ने हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी है। सुबह घर से निकलो तो धूप, दोपहर में तो धूप और शाम तक भी धूप जाती नहीं है।
0: हाँ यार,
1: गर्म हवा पीछा नहीं छोड़ती और अभी शाम 6 तक ये धूप जाएगी नहीं और गर्मी तो पूछो ही नहीं।
0: बिल्कुल मानवी, और सबसे मुश्किल तो ये ह्यूमिडिटी लगती है। ऐसा लगता है कि पंखा चल रहा है लेकिन हवा तो कहीं और ही जा रही है। और ये पंखे में भी गर्मी जाती नहीं है, उतनी ही गर्मी लगती है जितना बिना पंखा चलाए लगती है। और बस 2 घर से बाहर निकलो और वापस आकर लगता है कि पूरा दिन हम लोग घूम कर आ गए।
1: हाँ यार, और ऊपर से ट्रैफिक, गर्मी में वैसे ही हालत खराब होती है, फिर अगर रास्ते में जाम मिल जाए तो बस इंसान गाड़ी से उतरकर पैदल जाने की सोचने लगता है।
0: हाँ।
1: लेकिन चलो, हम लोग तो मेट्रो से आते जाते हैं तो कुछ देर के लिए धूप से बच जाते हैं।
0: हाँ मानवी, वो 10-15 के लिए जो एसी मिल जाता है मेट्रो में, उसका तो मजा ही आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो भी कहो मानवी, गर्मी और धूप चाहे जितनी हो, अगर इस मौसम में भी गर्मा गर्म चाय

0: मिल जाए तो एनर्जी आ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: मुझे तो यार हर मौसम में चाय पीना बहुत पसंद है।
1: हाँ यार देखो, चाय तो हमें भी बहुत पसंद है, मौसम चाहे जो भी हो। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी में चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब हम दोनों तो चाय लवर्स हैं, हमें तो चाय पीने से ही ताजगी मिलती है। लेकिन इस मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी है पानी पीना।
0: हाँ मानवी, ये तो तुमने सही कहा। हमारा शरीर 65% पानी से ही तो बना हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: हम सबको 6 से 8 लीटर रोज पानी तो पीना ही चाहिए, और इतनी ज्यादा गर्मी में तो इतना भी पानी कम पड़ता है। मैं तो यार देखो रोज जब कॉलेज जाती हूँ तो अपने साथ अपनी वाटर बॉटल तो लेकर ही जाती हूँ।
1: हाँ ये तो है, और हम भी पानी की बॉटल रखते हैं अपने साथ, धूप से बचने के लिए छाता और सनग्लासेस, और साथ में दुपट्टा भी रखते हैं।
0: हाँ, मेट्रो से उतरने के बाद तो मैं भी अपना छाता लगा ही लेती हूँ, और मैं
1: जरूरी
0: तो
1: है।
0: रोज सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, काफी प्रोटेक्शन हो
1: वेरी
0: जाता है
1: नाइस।
0: इससे। खुद को धूप से प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है इस गर्मी में, वरना तो तबीयत खराब हो जाती है और कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है।
1: हाँ यार, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, और खुद के लिए तो हम लोग इतना कर ही सकते हैं।
0: हाँ
1: लेकिन इन सबके बीच एक चीज अच्छी लगती है, शाम का थोड़ा सा वो हल्का सा मौसम, जब धूप बिल्कुल चली जाती है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: हवा थोड़ी चलने लगती है, तब लगता है कि चलो दिन किसी तरह निकल गया।
0: हाँ, और शायद यही छोटी छोटी बातें हमारे दिनों को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो आज की इस गर्म लेकिन प्यारी सी शाम में हम करेंगे ढेर सारी बातें जिंदगी की और रोजमर्रा के इन्हीं पलों की जिससे हम सब जुड़ते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम इस गीत के साथ।
2: ए,

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मांडवी और आप सुन रहे हैं युवा तरंग। आज का विषय है सोशल मीडिया के दौर में जिंजी की दुनिया। आज की जनरेशन की लाइफ काफी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है। दोस्ती से लेकर एंटरटेनमेंट तक, फैशन से लेकर करियर तक, हर चीज पर सोशल मीडिया का असर दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया जिंजी को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है या फिर प्रेशर और कंपैरिजन बढ़ा रहा है? इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे यूथ की सोच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। आपका नाम क्या है?
1: मैम, मेरा नाम शिवम तिवारी है।
0: शिवम, बेसिकली आप जेंजी हैं।
1: जी।
0: तो शिवम, आपके हिसाब से सोशल मीडिया का जेंजी के कॉन्फिडेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है या फिर नेगेटिव?
1: मैम देखिए, अगर इम्पैक्ट की बात करें जो कॉन्फिडेंस पर है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ज्यादातर। हाँ, कुछ चीज़ों को अगर हम देखें तो पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा निगेटिव है। क्योंकि जहाँ हमारा आत्मविश्वास इस तरह से गिरता है कि हम एक सर्वे के अनुसार देखें तो 8 सेकंड मात्र हमारा जो है एक्यूरेसी पॉइंट बचा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हम एक चीज़ को बहुत देर तक नहीं देख सकते। हम पर डे कुछ नया देखना चाहते हैं, हम पिछले चीज़ों में अपने आप को बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमारा आत्मसम्मान काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा घट,
0: हम एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। हमको नया नया कॉन्टेंट चाहिए कुछ सेकंड। क्या सोशल मीडिया की वजह से कंपेरिजन और इनसिक्योरिटी बढ़ती नजर आती है आप?
1: जी मैम, बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया की तरफ की बात करें तो कंपैरिजन एक दूसरे की तुलना में हम कर रहे हैं कि अगर किसी की फोटो, आप सिंपल सी एक बात देखिए, किसी की फोटो हमसे अच्छी लगी तो हमें अपनी फोटो अच्छी नहीं लगती है फिर कुछ देर बाद, क्योंकि हमारी फोटो में उनसे कम लाइक्स और व्यूज होते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, तो इससे कंपैरिजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इनसिक्योरिटी की बात करें तो मैम, आजकल आप देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के लोग जो है रील्स और किस किस तरह से फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं, और उसको हर तरह के लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन का वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है।
0: आपको क्या लगता है, जिन जी सोशल मीडिया के बिना सर्वाइव कर सकते
1: हैं? ये तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए, जो बच्चा सुबह उठता है तो उठने के पहले सबसे पहले वो ये देखता है कि कल जो है किसका मैच था और कौन सी टीम जीती है। और जो बच्चा सुबह उठते ही जिसकी नींद पहले जो है नींद लोरियों से खुलती थी, लेकिन आज नींद मोबाइल के अलार्म से खुल रही, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से खुल रही। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन हाँ, अगर उसे बहुत पहले से प्रिपेयर किया जाए तो हो सकता है, लेकिन ये 2% लोग ही कर सकते हैं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है।
0: अच्छा, लेकिन 2% लोगों में आप हैं या नहीं?
1: मैम, मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि हम भी अलार्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ये है कि मैं अगर कोशिश करूँ तो हो सकता हूँ, पर अभी फिलहाल नहीं।
0: अभी नहीं। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया कैरियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहा है या नहीं, और अगर बढ़ा रहा है तो किस तरीके से बढ़ा रहा है?
1: मैम देखिए, अगर सोशल मीडिया में कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक स्टडी CV.com की रिपोर्ट देखें तो पर डे लगभग 4 करोड़ प्लस लोग जो है इसमें अपने कैरियर के बारे में देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, रोजगार सर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, लेकिन मैम इन्फ्लुएंस होने के कारण और एक दूसरे के कारण बहुत ज़्यादा क्षति भी है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आज हमारे 10,000 फॉलोअर्स हैं और कल को किसी कारणवश उसमें से 4,000 कम हो गए, तो वो हमारा कैरियर, मतलब एक सिक्योर कैरियर पॉइंट हम इसे नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हमें कुछ मंच दे सकता है, लेकिन वैसे ही हमारे व्यक्तित्व को ये कम करता है। चीज़ें हैं, आप कैसे यूज करते हैं इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है।
0: अच्छा, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया हमारी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है या वीक बनाता है, या उसमें उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं या नेगेटिव?
1: मैं लगता हूँ कि सोशल मीडिया कुछ हद तक मजबूत करता है, लेकिन रिलेशनशिप को बहुत कमजोर करता है। क्योंकि रिलेशनशिप जहाँ आप देखिए तो 4 लोगों को अगर एक ग्रुप पे फोन दे के बैठा दीजिए तो वो चारों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, वो अपने फोन में घुसे रहते हैं और चारों एक दूसरे को वहीं पे बैठे बैठे रील शेयर कर देते हैं कि भाई ये वाली रील देख लेना। तो इससे मुझे लगता है मैम कि रिलेशनशिप को ये कमजोर कर रहा है, लेकिन दोस्ती को एक बूस्ट करने का एक जरिया हो सकता है।
0: आज का जो

0: यूथ है, आपके जैसा जेंजी है, वो इन्फ्लुएंसर से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ
1: में? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस की और इम्पैक्ट की अगर बात करें तो आप सिंपल सी एक बात देखें कि हम किसी एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और फिर वो जैसे बनते हैं हम उनके जैसे ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या है। तो मुझे लगता है मैम, इससे हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो कम हो रही है। ये कहते हैं लोग कि जो है हर इंसान थोड़ा सा अलग होता है, तो हम दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में अपने अंदर की चीज़ों को खो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मुझे लग रहा है।
0: अच्छा, आप एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं कि सोशल मीडिया?
1: सिंपल सी बात है मैम, हम सोशल मीडिया को नहीं, सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है।
0: अच्छा, अगर आपको एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहना पड़े तो आपका दिन कैसा होगा?
1: ऐसा दिन होगा, कुछ समय उस दिन झिझक पैदा हो सकती है कि बार बार फोन उठाने का मन करेगा, सोशल मीडिया यूज करने का या कुछ नया देखने का जो मन करता है, तो उससे हमें बोरिंग बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। तो एक दिन के लिए तो ये बहुत समस्या भरा है, क्योंकि एक दिन तो नहीं जो है झेला जाता।
0: पेरेंट्स और जिंजी के बीच सोशल मीडिया एक सेतु का काम कर रहा है या फिर मतलब उनका जो रिलेशनशिप है उसको डिस्ट्रक्ट?
1: मैम, पेरेंट्स और जिंजी की बात करें तो देखिए, जहाँ पेरेंट्स हमारे हैं वो 90s के ख्यालात वाले हैं कि बैठ के आपस में बातें करना, कहानियाँ सुनाना इत्यादि, लेकिन आज का जो है उसे ये है कि उसे अपने से ज़्यादा मतलब है, उसे दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं है, उसे अपने अंदर की चीज़ों को खोजने की कोशिश उतनी नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग थे, जो हमारे माता पिता है, वो कहते हैं कि आप सिंपल सी एक चीज़ देखेंगी तो उसमें एक छोटा सा वो मिलता है कि हमें आज कुछ भी नया मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम उस AI का यूज करते हैं।
0: अच्छा शिवम, एक एडवाइस जो आप जेंजी को देना चाहते हैं?
1: मैम, जेंजी के लिए यही एडवाइस है कि देखिए, जैसे कि अभी तक की बात का निष्कर्ष यही निकला है कि दोनों ही इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मैं यही एडवाइस देना होगा कि आप सोशल मीडिया यूज करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया को आप यूज करें, आपको सोशल मीडिया यूज ना करें। अपने मतलब की चीज़ें देखिए और कोशिश करिए कि जो है थोड़ी देर आप अपनों के बीच भी बिताएं और स्वयं को भी थोड़ा टाइम दे पाएं मोबाइल से हट के।
0: अच्छा लगा शिवम आपसे बात करके,
1: थैंक यू मैम।
0: तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये समझ आता है कि सोशल मीडिया जेंजी की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। इसके फायदे भी हैं, जैसे कि लर्निंग, क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज मिलना, लेकिन बैलेंस बनाना भी उतना ही जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया इम्पोर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ कनेक्शंस और मेंटल पीस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है।
2: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये स्थलीय रिकॉर्डिंग, जिसका विषय है सोशल मीडिया के दौर में जेंजी की दुनिया। इसी के साथ अब कार्यक्रम में वक्त है गीत का, आइए सुनते हैं।

0: आयुषी,
1: हाँ
0: एक बात सच सच बताना,
1: हाँ
0: क्या तुम्हें भी लगता है कि आजकल लोग अपनी हेल्थ को सबसे आखिरी प्रायोरिटी बना चुके हैं? मतलब पूरा दिन काम, पढ़ाई, फोन, सोशल मीडिया, सबके लिए समय है लेकिन खुद के लिए नहीं।
1: बिल्कुल लगता है। और फनी बात ये लगती है कि हम सब जानते भी हैं कि हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है, फिर भी सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। कभी खाना समय पर नहीं खाते हैं, कभी नींद पूरी नहीं होती है, और फिर कहते हैं कि पता नहीं इतनी थकान क्यों रहती
0: सही
1: है।
0: बात। और हमें लगता है कि हमारी जनरेशन हमेशा जल्दी में रहती है, जल्दी खाना, जल्दी निकलना, जल्दी काम खत्म करना, लेकिन इस जल्दी जल्दी में शरीर कब धीरे धीरे थकने लगता है पता ही नहीं चलता।
1: सही कहा। और फिर जब शरीर सिग्नल्स देने लगता है, जैसे लगातार सिर दर्द करना, कमजोरी होना, स्ट्रेस या लेजीनेस, तब जाकर हमें एहसास होता है कि शायद अब थोड़ा रुकना चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है?

0: honestly,
1: सबसे ज्यादा असर किस चीज का पड़ता है?
0: हमें लगता है कि हमारा रूटीन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीजों के लिए.
1: अच्छा.
0: रात में हम देर तक जागते हैं. अब जो रात में हम जागते हैं ये नॉर्मल भी हो गया. हाँ. दिक्कत ये नहीं रात में देर तक जागना, बट देर तक, हाँ, इसको नॉर्मलाइज कर देना. और कोई सीरीज देख रहा है तो कोई फोन चला रहा है और कोई बस यूं ही जाग रहा है, और फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाता है.
1: बिल्कुल. और फिर पूरा दिन बॉडी उसी लैक ऑफ स्लीप का असर दिखाती रहती है. हमारा मूड खराब रहता है, एनर्जी लो रहती है, और छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन भी होने लगती है.
0: बिल्कुल.
1: मुझे लगता है लोग स्लीप को बहुत लाइटली लेते हैं.
0: हाँ, जबकि सही नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना सही खाना. वैसे आयुषी, हाँ? तुम्हारा क्या रूटीन है? तुम सुबह जल्दी उठने वालों में से हो या देर में?
1: देखो, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन कभी कभी अलार्म बज जाता है और नींद नहीं खुलती है. लेकिन जब भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और थोड़ा शांत टाइम मिलता है ना, तो पूरा दिन थोड़ा बेटर लगता है. तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या?
0: हाँ, स्पेशली सुबह की हवा, उसमें एक अलग सी फ्रेशनेस होती है. कोई और मतलब मौसम, कोई भी मौसम हो, लेकिन जो सुबह की फ्रेशनेस है वो हमेशा बरकरार रहती है ना. और मुझे लगता है कि सुबह अगर थोड़ी देर फोन से दूर रहा जाए तो माइंड भी ज्यादा काम फील करता है, वरना आंखें खुलते ही नोटिफिकेशन शुरू हो जाती हैं.
1: हाँ, और शायद इसी वजह से अब लोग मेडिटेशन, योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि सबको अंदर से थोड़ी शांति चाहिए होती है. वैसे तुमने कभी रेगुलर योगा ट्राई किया है?
0: रेगुलर तो नहीं, लेकिन जब भी किया है ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा है. शुरुआत में लगता है कि बस स्ट्रेचिंग होती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसका असर हमारे दिमाग पर होता है और थोड़ा काम फील होता है, स्ट्रेस कम लगता है.
1: हाँ, और फिर हम बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं. इसीलिए मुझे लगता है कि हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ फिट दिखना नहीं है, मेंटली ठीक फील करना भी उतना ही जरूरी होता है.
0: और खाने की हैबिट्स भी देखो, हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक.
1: हाँ.
0: और बाहर का खाना स्पेशली, ये सब उन लोगों को इजी लगता है. वैसे हम लोगों को भी यही सब इजी लगता है ना, लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन फिर वही चीज़ें बाद में हमारी बॉडी को वीक करती हैं. वैसे तुम्हें क्या लगता है हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, स्ट्रिक्ट रूटीन या बैलेंस?
1: देखो, मुझे लगता है बैलेंस.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि अगर हम अचानक बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं तो कुछ दिनों बाद सब छोड़ देते हैं, लेकिन छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे समय पर खाना, थोड़ा वॉक कर लेना, थोड़ा मूवमेंट कर लेना, खुद को मेंटली रेस्ट देना, ये लंबे समय तक काम करता है.
0: बिल्कुल आयुषी. और आयुषी, आज हमें लगता है कि हमें और बातें करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त हो चला है अपने दोस्तों से विदा लेने का. अरे अरे अरे,
1: विदा नहीं लेने का.
0: अरे नहीं, अभी तो समय
1: है गीत सुनाने का. अभी तो काफी समय है.
0: सही कह रही हो तुम सही कह रही हो.
1: तो चलिए दोस्तों, अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत.

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आयुषी, एक चीज मैंने नोटिस की है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, वैसे वैसे लोग अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरलेस भी हो जाते हैं। मतलब बाहर की चीजें खाना, पानी कम पीना, और फिर बदलते मौसम में वो बीमार पड़ने लगते हैं। तो मैंने लगता है ऐसा
3: बिल्कुल लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार लोग शुरुआत में सिम्टम्स को सीरियसली ही नहीं लेते। थोड़ा बुखार आया, बॉडी पेन हुआ, तो बस दवा लेकर इग्नोर कर दिया। लेकिन आजकल मौसम के साथ जो बीमारियां बढ़ती हैं उनमें डेंगू बहुत कॉमन हो गया है।
2: हाँ, और अभी कुछ दिन पहले ही हम पढ़ रहे थे कि हर साल 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डेट नहीं है, बल्कि लोगों को याद दिलाने का तरीका है कि डेंगू जैसी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
3: एग्जैक्टली, क्योंकि लोग डेंगू के बारे में जानते तो हैं, लेकिन फिर भी कई छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, सबसे बड़ी लापरवाही लोग कहाँ करते हैं?
2: मुझे लगता है कि सफाई और पानी को लेकर। कई लोग सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ गंदगी में होते हैं, जबकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर तो साफ पानी में भी पनप जाते हैं। घर के बाहर खाना जो रखते हैं हम, उसके बाद जो पानी रखते हैं ना, उसमें भी मच्छर होते हैं। कूलर और गमले में भी मच्छर होते हैं। ये सब भी रीजंस बन सकते हैं डेंगू के। वैसे आयुषी, हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना अपने दोस्तों को एक और गीत सुनवाया जाए।
3: बिल्कुल, तो दोस्तों चलिए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम, हमारे आज के विषय पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे हम किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी
1: और मुझे यानी मांडवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

युवा तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कार्यक्रम में रेडियो के इस पार बैठा हूँ मैं, आपका दोस्त अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण खास दिन मनाए जा रहे हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और दूसरा है शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की अगर हम बात करें तो ये 16 मई को यानी कि आज के दिन ही मनाया जाता है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकाश सिर्फ उजाला नहीं बल्कि जीवन, विज्ञान और विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके साथ ही आज के दिन मनाया जाता है, जैसा कि हमने कहा, कि शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो भारत की यही पहचान रही है, यहाँ का भाईचारा, यहाँ के रहने वाले लोगों का आपस में प्रेम भारत की एक अनूठी मिसाल है। तो चलिए, इन दो महत्वपूर्ण बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आज की विशेष श्रृंखला विमर्श की ओर हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों, आज की इस विशेष श्रृंखला में बात होगी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की। इस संबंध में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए स्वयं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कौशल

0: आस मिशन के मिशन निदेशक IAS पुलकित खरेजी और उनसे बातचीत करेंगे कार्यक्रम अधिशासी डॉक्टर उमा शंकर सिंह जी। साथ ही कुछ प्रशिक्षणार्थियों से भी बातचीत कर इस मिशन के अनुभवों को जानने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए इस बातचीत को जरा ध्यान से सुने और मिशन से जुड़ने का प्रयास करें।
1: साथियों, आज हमारे बीच में हैं श्री पुलकित खरे जी, जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं और मिशन डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अपने पूरे राज्य के, जो कि दक्षता के संबंधित कार्य देखता है। कौशल विकास का जो भी कार्य उत्तर प्रदेश में होता है उसके आप प्रमुख हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खरे साहब हैं, तो सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करना चाहेंगे खरे साहब, और बड़ा सौभाग्य है कि आपने मिशन के उद्देश्यों को लेकर के और उसके जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं, नई जो आपने पहल की है उसके बारे में आम लोगों से खुद ही रूबरू होने के लिए आपने कहा कि हम बात करना चाहते हैं लोगों से, खासतौर से युवाओं से, तो इससे अच्छा कोई शायद इनिशिएटिव नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम आपका स्वागत भी करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे आज यहाँ मौका मिला कि आकाशवाणी के माध्यम से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुछ प्रदेश में कर रहा है वो मैं श्रोताओं से साझा कर सकूं।
1: खरे साहब, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल इंडिया है, उसके तहत बहुत सारे मिशन, बहुत सारे संस्थाएं, ढांचा का निर्माण किया गया है, बहुत सारे योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक मिशन मोड में आप इस कार्य को आगे संचालित कर रहे हैं विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से, आम लोगों के सहयोग से, उद्योगों के सहयोग से, और जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बहुत सारे पहले या बाद में भी बहुत खोले गए। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद एक मिशन मोड में कार्य चल रहा है पूरे प्रदेश में, ऐसी रिपोर्ट है। अब सवाल उठता है कि इसकी आवश्यकता मध्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्यों ज्यादा जरूरी है, इसको नए परिप्रेक्ष्य में देखा जाना क्यों जरूरी है, खासतौर से विकसित उत्तर प्रदेश की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है उसको किस तरीके से आपस में लिंक करके आगे बढ़ाने की बात इसमें है।
2: बेहद ही जरूरी है ये समझना कि जब हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन की बात करते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, तो चाहे इकोनॉमी का कोई भी क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर या खेती हो, निर्माण हो, व्यवसाय हो, उन सभी में दक्ष और कुशल मैन पावर की आवश्यकता है
1: जी।
2: यानी कोई भी क्षेत्र अगर कुशल मैन पावर नहीं है, कुशल मैन पावर का अभाव है, तो वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा
1: जी।
2: तो ये जरूरी है कि आगे आने वाली समय की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम आज से तैयारी करें और खासकर अपने युवाओं को उस हिसाब से ट्रेनिंग दें जो उनको आगे आने वाले समय में अच्छी नौकरियां दिला सके, स्वरोजगार दिला सके, अपनी आमदनी और अपनी आजीविका किस तरह से बेहतर करनी है इस पे काम कर सके। ये प्रदेश युवाओं का प्रदेश है।
1: बिल्कुल।
2: जब हम जनसंख्या की बात करते हैं और खासकर युवाओं की जनसंख्या की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश एक अनलिमिटेड पोटेंशियल का क्षेत्र है, यानी यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं और हर युवा में हुनर है।
1: बिल्कुल।
2: किसी में कारीगरी का हुनर होगा तो किसी में तकनीकी हुनर होगा, पर उस हुनर को किस प्रकार से तराशा जाए कि उस हुनर से आमदनी भी हो और अर्थव्यवस्था में भी योगदान हो, ये काम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन करता है।
1: खरे साहब, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक है कि सर्टिफिकेशन के माध्यम से एक स्किल माना जाना, और एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है और वो अपने आप को स्किल मानते हैं। उन लोगों को पड़ोस में रह करके जैसे भी है अनुभव के आधार पर, अपने प्राचीन परंपराओं के आधार पर, उन लोगों को दक्ष मान करके और उनको अपने बिजनेस में या अपने कार्य के लिए लगाते हैं, और एक है कि वैज्ञानिक आधार पर ट्रेंड लोगों को किया जाता है ताकि जो प्रमाणिक संस्थाएं हैं, प्रमाणिक रूप से जो कार्य होता है उसके अनुसार, ताकि उनका मानक तय किया जा सके कोई चीज। तो स्किल की अलग अलग परिभाषा में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, स्किल किसको माना जाए?
2: देखिए, समाज में दोनों लोगों का स्थान है। आपने जो दो अलग अलग तरह के व्यवस्थाएं बताई जिसमें पारंपरिक रूप से कुछ लोग वो कार्य जानते हैं और कर रहे हैं
1: जी,
2: बिल्कुल उनकी भी आवश्यकता है और उनको भी समाज में कार्य भी मिलता है, वो अपनी आजीविका भी उससे चलाते हैं, उनकी भी एक अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमें नई तकनीकें सीखने की बहुत जरूरत है
1: जी।
2: काम पारंपरिक हो सकता है पर उसको करने का तरीका नया हो सकता है।
1: बिल्कुल।
2: वही काम चाहे कारपेंटरी का हो, प्लम्बर का हो, या AI और ड्रोन का हो, आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उसकी आवश्यकता होती है
1: जी।
2: जब हम इंडस्ट्री से किसी को जोड़ते हैं तो एक क्वालिटी लेवल अलग हो जाती है, कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेशन आपको उस क्वालिटी की गारंटी देता है। तो जब कोई इंडस्ट्री पारंपरिक कार्यों के लिए या नए कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को खोजती है तो वो चाहती है कि सर्टिफिकेट योग्य व्यक्ति ही हमें मिले, और अगर वो सरकारी संस्थाओं से ट्रेंड और सर्टिफाइड है तो उसकी

0: अहमियत और बढ़ जाती है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वो प्रमाणिक हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अपना कार्य जानता है, सरकार के निर्धारित कोर्स उसने करा हुआ है, जितनी अवधि निर्धारित है कोर्स की वो उसने करी है, और अब वो हमारी कंपनी में बड़ी ही दक्षता से आउटपुट दे सकता है।
1: जी
0: तो बस यही फर्क है, जगह दोनों की है, लेकिन प्रमाणिक होने के बाद आपके कुछ अन्य द्वार भी खुल जाते हैं और आपकी जो हुनर है उसको एक बेहतर मुकाम मिलने की संभावनाएं बढ़
1: बढ़
0: जाती हैं।
1: जाती हैं। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि प्राचीन जमाने में जो भी अनुभव है, ज्यादातर अनुभव मशीन विहीन था, टेक्नोलॉजी नहीं थी।

0: कोई भी कार्य हो, शायद टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी बदल गई है। तो जो अनुभव पुराना है, वो अनुभव जब तक टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तो उसको कैसे मैच किया जाए, ये एक चैलेंज है कि नहीं हमारे सामने?
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है ये। और टेक्नोलॉजी बदली ही नहीं बल्कि निरंतर बदल रही है। आजकल जब हम एआई की बात करते हैं तो आज से 5 या 10 साल पहले जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी वो आज बिल्कुल बदल चुकी है एआई के आने की वजह से। और सिर्फ कंप्यूटर फील्ड ही नहीं, आप मीडिया का फील्ड ले लें, अकाउंटेंसी ले लें, आप कंस्ट्रक्शन का फील्ड ले लें, रिटेल और सेल्स ले लें, हर फील्ड में जो तरीका आज से 5 या 10 साल पहले था वो निरंतर बदल रहा है। ऐसे समय में अनुभव तो बेहद जरूरी है, अनुभव का कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन नई मशीनों की जानकारी होना, क्योंकि उन मशीनों से आउटपुट बेहतर हो रहा है। मशीन हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए आती हैं कि वो दक्षता से हमारा वही कार्य पूर्ण कर देती हैं। तो उन मशीनों की जानकारी होना और अपने को समय के साथ अपग्रेड करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि इससे कतराना नहीं चाहिए, इसको स्वागत करना चाहिए, इसका इसको अपनाना चाहिए। और आप किसी भी सेक्टर में हो, उसमें नई टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें देश विदेश में क्या नए बदलाव हो रहे हैं, अगर आप उससे परिचित रहेंगे, उसको अपनाएंगे और मिशन के ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से उस पे हाथ साफ करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर नौकरी और बेहतर आजीविका के लिए उपलब्ध रहेंगे।
0: अब सर, आपने ये बात बताई कि जो समय बदल रहा है, मशीनें नई आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तकनीक जब बदल गई है तो आपकी जो पुरानी दक्षता है उसको भी सुधारने की जरूरत है, और जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है और इस फील्ड में जिस फील्ड में जो जाना चाहते हैं वहां ट्रेनिंग की जरूरत है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इतना बड़ा मिशन पूरे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। बहुत सारी चीजें आपने की होंगी, तो हम चाहेंगे कि लोगों को ऐसी चीजें जब सामने आने की जरूरत है और उनके लिए चैलेंज है हमारे सामने, तो मिशन इस फील्ड में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और लोगों का सपोर्ट किस तरीके से प्राप्त किया जाए?
1: देखिए, आज के इस बदलते युग में हम सभी को ये समझना होगा कि डिग्री अपना स्थान रखती है, लेकिन डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी हुनर है। अगर आपके हाथ में वो हुनर है तो आप उस क्षेत्र में असीम संभावनाओं को पा सकते हैं। ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पूरी तरह से इस बात को लेके तत्पर है कि हमारे युवाओं को, 14 से 35 साल के जो युवा हैं, उनको उनके मनपसंद क्षेत्र में तराशा जा सके, तैयार करा जा सके, बेहतर तकनीकी और गैर तकनीकी जानकारी उनके पास हो, जिससे मार्केट में जिस तरह के जॉब हैं या फिर अगर वो अपना स्वरोजगार भी करना चाहते हैं तो उसके लिए वो पूर्ण रूप से तैयार रहें। हमारे मिशन के प्रत्येक जनपद में कार्यालय हैं। आप किसी भी जनपद में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का कार्यालय आपको विकास भवन या आईटीआई में मिल जाएगा, हर जिले में मिल जाएगा। लखनऊ में जो मिशन का मुख्यालय है वहाँ का कॉल सेंटर है, वहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, www.upsdm.gov.in। इस वेबसाइट पे तमाम तरह की जानकारी, 30 से अधिक सेक्टर, 900 से अधिक जॉब रोल्स, किस सेक्टर का कौन सा सेंटर आपके घर से कितना दूर है, ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे घर बैठे आपके स्मार्टफोन या इंटरनेट से मिल जाएगी। और उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि फलाना सेंटर पे आप इच्छुक हैं कि वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करें,
0: किस प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ होती है ये भी पता चल जाएगा,
1: वो भी पता चल जाएगा। हमारी सभी ट्रेनिंग पूर्णतः निःशुल्क है। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में आपका रुकना, खाना, किताबें वो भी निःशुल्क है।
0: बहुत बड़ी बात।
1: जो गैर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है जहाँ आप घर से आ जाके सीख सकते हैं, वहाँ भी आपके किताबों की व्यवस्था और पढ़ाई पूरी निःशुल्क है। हमारे जो ट्रेनर्स ये ट्रेनिंग चलाते हैं वो TOT सर्टिफाइड है, यानी उच्च श्रेणी के ट्रेनर्स हैं, और वो वही कोर्स चलाते हैं जो भारत सरकार ने अप्रूव करा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस कोर्स की अवधि और उस कोर्स का कंटेंट एक प्रमाणित जगह से आ रहा है, भारत सरकार से वो प्रमाणित है, और उस कोर्स करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको लेके आप प्रदेश में, राष्ट्रीय स्तर पे या वैश्विक स्तर पे भी किसी नौकरी के लिए किसी कंपनी में अपने रिज्यूमे में उसको लगा के,
0: सबसे बड़ी बात है कि उसकी वैल्यू है, आपके उस कागज की वैल्यू है
1: जी।
0: एक तो आप दक्ष हो गए, दूसरा आपके पास कागज भी हो गया, तो दोनों चीजें आपके पास हो गई। अब इतना बड़ा इनिशिएटिव जब हो गया है तो लोग जुड़े कैसे, उनको कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या करना होगा?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे श्रोता ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से वो अपने मनपसंद सेक्टर या कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हमारी वेबसाइट एक जरिया है जिसपे वो जाके न केवल जानकारी ले सकते हैं बल्कि फॉर्म भी ऑनलाइन निःशुल्क भर सकते हैं, और निःशुल्क फॉर्म भरने के बाद जो निकटतम ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आपको स्वयं कॉल करेगा कि आपने ये फॉर्म भरा था और हमारा कोर्स फलाना तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है, है। इसके अतिरिक्त हर जनपद में हमारे कौशल विकास मिशन का कार्यालय है जो विकास भवन में है, वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या

0: आईएएस मैनेजर, ये दो पदनाम के अधिकारी आपको मिलेंगे और ये आपको उस जनपद में, आपके ब्लॉक, आपके तहसील में चलने वाले सभी कोर्स की जानकारी देंगे। आपका एक निशुल्क फॉर्म भी भरवा लेंगे। बहुत ही बुनियादी दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, कुछ फोटोग्राफ, आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता है उसका प्रमाण पत्र आप दे दीजिए। तो ये कुछ बुनियादी दस्तावेजों के साथ आपका फॉर्म भर लिया जाता है और जैसे ही, क्योंकि साल भर हमारे कोर्स समय समय के अंतराल पे शुरू होते रहते हैं, जैसे ही आपका चुना हुआ कोर्स प्रारंभ होगा आपको सूचना मिल जाएगी और फिर आप उस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं।
1: ये तो क्लियर हो गया कि दक्षता बहुत जरूरी है नए जमाने में, नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी में, हमें पुरानी चीजों को साथ साथ कुछ एडवांस करने हैं और इसके लिए हर जिले में पूरी व्यवस्था की गई है। तो अभी तक की जो मिशन की स्थिति है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि हम किन किन क्षेत्रों में सफल हुए हैं और कहां पर हमें और कार्य करने की जरूरत है और किन लोगों का योगदान जरूरी है उसमें, किसकी सहभागिता जरूरी है।
0: देखिये, ये समझना जरूरी है कि मिशन का कार्य सिर्फ ट्रेनिंग दिलाना नहीं है। जरूरी है कि ट्रेनिंग इस तरह की हो जिसकी डिमांड इंडस्ट्रीज में हो, जो बच्चा हमारी ट्रेनिंग ले वो इसके बाद अपनी पहचान उद्योग जगत में बना सके या स्वयं कुछ अपना रोजगार खड़ा कर सके। तो इसलिए हमारी लगातार बातचीत जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उनसे रहती है, जितने भी सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज हैं उन उद्योगों से हमारा लगातार साझा करना रहता है कि हमारे कौन से बच्चे ट्रेन हुए हैं, जिससे वो उद्योग वाले सीधे हमसे संपर्क करके बच्चों को नौकरियों पे रख सके,
1: मार्गदर्शन भी देते हैं।
0: बिल्कुल, इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो पूरे प्रदेश में एक क्वालिटी की ट्रेनिंग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी हमारे संपर्क में रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि 30 से अधिक सेक्टर हैं, 900 से अधिक जॉब रोल हैं। इन सेक्टर्स में कुछ पारंपरिक सेक्टर हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कारपेंटरी, प्लंबिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, मेकअप, तो ये पारंपरिक सेक्टर हैं। और कुछ उभरते हुए सेक्टर हैं जैसे सोशल मीडिया, एक उभरता हुआ सेक्टर, ड्रोन, AI, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एक उभरता हुआ सेक्टर, वेयरहाउस आ रहे हैं तो वेयरहाउस ऑपरेटर, एक उभरता हुआ सेक्टर। तो इस तरह के नए सेक्टर के कोर्स भी सम्मिलित हैं इसमें, जिससे आपने अभी तक कोई भी डिग्री ली हो उसके ऊपर आप इजाफा इन कोर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हमारे सेंटर्स पे आपका स्वागत है। अगर आपने स्कूली शिक्षा नहीं ली है तो भी, अगर आप किसी कारण से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हैं तो भी, अगर आपने स्कूली शिक्षा पूर्ण करके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है उसके बाद भी आप कोई नया कोर्स सीखना चाहते हैं तब भी आपका हमारे सेंटर्स पे स्वागत।
1: सबसे बड़ी बात है निशुल्क है
0: ये पूर्णता निशुल्क है और ये पूर्णता प्रदेश सरकार की पहल पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से चलाया जा रहा है।
1: तो अभी तक की जो स्कीम है उसमें कुछ माइलस्टोन्स जरूर तय किए गए हैं, तो हम चाहेंगे कि लोगों के साथ जरूर साझा करें ताकि उससे पता चले कि हम किसी फील्ड में सफल हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है।
0: देखिए, अगर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माइलस्टोन्स की मैं बात करूं तो लगभग प्रति वर्ष हम 1.5 से 2 लाख बच्चों की ट्रेनिंग पूर्ण करते हैं
1: है।
0: और इसमें खुशी ये होती है बताते हुए कि इसमें 50% से अधिक महिलाएं होती हैं। ना केवल हमारे इनरोलमेंट में ट्रेनिंग पूर्ण करने में बल्कि प्लेसमेंट में भी, यानी नौकरियां पाने वालों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से बेहतर।
1: घर के बगल में ट्रेनिंग मिल रही है तो महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है बाहर कहीं।
0: बिल्कुल, हमारे जो रेजिडेंशियल सेंटर है उसमें हम विशेष इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बच्चियां यहां पे रुक के ट्रेनिंग कर रही हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पूर्ण रहे। उनकी सुरक्षा के लिए इन सेंटरों पे सीसीटीवी कैमरा रहते हैं, फीमेल वार्डन रहती हैं, संभवतः फीमेल टीचर्स भी रहते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर बच्ची अपने घर से दूर कहीं रुकी है तो पूर्णतः निश्चिंत होके वो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे सके।
1: आपके तरफ से हमें कह सकते हैं अपने श्रोताओं से कि एक बार जाके सेंटर को देख के तो आए कि देखिए किस तरीके से माहौल है।
0: बिल्कुल, मेरी पहली अपील सभी श्रोताओं से यही रहेगी कि आप पता करें कि आपके घर के निकटतम सेंटर कौन सा है, एक बार वहां जाएं, वहां देखें कौन से कोर्स हैं, कौन से टीचर हैं, कुछ बच्चे वहां पे आपको मिलेंगे, उनसे बात करें। कुछ बच्चे आज मेरे साथ भी आए हैं करने के लिए, तो वो भी आपसे अपना अनुभव साझा करेंगे। लेकिन जरूरी है कि एक कदम आप ये जरूर बढ़ाएं जिससे आप मिशन और सरकार द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों को बेहतर समझ पाए।
1: ये बच्चे अभी जब बाहर मिले सब खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए आए हैं कि हमें इतना उत्साह है कि पहली बार मुझे ऐसी ट्रेनिंग मिली है और जिसको मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी बताऊं लाखों लोगों को, और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुद वो आकाशवाणी सेंटर बताने आए हैं।
0: बहुत खुशी मिलती है जब इनके चमकते दमकते चेहरे मैं देखता हूँ, और अभी मेरी आपसे बात करने से पहले इनसे बात हो रही थी। इन सभी ने पिछले 2 या 3 वर्षों के अंदर ही उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सेंटर से ट्रेनिंग पूरी करी और आज ये सभी किसी अच्छी सम्मानजनक जगह पे नौकरी कर रहे हैं। इनके जो सपने थे आज से 3 या 4 वर्ष पहले आज वो फलीभूत होते हुए दिख रहे हैं और इनके परिवारजनों में जो

0: है उसको लेके, वो देखते ही बनती है। तो सरकार जब इतनी प्रयास कर रही है कि मिशन के माध्यम से इतने सेक्टरों में आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, तो क्यों ना आप वहां पर आएं, एक बार ट्रेनिंग करके देखें, और ट्रेनिंग करने के बाद कितने प्रकार के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे ये शायद आप भी कल्पना नहीं कर सकते।
1: कितनी बड़ी बात है कि एक सरकारी सिस्टम निशुल्क आपको आपके घर के पास ट्रेनिंग दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है, और मार्केट में जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब डिमांड के आधार पर, जो मांग है उसके आधार पर उनको लोग सप्लाई किया जा सके, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आम लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें?
0: मेरी सभी श्रोताओं से, और विशेषकर जो 14 से 35 वर्ष के हमारे युवा सीधे मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन लगातार आपके कौशल को निखारने का काम करने का प्रयास कर रहा है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हर जनपद में, तहसीलों में उपलब्ध हैं, ब्लॉक स्तर पे भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पूर्णतः निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक बार इन सेंटर्स के बारे में हमारी वेबसाइट के माध्यम से या हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी लें, अपने विकास भवन जाके इसके बारे में जानकारी लें, और आपकी जो मर्जी का क्षेत्र हो, आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो, वहाँ पे एक कोर्स जरूर करें। हमारे कोर्स 3 महीने से लेके 1 साल के हैं। इनको शॉर्ट कोर्स कहा जाता है, लेकिन इन शॉर्ट कोर्स का महत्व बहुत है। इन कोर्स को करने के बाद आपकी असेसमेंट या टेस्टिंग भारत सरकार की एजेंसी से वहीं सेंटर पे हो जाती है, और उसके बाद जो आपको सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपके लिए कई नौकरियों के या स्वरोजगार के द्वार खोलता है। आपको सीधे रोजगार मेलाओं में प्राथमिकता मिलती है। जो अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे भी हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स और हम लोग प्रयास करके आपको जोड़ते हैं। तो एक कदम जरूर बढ़ाइए इन सेंटर्स की ओर। कौशल आपके अंदर है, हुनर आपके अंदर है, बस उसे निखारने का मौका एक बार दीजिए इन ट्रेनिंग सेंटर्स को, जिससे इस कंपटीशन वाले युग में आप अपने कौशल को निखार के बेहतर रूप से आगे बढ़ सकें।
1: और ये हम कह सकते हैं कि विकसित भारत की कल्पना जब तक साकार नहीं होगी, जब तक दक्ष भारत नहीं बनेगा, और दक्ष भारत जब बनेगा, जब आप व्यक्तिगत रूप से खुद जाकर ट्रेनिंग लेंगे और किसी न किसी फील्ड में आपकी एक महारत हासिल करेंगे, और वो बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, वो सौभाग्य है कि हमारे आज साथ वो उपलब्ध हैं और उनके अनुभव हम जानते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने खुद क्या देखा है। तो धन्यवाद खरे साहब,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत सारे बच्चे वैसे तो हजारों लाखों की संख्या में है, लेकिन 3 लोग जो है खुद चल के स्टूडियो में आए हैं, तो आप उनसे बात करते हैं। बताइए अपना नाम पता और क्या क्या सीखा आपने।
2: मेरा नाम नंदनी है, मैं माधोगंज हरदोई से आई हूँ। मेरे पड़ोस में एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कौशल विकास के योजना के बारे में। वहाँ पर मैंने अपना कोर्स के लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है मैंने वहाँ अपना कोर्स किया। 6 मंथ्स का मेरा कोर्स था।
1: विषय क्या था?
2: फैशन डिजाइनिंग एंड ब्यूटी कोर्स। और मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर ब्यूटी कोर्स में था, तो मैंने आगे और प्रैक्टिस की। अब मैं अपना मेकअप स्टूडियो चला रही हूँ।
1: कितना पैसा खर्चा हुआ आपका पूरे ट्रेनिंग में? कोई फीस?
2: कोई फीस नहीं पड़ी है।
1: कुछ नहीं लगा? ना
2: कुछ नहीं लगा।
1: फायदा क्या हुआ?
2: फायदा ये हुआ कि मुझे जो है जिस चीज में इंटरेस्ट था, मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, और मेरा बहुत ज्यादा ही मन था। मतलब मैं 12th के बाद मैंने डायरेक्ट ब्यूटी कोर्स का ही ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद अब हम अपना स्टूडियो चला रहे हैं, और उसमें काफी लड़कियां भी आ रही है, अकेडमी चल रही है।
1: तो आपने ब्यूटी कोर्स जो आपने पहले तो आप कॉलेज या वहाँ पढ़ती थी, ब्यूटी कोर्स के बारे में पढ़ती थी, बाद में ट्रेनिंग लिया, तो ट्रेनिंग जो एक्चुअल में हुई उसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ा? एक जो कोर्स कर रहे थे और एक ट्रेनिंग जो लिया।
2: हाँ, ये सारी चीजें वहाँ पे सीखी है। उसके बाद मैंने जॉब भी की है प्रैक्टिस के लिए, कि वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर हम जो है अपना स्टूडियो चला रहे हैं।
1: सर ने आपको सर्टिफिकेट दिया था?
2: सर्टिफिकेट हाँ मुझे मिला।
1: दिखाया आपने सब जगह?
2: हाँ,
1: लोगों ने
2: मेरे स्टूडियो में भी लगा हुआ है।
1: अच्छा, तो लोगों ने देख के क्या कहा सर्टिफिकेट, और गए उसको देख करके सीखने के लिए? हाँ। लोग तो अभी दूसरे जो बच्चे आपके जो साथी हैं, बाकी लोग हैं इस फील्ड में, आजकल तो बड़ा जमाना इसका है, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों को डर लग रहा है कि ट्रेनिंग में कहीं पैसा ना लग जाए? अपना अनुभव बताइए।
2: पैसा कुछ नहीं लगता है ट्रेनिंग में, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। जिनको कुछ नहीं आता और जो नहीं पैसा अफोर्ड कर पा रहे हैं कि मैं नहीं कहीं बड़ी जगह पे एकेडमी में नहीं करना चाह रहे हैं, वो जो है कौशल विकास में जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं।
1: फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आई थी?
2: कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
1: क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया था?
2: आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह मांगी।
1: ये तो सभी के पास है?
2: सबके पास होती है, और इंटर और हाई स्कूल तो सभी करे हुए हैं।
1: तो अभी कहीं अप्लाई करने जाते हो तो सर्टिफिकेट देखते हैं लोग?
2: हाँ, काफी लेते हैं। उससे हमारा ये भी है कि लोन वगैरह भी ले सकते हैं। इसका
1: क्या बात है, देखिए आपके पास एक ऐसा कागज है और एक ऐसा ट्रेनिंग आपको मिल गई है कि आपको जहाँ जा रहे हैं वहीं लोग पूछ रहे हैं आप। और महिला सशक्तिकरण का जो बीड़ा स्किल इंडिया मिशन ने जो उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ कुछ और बच्चे भी आए हुए हैं। अनुष्का जी हमारे साथ हैं और जो गांव से आई हुई है, थोड़ा सा आप बताएं, अपने परिचय दीजिए पहले। तो
3: सर मेरा नाम अनुष्का शुक्ला है, मैं बेनियापुर के छोटे से गांव से हूँ।
1: बेनियापुर कौन सा जिला है?
3: जिला सीतापुर।
1: सीतापुर से है?
3: जी सर।
1: अच्छा जी।
3: सर मैंने 12th पास आउट के बाद मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि डिप्लोमा की, बट मुझे कहीं नहीं सही लगा। बट मेरी दीदी की फ्रेंड ने मुझे GDA के बारे में बताया, फिर वहाँ पे गए तो मुझे सही लगा। मैंने एडमिशन

0: किया वहाँ से।
1: जीडीए क्या है?
0: जीडीए सर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट।
1: अच्छा, वो क्या बात है।
0: उसके बाद में मैंने 6 मंथ वहाँ पर स्टडी की थ्योरिकल, उसके बाद 3 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग में मैंने काफी कुछ सीखा वहाँ पे।
1: ये कहाँ पर है ट्रेनिंग सेंटर, आपके घर से कितना दूर है?
0: सर 6 किलोमीटर पिसावा में,
1: पास में एकदम।
0: जी सर।
1: और वहाँ कोई समस्या नहीं आई?
0: नहीं सर, कोई समस्या नहीं थी।
1: अच्छा, फिर क्या सीखा वहाँ?
0: सर उसपे बेसिक काम सारा हमें सिखाया गया था। हॉस्पिटल का बेसिक काम सीखने के बाद लखनऊ आए थे, 1.5 साल से सर यहाँ पे कर रहे हैं।
1: हॉस्पिटल का जैसे क्या सीखा आपने, कुछ दो चार उदाहरण दीजिए।
0: पेशेंट केयर करना, वीगो लगाना, इंजेक्शन लगाना।
1: किसी अस्पताल में गए थे फिर?
0: हाँ जी सर।
1: बहुत बड़ी बात है ये तो, इस ये तो मुझे भी नहीं मालूम था इस मिशन में ये होता है। आप किसी, मतलब ये जो आपका ट्रेनिंग सेंटर था वो किसी अस्पताल से भी अटैच है जो अस्पताल में जाकर ट्रेनिंग दिलवा रहा है?
0: गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही भेजा गया।
1: बहुत बड़ी बात, बताइए जरा कैसे क्या किया?
0: वहाँ पे बेसिक काम मुझे सारा सिखाया गया था। तो उसके बाद में सर लखनऊ जब आए हैं, यहाँ 1 साल से इसे ज्यादा हो गया है यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इसे करने से मेरी लाइफ को एक नई दिशा मिली है। अब ओटी टेक्नीशियन कर रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं जिसके मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ।
1: देखिए, एक बात यहाँ कहना चाहते हैं, जो ये अनुष्का जो बोल रही है वो ये कह रही है कि हम ट्रेनिंग सेंटर में गए, इसके लिए लोग नर्सिंग के लिए एडमिशन लेते हैं या किसी ओटी में किसी चीज के लिए डिप्लोमा करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये अपने घर के पड़ोस में गई स्किल, जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर ये गई अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर, और उन्होंने किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के आपको ट्रेनिंग दिलवाई फ्री में, जहां की आपको कुछ मशीन छूने को नहीं मिलता, वहां आपको ट्रेनिंग मिली। और आज आप क्या कर रही हैं सीख करके?
0: सर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं।
1: बताइए, अब मैं लोगों से क्या कहूँ, जो ये मिशन है, जो ये कार्यक्रम है, इसमें आप लोग क्यों दूर हैं, ये समझ से बाहर है, या तो अज्ञानता है, या तो आपको केवल बीए एमए और कंपटीशन की तैयारी करनी है जहाँ पर 100 पोस्ट है और 10 लाख बच्चे बैठते हैं, या आप इंटरमीडिएट करके भी जो आप नौकरी कर सकते हैं। देखिए, पूरा परिवार चला रही है छोटी सी लड़की है, तो इसका श्रेय किसको देंगी सबसे बड़ा?
0: जीडीए, क्योंकि अगर मैं जीडीए ना करती तो ये कुछ भी नहीं होता।
1: और जीडीए किसके कारण किया?
0: अंडर यूपीएसडी के थ्रू।
1: क्या बात है, जो हमारा जो ये उत्तर प्रदेश मिशन है, जो विकास मिशन है, जो कार्य कर रहा है, उसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। और इससे बड़ी चीज आज के बेरोजगार बच्चों के लिए कुछ नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही आप और भी सब्जेक्ट में आप ट्रेनिंग कर सकती हैं, इसमें आपको बताया गया होगा।
0: हाँ जी,
1: कि एक ही ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, आप और भी ट्रेनिंग कर सकती हैं।
0: जी सर, कर सकते हैं। इसके हमेशा आभारी रहेंगे, जिससे मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: और देखिए, वो मिशन जो डायरेक्टर साहब है उसके, वो आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोग जो है उनके मकसद को कामयाब बना रहे हैं देश में। भारत सरकार की जो मंशा है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उसको सफल होने में आप भी योगदान दे रहे आ गया है। बहुत बड़ी बात है, दोनों मिलके आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारे साथ और युवा हैं जिन्होंने इसी मिशन के तहत ट्रेनिंग ली है, खुद ही बताने आए हैं कि हमने क्या सीखा है और लोगों को कैसे क्या करने। नाम बताएं अपना।
2: सर मेरा नाम निर्मल कुमार यादव है।
1: निर्मल कुमार जी, कौन सा गाँव है?
2: सर मैं काकोरी कुसमोरा गाँव का रहने वाला।
1: जिला कौन सा है?
2: लखनऊ।
1: क्या किया आपने?
2: सर मैं पढ़ाई कर रहा था, हाई स्कूल कर रहा था।
1: अच्छा।
2: उसके बाद मैं एक सिलाई की दुकान पे जाता था गांव में, तो वहां तो कुछ समय दिया मैंने, 5-6 महीने। उसके बाद मुझे मेरे मित्र ने बताया, वो यहाँ कोचिंग करता था कपूरतला पे, तो रेमन कंसल्टिंग के बारे में मुझे बताया अलीगंज में। तो मैं यहाँ पे अलीगंज आया तो यहाँ पे मैंने देखा था कि बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं। तो मैं हाई स्कूल करने के बाद मैं यहाँ लखनऊ में रेंट पे रहने के लगा, तो फिर मैं सीखने जाता था रोज यहाँ किराए से अपने।
1: कितने घर से दूर है आपके?
2: सर थोड़ी दूरी पे, 20 रुपये किराया लगता था रोज का।
1: ठीक है।
2: और तो वहाँ पे गया मैं सर सिखाने के लिए। धीरे धीरे मैं 6 महीने कोर्स मिला था रेमन सेंटर का।
1: क्या सीखा?
2: तो मैंने वहाँ पे कोट पैंट वगैरह सीखा, शर्ट सीखी, सदरी सीखी, जॉकेट सिलना सीखा, मैंने सब सीखा। सीखने के बाद सर्टिफिकेट भी मिला।
1: ये बताइए मुझे, आप पहले भी कह रहे थे आप सीखने जाते थे।
2: जी जी।
1: और वही चीज आप दूसरी वहाँ सीखने गए, दोनों के सीखने में क्या अंतर हुआ?
2: अंतर ये हुआ सर, जहाँ मैं सीखता था तो वहाँ पे मैं गांव के हिसाब से सीख रहा था, जैसे गांव में स्टिचिंग होती है, और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि बड़े लेवल से मुझे सिखाया जाएगा।
1: मशीनें कुछ और थी?
2: जी, मशीनें यहाँ पे थे, मेरे पास कुछ नहीं थी वहाँ, दो ही मशीन
1: थी। तो पुरानी वाली मशीन थी, पैसे चलने वाली।
2: जी, यहाँ पे सब बड़ी मशीन थी, तो मुझे देख के मुझे अच्छा लगा और लगा कि मैं यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ।
1: क्या सीखा अलग से? क्या सीखा
2: वहाँ से? सीखा बारीकियां मैंने सीखी, सूत सूत का अंतर क्या होता है कपड़ों में,
1: महीन कटिंग,
2: महीन बातें मैंने सीखी वहाँ यहाँ पे। उस सीखने के बाद मुझे नौकरी करने का भी कुछ ऑफर मिले यहाँ पे मुझे जाने के लिए बाहर, मगर मैं गया नहीं क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं खुद लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ।
1: आपने लिखा नहीं कि सर्टिफाइड टेलर?
2: सर ये मैं तो नहीं लिखा हूँ। टेलर?
1: अच्छा,
2: ये नहीं लिखा है। वहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा, मुझे बुलाया भी जा रहा है बाहर, तो आज मैं 10 से 12 मशीन लगा रखे अपने।
1: अच्छा, देखिए ये रोजगार ढूंढ रहे थे और वहाँ पर उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग ले ली, और अब ये 15 लोगों को रोजगार वो खुद दे रहे हैं। हम एक आदमी नहीं दे पा रहे हैं, ये 15 लोगों को इंटरमीडिएट करने के बाद 15 लोगों को रोजगार ये खुद दे रहे हैं। तो ये है मिशन का काम, कौशल विकास मिशन है, इसका ये उद्देश्य देखिए कि आप खुद तो रोजगार करें ही और लोगों को रोजगार दें। चलिए बहुत अच्छी बात है, और भविष्य में कोई और चीज सीखना होगा तो आप आगे भी सीखेंगे।
2: यस सर,
1: क्योंकि ट्रेनिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, मरते दम तक सीखना।

0: कुछ ना कुछ। बहुत बड़ी बात है। और हम उन तीन लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि इनको इतनी प्रसन्नता है कि घर बैठे बगैर पैसा खर्च किए इनके पास एक सरकारी प्रमाण पत्र आया, और प्रमाण पत्र से ज्यादा इनके पास अनुभव आया, और स्थिति यह है कि दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम चाहेंगे ऐसे आप आगे बढ़ते रहें और इस मिशन की सफलता में आम लोगों का भी सहयोग ऐसे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी खास बातचीत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पर, जिसमें हमने जाना कि कैसे कौशल प्रशिक्षण युवाओं के सपनों को नई दिशा दे रहा है और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। मिशन निदेशक IAS पुलकित खरे जी, कार्यक्रम अधिशासी डॉक्टर उमा शंकर सिंह जी, और प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने अनुभव और महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबके साथ साझा की। तो दोस्तों, याद रखिए, कौशल ही सफलता की असली पहचान है और सही प्रशिक्षण ही आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव बनाता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, प्रयास करें या ठान लें, तो फिर कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते हैं, है ना। तो जो आज की ये बातचीत थी कौशल विकास मिशन को लेकर के, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने की, समझने की जो ज़रूरत थी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी ज़रूरत, और आपने भी आज एक दृढ़ निश्चय कर ही लिया होगा कि आपको भी अपने कौशल के बल पर अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इस बातचीत को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात अपनी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो खतों के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है नई उड़ान कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 2260001। तो बस आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिमबङ्गसर्वकारेण 11,000+ प्रदीयमानानां जातिप्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुम् आज्ञापितम्। CBSE इत्यनेन 12 कक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्याङ्कनप्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपान्त्यचक्रीयक्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुषयुगलं अन्तिमस्पर्धायां प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः, यत् सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नेदरलैंड्स देशस्य हेगनगरे स्वस्य 5 देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं COVID-19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमित

0: मध्याङ्कनार्थं याचनां कर्तुं शक्नुवन्ति। CBSE इत्यनेन सूचितं यत् छात्राः अस्य मासस्य 19 दिनाङ्कात् 20 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिविषयाय 700 रूप्यकाणां शुल्केन मूल्याङ्कितानां उत्तरपुस्तिकानां प्रतिबिम्बितप्रतिलिपिं प्राप्तुम् अन्तर्जालीयमाध्यमेन आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिदिनद्वयोः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु उपहिमालयीय पश्चिमबंगे सिक्किमराज्ये असमे मेघालये तथा दक्षिणकर्नाटके अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन विभागानुसारेण श्वः अरुणाचलप्रदेश केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी तथा करैक्कल चेत्येत्येषु क्षेत्रेषु अपि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यति। विभागेन उक्तं यत् बिहारे राज्ये आंध्रप्रदेशे छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी राजस्थाने झारखंडे लक्षद्वीपे मध्यमहाराष्ट्रे मराठवाड़ायां जम्मू कश्मीर प्रदेशे लद्दाखे तथा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु च अद्य गर्जनेन तीव्रवातैश्च सह झंझावातस्य संभावना विद्यते। विभागेन झारखंडे मध्यप्रदेशे तथा राजस्थानस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अपि घोषणा कृता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य गोह सेफेई तथा नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं 7-0 पराजितम्। इति वार्ताः।
1: मीडिया वेब पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद। देवेश भैया।
1: हाँ आकांक्षा बनी।
0: गर्मी क्या मौसम चल रहा है, उतने समय दोपहर ही में बड़ी तेज धूप होती है। ये मौसम में हम सबका अपन बहुत ध्यान रखे के जरूरत होती है। धूप में बाहर निकलते पहले खाना खा के यहाँ पानी पी के यहाँ चलक चाहिए। और जो इतने समय मौसम में यहाँ जो मिल रहे हैं खीरा ककड़ी तरबूज क्या प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करक चाहिए और धूप में जितना कम हो सके निकरक चाहिए।
1: बिल्कुल आकांक्षा बहनी, जो ना आप कहो कि धूप माँ घर से कम निकले के चाहिए। हम तो यूँ कही थे कि अगर जरूरी ना हुए, बहुत आवश्यक ना हुए तो घरे से ना निकलो, घरे के भीतर रहो। और जौन आप ही बतायो कि ककड़ी खाओ तरबूज खाओ, तो ये जौन पानीदार फल हैं मौसमी, हाँ इनका खाए से बस इतना ध्यान रखे के है कि अपने शरीर में पानी की कमी ना हो पावे। यह लिए बढ़िया से घर से खाए के पानी पी के तब निकलो, ताकि आपका गर्मी जौन है वो छू ना सके। गर्मी अगर छूए तो वही के कौनो विपरीत प्रभाव आपके शरीर पे ना पड़े, आपके स्वास्थ्य खराब ना हुए।
0: बिल्कुल भैया, जब आप स्वास्थ्य के बात किए ना तो हम लोग स्वस्थ रहे और जो है अपन अपन जो है काम करत रहे, यही के खातिर जो अपन सरकार है वह समय समय पर कई योजना बनावा करती हैं। यही की श्रृंखला में यहाँ अपन सरकार या की योजना बनायन है, इका नाम है मिशन इंद्रधनुष। इका जो है 2014 में यहाँ शुरू की गवारा है। इका लक्ष्य है कि जो टीकाकरण है वो जो है टीकाकरण के व्यवस्था सब तक पहुंचे और सब क्या टीकाकरण हुए ताकि सब लोग स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल आकांक्षा महिनी, इंद्रधनुष जौन आप कहो, मिशन इंद्रधनुष यही अभियान के नाम रहा। और यूँ नाम यह लिए पड़ा रहा कि यह माँ पहले सात बीमारी, जैसे इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं वही तरीके से सात बीमारी का, बल्कि यूँ कहो कि जानलेवा बीमारी के खिलाफ टीका के सुविधा रहा है। लेकिन अब जौन है यूँ सुने में आ रहा है, सब बताए रहे हैं कि इमा जौन है कुछ टीका और जोड़े गए हैं तो सात से संख्या अब 12 हो गई है। तो यू जौन मिशन इंद्र

0: धनुष है बहिनी, ये बहुत अच्छी योजना कह लो या बहुत अच्छा अभियान कह लो, सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा कह लो, जौन की दीन जा रही है जनमानस का, जौन 2 साल तक के बच्चा हैं, लड़का बच्चन का 2 साल तक के जौन हैं, उनका टीकाकरण खातिर यू जौन है सुविधा दी जा रही है कि उनका जौन जानलेवा बीमारी हैं वही से वो ग्रसित ना हों, उनसे उनका बचाव हो सके। साथ ही साथ जौन गर्भवती महिला हैं उन्हों का यही से सुरक्षा प्रदान करे खातिर यू अभियान चलावा जा रहा है।
1: और भैया इसके अंतर्गत जोनी जो 12 जो है बीमारी के टीकाकरण करवावे क्या प्रावधान रखा गवा है, वीके अंतर्गत जो बीमारी हैं बीमा है यक्ष्मा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, धनुस्तंभ, खसरा, रूबेला, हीमोफीलिया और रोटा वायरस, दस्त, निमोनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये कई प्रकार के जानलेवा बीमारी के जो है टीकाकरण करावे क्या प्रावधान है माँ?
0: बिल्कुल सही बात है। और गर्भवती महिलाओं का टिटनेस का टीका, ORS के जौन वो घोल वाला आवत है पैकेट पाउडर, और जिंक की गोली ओली जौन होती हैं, आयरन की गोली होती हैं, ये सब यही माँ दीन जात है ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे और उनके शरीर में जिंक की कमी ना होए या आयरन कमी ना होए, तो ये सब सुविधा सरकार दे रही है। यही के बारे में पूरी जानकारी रखो। देखो कौनों भी सुविधा या योजना सरकार चलाए रही है तो बहनी वही के बारे में हम सबका अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ताकि हम वही के अच्छे से लाभ उठाए सकें।
1: बिल्कुल भैया। और इंद्रधनुष के अंतर्गत कईयों पहल कई यहाँ शामिल के अनगवाह है, वही में एक पहल है जिसका नाम है कैचअप मोड, यानी यही के अंतर्गत जो लोग टीकाकरण करे तो यहाँ छूट गए हमें तो उनका पहचाना जाता है और उनका जो है संपूर्ण खुराक जो है उपलब्ध कराई जाती है। और ये दूसर जो है पहल है यू विन पोर्टल, यही के अंतर्गत जो बीमारी से ग्रसित लोग रहते हैं उनका जो है पहचाना जाता है, पंजीकरण किए जाते हैं, उनका ट्रैकिंग किए जाता है, यानी उनके पीछे पीछे जो है ट्रैकिंग का मतलब होता है कि उनके पीछे जावा जाए, पहचाना जाए, यानी ऐसे लोग उनके यहाँ जो है
0: चिन्हित किए जाते
1: हैं कि जो कि वे बीमारी से यहाँ ग्रसित हैं।
0: बिल्कुल तो, बहनी, और यही के उद्देश्य यही है कि कोई भी छूटा ना रहे, छूट ना पावे, यही सुविधा से जौन सरकार दे रही है। कहे का मतलब है कि सबके स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह के पूरा प्रयास सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य के लाभ सबे का मिले।
1: और भैया ये मैं जो गरीब वर्ग है खासकर जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है वी अपन जो है टीकाकरण कईयों बार आर्थिक अभाव में यहाँ नहीं करवा पावत हैं तो उन पर जो है खासकर जो है फोकस कीन गवाह है माँ?
0: और देखो बहनी बीमारी के तो कोनो भरोसा होत नहीं है। अब जैसे अभी बात करते रहो टीकाकरण और तमाम तरीके के बुखार के बाद भी हम क्यों तो एक जौन जानलेवा बुखार और होते है वो होते है डेंगू।
1: हाँ भैया डेंगू,
0: तो डेंगू जब हो जाता है तो वहाँ वो प्लेटलेट्स डाउन हुए लागत हैं, तमाम दिक्कत हो जाते है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि जान के खतरा बनी आवत है। तो और आज जो है वो राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी है।
1: हाँ भैया ये कहीं आज 16 मई के यहाँ हर साल मनावा जाता है
0: जागरूकता खातिर, यूं मनावा जाता है कि जागरूक रहो, डेंगू से बचाव खातिर प्रयास करो।
1: यही का जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है मनावा जाती का खास कर लोग जो है ये बीमारी तो यहाँ बचे रहें और लोगन कहीं जो है डेंगू बीमारी का जो कारण है यानी मच्छर वो ना पनपे पावे, यही की खातिर लोगन के यहाँ जागरूक किन जात है।
0: तो बहनी यू जान लो कि जैसे आप गर्मी हो रही है तो गर्मी में कूलर लगावत हो, हाँ, या आप गमला में पानी देत हो, या चिड़िया खातिर आप पानी रखत हो बर्तनन में, तो यहाँ यू बात ध्यान में रखे है कि आपके जौन कूलर है वही में पानी बदलत रहो, पानी जमा ना रहे। जौन आप चिड़िया या पशुअन खातिर पानी के व्यवस्था खातिर जौन पात्र रख रहे हो वही के पानी बदलत रहो। बहुत जने ऐसे होते हैं कि घरे में खाली टायर वायर पड़ा रहते हैं, उनके गाड़ी खराब हुई गई टायर रखें तो वही का सजाए के रंग वंग के रख लेते हैं सौखिया, तो होत का है कभो कभो वहीं पानी रह जाते हैं, वहूँ में मच्छर जौन होते हैं डेंगू वाला वो अंडा दे देते फिर मच्छर पनपत हैं तो वो काटत हैं और डेंगू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो कहा है कि यो है कि कहूँ पानी के भराव ना हो पावे, जल भराव ना हो पावे,
1: ठहराव ना हो पावे। और भैया अब तो जो है अपने गांवन में यहाँ सबके हाथन में मोबाइल है, लैपटॉप है, और ये मोबाइल लैपटॉप और टेक्नोलॉजी तो यहाँ सबसे

0: काफी ज्यादा जागरूकता आई है, और जागरूकता के साथ साथ भैया एक
1: भय आवा है, आई गई है
0: हाँ। और चिंता आई गई है, वह चिंता आई गई है कि कईयों लोग जो हैं कईयों अपराधन के शिकार हो जाते हैं,
1: धोखाधड़ी हो जाते। हम का बताए, हमारे एक जने जाने वाले हैं, उनके तो बैंक खाता से रुपया पतन कैसे कट गवा, तो बड़ा चिंतित रहा है कि ई का कहीं देखो ये छोटकवा जौन फोन रहा उस पे यू सब समस्या नहीं होत रही, लेकिन जब ये बड़कवा फोन लेन तो जान लो कि बड़ी मुसीबत पाल ले हैं और पता नहीं कैसे हमारे खाता से रुपया कटिगा। तो यही के खातिर भैया जानकारी हो बहुत जरूरी होते
0: है। तो भैया जानकारी और जागरूकता तब हुई जब हम लोगन के यहाँ को जागरूक करे, तो हम लोगन के यहाँ जो है यही विषय पर जो है जागरूक करे खातिर आज अपने कार्यक्रम में यहाँ आ रहे हैं सुशील सीतापुरी जी, और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा ये विषय पर सुशील सीतापुरी भैया जानकारी दे रहे हैं, तो आओ इका सुना जाए।
2: हमारा देश डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तकनीकीकरण का यह समय जहां एक ओर अवसरों के मामले में प्रगति का वाहक बन रहा है, वहीं दूसरी ओर तमाम तरह की चुनौतियां भी पैदा कर रहा है। ऐसे में इसको लेकर हम सबकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ग्रामीण भारत भी तकनीक के इस दौर से अछूता नहीं है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच दूर दराज के गांवों तक सुलभ है। एक आंकड़े के अनुसार डिजिटल सेवाओं के आधे से अधिक उपयोगकर्ता ग्रामीण भारत से संबंध रखते हैं। उन्हें भी किफ़ायती डेटा और बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा हासिल है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, टेलीमेडिसिन और ई लर्निंग जैसी डिजिटल सेवाओं ने ग्रामीणों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन किया है, पर इसी के साथ साइबर सुरक्षा का सवाल भी सामने आ खड़ा हुआ है। साइबर सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो डिजिटल के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर और डेटा को गलत लोगों की पहुंच से बचाना है। आज ग्रामीण भारत में जिस तरह की इंटरनेट पहुंच बढ़ रही है, उसे देखते हुए साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा करना अत्यावश्यक हो गया है। इसके अलावा धोखाधड़ी के लगातार बढ़ते मामलों के चलते भी साइबर सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। साइबर खतरे दो प्रकार के होते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक ऑनलाइन धोखाधड़ी UPI के प्रयोग के मामले में सामने आ रही है। इसमें नकली ID बनाकर या फिर QR कोड के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को गुमराह करना, फर्जी सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करना तथा बेटिंग ऐप्स के माध्यम से भी धोखाधड़ी किए जाने के मामले सामने आए हैं। साइबर जोखिम का दूसरा तरीका वो है जिसमें अपराधी संदिग्ध लिंक, फर्जी SMS, फिशिंग संदेश, बैंक अधिकारी बनकर कॉल करने तथा KYC अपडेट की आड़ में अपराधों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा आधार और पैन नंबर के दुरुपयोग, वन टाइम पासवर्ड चोरी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, पार्सल और कुरियर, फर्जी होटल बुकिंग तथा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर इनाम या ऑफर से संबंधित लिंक भेजकर भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। सोचनीय बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और इनका शिकार आम लोगों से लेकर खास तक समान रूप से हुए हैं। देखा जाए तो साइबर अपराध एक बड़ी समस्या के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लगातार अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर धन का नुकसान हो रहा है। अपराधी इतने शातिर होते हैं कि लोग उनकी चालों को समझ नहीं पाते और आसानी से उनके बहकावे में आ जाते हैं। अपनी सीमित जानकारी की वजह से ग्रामीण

लोग इनका शिकार आसानी से हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल धोखाधड़ी अमूमन वित्तीय जागरूकता की कमी के कारण होती है। लोग यह जान नहीं पाते कि पैसे किसी गलत खाते में चले गए हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों में भी लेन देन करते समय जोखिम की संभावना बनी रहती है। लोकप्रिय डिजिटल भुगतान करते समय भी लोग ठगी को समझ नहीं पाते और उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 2021 से 2025 के बीच लगभग 52,796 करोड़ रुपए साइबर धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए। इससे समझा जा सकता है कि साइबर अपराध किस हद तक देश के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। डिजिटलीकरण ने निश्चित रूप से ग्रामीण भारत के विकास में नए अवसर पैदा किए हैं और वित्तीय सेवाओं का उपयोग सरल बनाया है। ऐसी स्थिति में उनमें जागरूकता पैदा किया जाना अपरिहार्य है। इस संदर्भ में यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का हवाला दिया जा सकता है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण समुदाय में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग करना सिखाया जाता है। इसके साथ ईमेल भेजना, इंटरनेट चलाना और ऑनलाइन भुगतान का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह पहल 1 जुलाई 2015 को शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य बेहतर डिजिटल अवसंरचना और सुशासन के माध्यम से डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। जहां तक साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा का सवाल है, तो कुछ सावधानियां अपनाकर इनसे बचा जा सकता है। इनमें सबसे अनिवार्य है कि ऐप और सॉफ्टवेयर सिर्फ आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से ही डाउनलोड किए जाएं। अनावश्यक सॉफ्टवेयर को सिस्टम से हटा देना चाहिए। साथ ही समय समय पर सिस्टम को अपडेट भी करते रहना चाहिए। ऑटोमेटिक अपडेट का विकल्प भी साइबर सुरक्षा का एक उपाय है, ताकि नए नए अपडेट अपने आप इंस्टॉल होते रहें। अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी साइबर खतरों से बचने का एक उपाय है। साइबर सुरक्षा के अन्य उपायों में ऑनलाइन बैंकिंग करते समय एक अलग बैंक खाते का उपयोग करना भी है। इस खाते में ज़रूरी धनराशि ही रखी जानी चाहिए। ब्राउज़र की हिस्ट्री को नियमित रूप से साफ करना भी आवश्यक है। अनजान और अपरिचित लोगों की ओर से आए ईमेल, संदेश या लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। हर अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड भी साइबर सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा करने से भी बचा जाना चाहिए। बावजूद इस सब के, यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत अपने बैंक, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आज के समय में जब जनरेटिव एआई और सोशल मीडिया का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, तो डिजिटल का महत्व एकाएक बढ़ गया है। आखिर हर डिजिटल गतिविधि व्यक्ति और समाज के मूल्यों पर अपना प्रभाव डालती है। ऐसे में डिजिटल तकनीक को उपयोग करते समय सुरक्षा, नैतिक मूल्यों और ईमानदारी का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर जैसे जैसे ग्रामीण समुदाय डिजिटल सेवाओं की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उन्हें साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक करना अत्यावश्यक हो गया है। जागरूकता और प्रशिक्षण दो ऐसे हथियार हैं जिनसे ग्रामीणों का जीवन तो बेहतर

0: हो ही सकता है। इससे साइबर अपराधों में होने वाले नुकसान को कम करके संसाधनों का उपयोग देश के विकास में किया जा सकता है।
1: आकांक्षा बहनी,
2: हाँ भैया,
1: देखो ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा यह विषय पे बहुत अच्छी और बहुत नीक तरीके से जानकारी दीन भैया सुशील सीतापुरी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद यह महत्वपूर्ण जानकारी खातिर।
2: हाँ भैया, और भैया आपने देश में यहाँ कई संस्कार होते हैं और सब संस्कारन के खातिर अलग अलग गीत गौ नहीं होते हैं, तो आज हम लाइन है एक बधावा लोकगीत जी का गा रही हैं रेखा मिश्रा, एक बोल हैं कंगना मांगे ननदी, तो आई का सुना जाए।

0: देवेश भैया।
1: हाँ कांशा बहनी,
0: अब हम लोग अपनी खेती पाती की तरफ चली। और हाँ भैया, हम लोगन क्या जो सीधा संबंध रहा है वो जो है धरती मैया ते रहा है।
1: बिल्कुल,
0: धरती मैया के जो माटी होती है वही माँ सब प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। अगर हाँ। माटी स्वस्थ तो वही माँ होए वाली फसलों अच्छी।
1: बिल्कुल सही बात है। जब खेत माँ आपकी जो मिट्टी है वो जो है पोषित रहा थे, मजबूत रहा थे, मजबूत से मतलब वही माँ कोनो तरीके के रोग व्याधि या कीड़ा मकौड़ा नहीं रहते हैं, कोनो तत्व के कमी या बेसी नहीं रहते है, तो समझ लियो कि आपन जो उन फसल है वो अच्छी होत है। और जब फसल अच्छी होत है तो आपन जेब मजबूत होत है, और जब जेब मजबूत होत है तो चेहरा पे मुस्कान अच्छी आवत है, और जब चेहरा पे मुस्कान अच्छी आवत है तो आपन स्वास्थ्य भी अच्छा रहत है। तो कह लियो कि चारों तरफ से लाभ ही लाभ दिखात है।
0: बिल्कुल भैया। और हम लोग जो पंच भाई हैं वो अपनी माटी के यहाँ सुधारे के खातिर, अपने चेहरा में जो मुस्कान आप कहो ना वही का बरकरार रखे के खातिर हम लोग कईयों गतिविधि अपनाई थे, और जो है समय समय पर कईयों प्रयोग करी थे। तो वही में यहाँ एक प्रयोग है जो हम लोग करी थे, वे का नाम है मृदा सौरीकरण। ये एक पर्यावरण के अनुकूल और गैर रासायनिक विधि है, जैसे कि कौनो जो है अपन पंच भाई हैं उनकी जेब पर अपनी माटी के यहाँ शुद्धता पोषकता बरकरार करे खातिर रखे के खातिर कौनो जो है बोझ नहीं पड़ता है।
1: बहनी देखो, यू जो आप कहो कि मृदा सौरीकरण, ई समझ लियो बहुत बढ़िया जौन है तकनीक है मृदा सौरीकरण के, कहे से कि सूरज से मिट्टी के इलाज जौन होत है।

0: अब माटी का आप बताओ कि अच्छे रही है, वही में पोषक तत्व ही अच्छा तबे रही है जब वही में कीड़ा मकौड़न लगे हैं। तो अपन जो खेत के माटी है वही का अगर अच्छे से जुताई कर लो, और मिट्टी आपके जो सूरज है वही के गर्मी वही के ताप के संपर्क में आई है, तो जो कीड़ा मकौड़ा राहत हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वही में जो है अगर कोनो कमी होते तो वो भी अच्छे से प्रकाश पावे के कारण अच्छे से सही हो जाते हैं। तो कहा है कि मतलब यूँ है कि जो आपके खेत की माटी है वो अच्छे से उपजाऊपन वही के बढ़ जात है, या तमाम तरीके के जो रोग व्याधि हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं।
1: तो भैया जो मृदा क्षरीकरण प्रक्रिया रहा थे वही के अंतर्गत जो अपन खेत रहा थे माटी रहा थे वही का सबसे पहले जो है अपने खेत के यहाँ कईयों बार जुताई कई के वही का समतल करे पड़त है, फिर वही माँ जो है पानी भरे पड़त है और पानी भर के यहाँ जो पारदर्शी प्लास्टिक रहा थे तो
0: पॉलीथीन
1: हाँ पॉलीथीन पॉलीथीन ते यहाँ वे ख्यात के यहाँ ढकेक पड़त है और वही का यही प्रकार ते यहाँ ढका जात है मृदा सौरीकरण प्रक्रिया में यहाँ कि वही माँ कौन्यू तेने ते यहाँ

0: भी अच्छे से प्रकाश पावे के कारण अच्छे से सही हो जाते है। तो कहा है कि मतलब यू है कि जौन आपके खेत की माटी है वो अच्छे से उपजाऊपन वही के बढ़ जाते है या तमाम तरीके के जौन रोग व्याधि हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं।
1: तो भैया जो मृदा शौरीकरण प्रक्रिया रहा थे वही के अंतर्गत जो अपन खेत रहा थे माटी रहा थे वही का सबसे पहले जो है अपने ख्यात के यहाँ कईयों बार जुताई कही के वही का समतल करे पड़त है, फिर वही माँ जो है पानी भरे पड़त है और पानी भर के यहाँ जो पारदर्शी प्लास्टिक रहा थे
0: पॉलीथीन
1: पॉलीथीन तो यहाँ वे ख्यात के यहाँ ढके पड़त है और वही का यही प्रकार ते यहाँ ढका जाता है मृदा शौरीकरण प्रक्रिया में यहाँ कि वही माँ कौन्यू तेने ते यहाँ जो बाहरी हवा है वह जो है अंदर प्रवेश ना कर सके जो है वह जो पॉलीथीन पर जो अपने सौर्य का प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो जो है पॉलीथीन पर पारदर्शी पॉलीथीन पर पड़े ना कि जमीन पर पड़े।
0: बिल्कुल सर, मतलब यू है कि सूरज की गर्मी अंदर तक जाए लेकिन जो है वो पॉलीथीन के माध्यम से जाए सीधे ना जाए।
1: और एक साथ ही साथ जो वो जो प्रक्रिया रहा थे ये प्रक्रिया का यहाँ जो है लगभग एक हफ्ता या छः हफ्ता तक एक हफ्ता या चार हफ्ता तक जो है रखा जाता है ताकि वो जो सूर्य के रोशनी ते यहाँ और सूर्य के ताप ते यहाँ जो अंदर जो है पानी भरा है माटी में यहाँ और बहते जो प्रक्रिया होते वही के अंतर्गत काफ़ी ताप पैदा होते गर्मी पैदा होते जही के तहत जो जमीन के कीड़ा रहा थे और जो कई प्रकार के फंगस रहा थे
0: बैक्टीरिया जो रहते हैं वो गर्मी के साथ नष्ट हो जाते हैं।
1: हाँ वो नष्ट हो जाते हैं
0: और साथ ही साथ जो उन गर्मी में पोषक तत्व घुलनशील गर्मी मिट्टी में रहते हैं वो जो है ऊपर आ जाते हैं जो उनकी फसल में जल्दी से मिल नहीं पावत हैं। तो एक तरीके से ये मृदा शौरीकरण जो है ये बहुत ही फायदे वाली तकनीक है। इससे रोग नियंत्रण होता है और निमटोड प्रबंधन हो जाता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, पैदावार में बढ़त होता है। हाँ तो ये एक अच्छी तकनीक है जिसके प्रयोग से अपने खेत के माटी के स्वास्थ्य का ठीक किया जा सकत है। और बहनी देखो जब किसान अपन खेत माँ फसल और ये सब चीज़ें होती हैं तो ये सोचत है कि अपने खेत से ये लाभ तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जौन सरकार अगर कौन योजना चलाए रही है तो वह का हमका लाभ मिल जाए। तो किसान रजिस्ट्री हो रही है जौन फार्मर आईडी वहू खातिर जौन है जरूरी है कि किसान भाई ध्यान दें और ये प्रक्रिया जौन सरकार द्वारा कराई जा रही है किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी वही के पूरा लाभ उनका मिल सके। तो यह प्रक्रिया से जुड़ें आपन जौन है रजिस्ट्रेशन जरूर करावें।
1: हाँ भैया ये जो किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी है यह एक विशिष्ट किसान आईडी होती है एका करवावे के खातिर जो पंच भाई हैं वे राज्य की आधिकारिक एग्री स्टेक किसान रजिस्ट्री पोर्टल पर या फिर केंद्रीय पीएम किसान पोर्टल पर जाकर यहाँ अपन पंजीकरण करवा सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया होते ये डिजिटल रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया अपने पंच भाई जो रहते हैं उनके आधार कार्ड के यहाँ और जो उनके ज़मीन के कागजात रहते हैं उनते वह जुड़त है। तो यही की खातिर जो है किसान रजिस्ट्री फॉर्मर आई डी तैयार करब बहुत जरूरी
0: होगा काहे से कि ई जौन रजिस्ट्री किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी है यही के माध्यम से यही योजना जौन तमाम चल रही है पीएम किसान फसल बीमा योजना के केसीसी लोन सब्सिडी ई सब जौन राहत है यही सबके लाभ आपका मिल सकी है। तो इमा अपने जमीन के ब्यौरा फसल के जानकारी ई सब जौन जानकारी मांगी जा रही उपलब्ध करावें और अपन रजिस्ट्रेशन जरूर करावें।
1: हाँ भैया।
0: और बहनी देखो जैसे कि जायद सब्जी के ऊ चल रहा है समय तो सब्जी जरूरी हो जाते है जब खाना आप खाए बैठो तो वहूँ माँ अगर थरिया में सब्जी ना दिखाई पड़े तो लागत है कि थरिया कहूँ ना कहूँ सूनी है खाना कहूँ ना कहूँ अधूरा है। और सब्जी जौन है ओका दाम तबे अच्छा मिला था जब वो देखे माँ अच्छी लगती हैं वही माँ कोनो तरीके के दाग ना होए सड़न ना होए या कोनो रोग व्याधि ना होए। तो यही के लिए जरूरी है कि वही के फसल सुरक्षा अच्छे से की जाए। तो जायज सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य यह विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप कुमार भैया और इनसे बतकही कह रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ इनकी जो बतकही है जायज सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य के बारे में वही का सुना जाए और जानकारी प्राप्त की जाए।
1: बिल्कुल भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जायद की सब्जियों में कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, लोबिया है, मिर्च है और कंद वर्गीय सब्जियों में

0: अरबी, बंडा, हल्दी, अदरक और सूरन की फसल। जहाँ सब्जियाँ आपके खेत में हैं वहाँ कुछ हानिकारक कीट और बीमारियाँ लगती हैं, तो फसल सुरक्षा कार्य इस समय कौन कौन से करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड नानपारा बहराइच से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर संदीप कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो जायद की सब्जियां हैं उनमें फसल सुरक्षा कार्य कौन कौन से करें किसान भाई बहन, ताकि फसल सुरक्षित रहे, अच्छा उत्पादन मिले।
1: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आजकल हमारे जो है जायद की सब्जियों में सबसे जो ज़्यादा हमारी सब्जियां हैं वो हैं हमारी कद्दू कुल की सब्जियां, जिसमें नेनुआ है, कोहड़ा है, लौकी है, करेला है, ये हमारे फील्ड में बहुत आयत हैं
0: जी।
1: किसान भाइयों, इसमें जो है कुछ कीटों की समस्याएं हैं जो हमारे फसल के उत्पादकता को घटा दे रहे हैं और उसकी क्वालिटी को घटा दे रहे हैं।
0: जैसे
1: जैसे अगर हम कद्दू कुल की सब्जियों की बात करें तो फल मक्खी एक ऐसा कीट है जो हमारा बहुत नुकसान करता है। यह कीट ऊपर से तो नहीं खाता है, लेकिन ये जो है फल के जो है अंदरूनी हिस्सों में अंडे दे देती है और सैकड़ों की संख्या में जो है बिना पैर के जो है लार्वा अंदर जो है गूदों को खाते रहते हैं
0: और गुणवत्ता खराब हो
1: और
0: जाती है।
1: गुणवत्ता खराब हो जाती है, छोटे ही फल गिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है,
0: बाजार भाव भी नहीं मिलता।
1: बाजार भाव भी नहीं मिलता इनका। तो किसान भाइयों, ये इसको देखते हुए इस मक्खी का जो है नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये मक्खी है उड़ती रहती है, एक जगह नहीं बैठती है, जगह जगह बैठती है, तो हम इसको जो है कुछ दूसरे तरीकों से हम इसका कंट्रोल करेंगे। पहला जो बहुत ही प्रभावशाली है, सबसे पहले हम फील्ड का निगरानी करें।
0: यानी नियमित खेत की निगरानी आवश्यक है।
1: जी,
0: जो भी सब्जियां हैं, चाहे कद्दू कुल की है, भिंडी है, मिर्चा है या कंदवर्गीय सब्जियां,
1: जी, तो निगरानी करते रहें और जिस भी फल में आपको लगे कि कीड़े लगे हुए हैं उस फल को तोड़ करके एक बैग में, झोले में उसको इकट्ठा कर लें, कदापि वहां न फेंकें, क्योंकि अगर वहां फेंकेंगे तो एक तरह से आप कीट की नर्सरी तैयार करेंगे,
0: यानी उनकी पीढ़ी और आगे
1: बढ़ेगी। तो उनको तोड़ करके उनको जो है किसी थैले में इकट्ठा करके उसको ले जाकर कहीं नष्ट कर दें।
0: जी,
1: इसके बाद जो है चूंकि मक्खी है वो जगह जगह उड़ती है, तो उसके लिए एक फेरोमोन लेयर आता है जिसको क्यू लेयर बोलते हैं।
0: जी,
1: इसका इस्तेमाल 10 से 12 जगहों पर हम अगर प्रति हेक्टेयर करते हैं,
0: अगर एकड़ की बात करें तो
1: चार से पांच एक जगह पे ये लेयर लगा करके हम उन मक्खियों को जो है पकड़ सकते हैं। इससे हमारा दो फायदा है, एक तो हमको ये लगेगा कि कीटों की संख्या कितनी है और दूसरा वो कीट को हम पकड़ के मार भी सकते हैं।
0: तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो क्या ये क्यू लेयर बढ़ाना पड़ेगा?
1: नहीं, क्यू लेयर को बहुत बढ़ाने से बहुत फायदा नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा। इससे अगर और बढ़ता है तो हमारा दूसरा तरीका है कि नीम बेस्ड जो भी हमारा कीटनाशक है,
0: जैसे नीम का तेल है,
1: जैसे नीम का तेल है बाजार में मिलता है बहुत सारे कंपनियों का, या आप नीम के बीज से खुद ही बना सकते हैं उसका अर्क उतार करके,
0: यानी नीम कौड़ी से सत,
1: जी, उसका सत बना करके इसका छिड़काव अगर आप करते रहते हैं तो ये फल मक्खी जो है कम आएगी। इसके बाद भी अगर मौसम खराब होता है, उसका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, बहुत ज्यादा मक्खियां लग जाती हैं, जैसे बारिश हो गई, बदली हो गई, तो ज्यादा लगते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब आप जो है 15 लीटर पानी में आप करीब 400 ग्राम जो है गुड़ घोल करके और उसमें थोड़ी कोई भी कीटनाशक जैसे क्लोरपाइरीफास ये सब 20 ml ले लीजिए लिक्विड का, और इसका घोल बना करके एक हेक्टेयर में कम से कम 100-150 जगह स्पॉट पे उसको थोड़ा थोड़ा छिड़क दें,
0: यानी एकड़ में लगभग 40 जगह
1: पे, जगह जगह आपको केवल एक छिड़कना है, पूरे खेत में नहीं छिड़कना है। तो ये जो गुड़ है उसके साथ जो दवा मिली है इससे मक्खी आएगी और काफी इसका कंट्रोल हो जाएगा,
0: यानी व्यवहारिक प्रबंधन हो जाएगा।
1: जी,
0: अगर नुकसान का स्तर और अधिक है तो क्या कोई सुरक्षित रसायन है जिसका छिड़काव भी फायदेमंद?
1: जो भी रसायन हम छिड़केंगे उसको गुड़ के साथ ही छिड़केंगे, क्योंकि मक्खियां होती हैं वो इधर उधर उड़ती रहती हैं। तो जो मैंने बताया कि आप पानी लीजिए, गुड़ लीजिए और उसमें क्लोरपाइरीफास या और कोई दूसरी भी इंसेक्टिसाइड या इमामेक्टिन ही मिला करके उसमें जो है आप 10 से 15 ml 15 लीटर पानी में उसका छिड़काव जगह जगह स्पॉट पे करेंगे तो इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, कई रस चूसने वाले कीट जैसे जैसिड है, हरा तेला जिसको बोलते हैं, सफेद मक्खी है, कई बार कई माइट भी लगती हैं जायद सब्जियों में।
1: जी, ये जो माइट है ये तो अलग तरह का कीट होता है, तो इसके 8 पैर होते हैं, या इसके लिए अलग दवा पड़ती है। लेकिन जैसे हरा फुदका है, जैसिड की बात आपने कहा, सफेद मक्खी है, ये सब रस चूसने वाले कीट है,
0: या कहीं माहू भी है।
1: हाँ, कहीं कहीं

0: माहो भी लगती हैं, जैसे आपका लोबिया है उसमें बहुत काले रंग की माहो लगती हैं। तो ये जो चूसक वाले कीट हैं इनको नियंत्रित करने के लिए एक तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी फसल हम सब्जियों की बोते हैं, ये खास करके मिर्चा में, भिंडी में, करेले में ये सब लगती हैं, तो उनके बॉर्डर पर खेत के चारों तरफ जो है मक्का, चरी कुछ भी बो दें
1: जी,
0: किनारे
1: एक
0: किनारे।
1: रक्षक फसल के
0: हाँ,
1: रूप।
0: रच इसको बोने से हमारा काफी ये कीट कम हो जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा हम फिर जो है उसको जाएंगे तो नीम का तो प्रयोग करेंगे सबसे पहले, नीम के रस का या नीम के गिरी का, नीम कौड़ी का। इसके बाद हम सिस्टेमिक दवा का इस्तेमाल करेंगे,
1: जैसे
0: उसमें जैसे हमारे पास इमिडाक्लोपीड है 17.8 SL की, इसकी आधा ML प्रति लीटर की दर से आप जो है घोल बना के छिड़काव
1: अगर
0: करें,
1: नुकसान का स्तर अधिक है तो।
0: अधिक है तो। और दूसरी दवा थायोमेथोक्साम है, 25% WG वो आता है
1: आधा
0: ग्रेन्यू,
1: ग्राम
0: हाँ वो भी नहीं वो तो वो भी आधा ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर आप छिड़कते हैं तो जायसीड, व्हाइट फ्लाई, ये सबसे हमारा काफी नियंत्रण होता है।
1: डॉक्टर साहब, जायद सब्जियों की बात चली है तो फल मक्खी हो गया, रस चूसने वाले कीट हो गए, कुछ और हानिकारक कीट हैं?
0: अब जैसे ये बहुत जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं वो हमारी माइट किलनी की बात हम जो कर रहे थे,
1: जी,
0: तो ये
1: अष्टपदी।
0: हाँ अष्टपदी जिसको बोलते हैं, ये हमारे मिर्च में हरे पीले रंग की होती है, भिंडी में लाल कलर की होती है, तो ये बहुत नुकसान करती है। पत्ती के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा लग
1: चिपकी रहती है,
0: हाँ और ज्यादा लगते तो नीचे
1: जाला भी बन जाता है।
0: जाला भी बन जाता है उसमें, तो धूल वगैरह जाती है तो जाला बन जाता है। तो जो किसान भाई रेगुलर अगर पानी का भी छिड़काव कर दें अगर 15 दिन पे,
1: तेज पानी का
0: तो हाँ पानी
1: फुहारा
0: छिड़क
1: मार दें।
0: मार दे तो जाला खत्म हो जाता है, धूल खत्म हो जाती है, तो माइट का असर कम हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम दवा का इस्तेमाल न करें तो सल्फर जो है, जो 80% वेटेबल पाउडर
1: घुलनशील गंधक।
0: आता है, तो वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़कते रहते हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि कोई और दवा की जरूरत पड़ेगी।
1: यानी सल्फर जो है माइटीसाइड भी है
0: हाँ
1: एक।
0: जी, वो तत्व के साथ साथ जो है किलनी मारने का भी काम करता है।
1: इसके अलावा
0: और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो फिर हम अबामेक्टिन जो है एक एकेरिसाइड आता है जो माइटीसाइड जिसको बोलते हैं, इसकी जो है 0.8 ML मतलब आधा ML से थोड़ा सा ज़्यादा
1: जी,
0: 1 लीटर पानी में घोल बना ले
1: यानी 1 ML 1.25 लीटर पानी में।
0: जी। और दूसरी एक दवा आती है जो हर जगह बहुत आसानी से मिल जाती है, वो होती है प्रोपारजाइट। तो
1: हाँ,
0: ये प्रोपारजाइट 3 से 3.5 ML प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके इसका छिड़काव करें। और जब भी घोल का इस्तेमाल करें उसमें स्टीकर जरूर मिला लें, सर्फ या शैम्पू या कोई भी जो है चिपकने वाला पदार्थ मिला करके करेंगे तो और उसका प्रभाव पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, जायद की सब्जियों में फसल सुरक्षा की बात हो रही है तो कुछ बीमारियां भी लगती हैं?
0: हाँ देखिए, ये सब जो हमारे जायद की फसलों में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, लेकिन हम मुख्य मुख्य बीमारियों की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा डाउनी मिल्ड्यू होता है,
1: जी,
0: जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसमें देखेंगे कि पत्तियां जो है एकाएक पीली होकर के
1: मुरझाना शुरू।
0: मुरझाना हो जाती है, तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, उस पर
1: पाउडर है तो
0: पाउडर
1: पाउडरी
0: जैसा,
1: मिल्ड्यू।
0: हाँ पाउडर जैसे सफ़ेद सफ़ेद उस पर दिखने लगते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये मिल्ड्यू वाली बीमारी जो है ये हमारे कद्दू कुल के सब्जियों में बहुत ज़्यादा लगता है।
1: इसका प्रबंधन हो
0: हाँ
1: कैसे?
0: जी, इसका प्रबंधन करने के लिए हमको जो है फंजीसाइड पर ही जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मेटालैक्सिल और मैनकोजेब का एक कॉम्बिनेशन आता है, और इसको 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो हमारा ये बीमारी मिल्ड्यू वाली कम होगी। दूसरी बीमारी होती है उकठा की,
1: हाँ,
0: उकठा की बीमारी जो अक्सर सब्जियों में होती है उसके 2-3 कारण होते हैं, एक तो फ्यूजेरियम विल्ट होता है जो फंगस होता है, दूसरा हमारा रूट नॉट नेमेटोड होता है,
1: यानी
0: जैसे
1: सूत्रकृमि की समस्या।
0: सूत्रकृमि की समझे, परवल हो गया और टमाटर हो गया, सब में जो है हमारा निमेटोड लगता है। तो निमेटोड के लिए सबसे अच्छा है कि जमीन में आप नीम की खली का प्रयोग करें, और हर पौधे के साथ जैसे टमाटर है, परवल है, बीच बीच में एक गेंदे का फूल लगा दें, तो उससे जड़ों से जो केमिकल निकलता है गेंदे के फूल से, इससे आपका जो है निमेटोड रुकेगा। और नीम की खली का प्रयोग कर दें, दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी इससे हमारा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारे ब्लाइट लगती हैं, झुलसा जिसको बोलते हैं,
1: जी,
0: जैसे अल्टरनिया ब्लाइट है, वैस्कुलर विल्ट है, स्कैब डिजीज है, ये सब बीमारियों से पत्तियां पीली होती है, उस पर धब्बे बनते हैं और बाद में सूख करके झड़ने लगते हैं, तो
1: तो इसका प्रबंधन।
0: इसके प्रबंधन के लिए जैसे वैस्कुलर विल्ट लगता है तो बैक्टीरिया की वजह से लगता है, और कुछ हमारा फंजीसाइड की वजह से लगता है, तो जो किसान भाई इसको बैक्टीरिया मारने की दवा जैसे प्लांटोमाइसिन आता है तो इसको भी इस्तेमाल कर लें, लगभग 20 लीटर के पानी में लगभग 1 ग्राम जो है वो प्लांटोमाइसिन
1: प्लांटोमाइसिन
0: डाल
1: या
0: दें,
1: स्ट्रेप्टोसाइक्लिन।
0: साइक्लिन डाल दें, इसका छिड़काव करें,

0: और दूसरा फंजीसाइड में आप जो है मैनकोजेब या मेटालेक्सिल है, मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें, तो स्कैब की बीमारी हो गई, पाउडरी मिल्डी, डाउनी मिल्डी, ये जितनी फंगस की बीमारियां हैं इससे काफ़ी उनको सुरक्षा मिलेगी। और जो उकठा लगता है और ज़मीन में दूसरी वजहों से, जैसे फ्यूजेरियम यानी कि फंगस की वजह से, तो आप मिट्टी जब चढ़ाते हैं फसलों को, बैंगन है, मिर्चा है, टमाटर है, तो उसमें ट्राइकोडर्मा गोबर के साथ मिला करके गोबर की खाद के साथ मिला करके, ट्राइकोडर्मा 1 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर से लगता है,
1: प्रति पौधा
0: तो 10 ग्राम 20 ग्राम लेकर के, और उसको गोबर में मिला करके उसको उसके तने के पास मिट्टी में चढ़ा दें तो ट्राइकोडर्मा काफी हद तक रोकेगा।
1: डॉक्टर साहब एक सवाल और कि जायद सब्जियों में कई मोज़ेक वायरस लोग पीला सिरा मोज़ेक भी लगता है,
0: ये बहुत भयंकर बीमारी होती है। जब इसका मोज़ेक मतलब ये वायरस की बीमारी होती है, विषाणु की होती है, और विषाणु का जो बीमारी होती है वो लगने के बाद कभी भी ठीक नहीं होती है।
1: और इसका वाहक रस चूसने वाले कीट
0: है, जैसे माव हो गए, हमारे सफ़ेद मक्खी हो गई, और जैसिड भी होती हैं। तो ये जो भिंडी में, कद्दू कुल में, ये तमाम मोज़ेक वायरस लगते हैं, भिंडी में पीला वेन मोज़ेक जिसको बोलते हैं, तो ये सब बीमारियां लगने के बाद ठीक होती ही नहीं है। तो जैसे ही एक किसी पौधे में दिखाई दे उसको उखाड़ करके नष्ट कर दें, वहां न छोड़ें,
1: यानी जमीन में गाड़ दें
0: उसको,
1: फेंके ना
0: कहीं वो, तो ये जो है फेंके ना। इसके बाद रस चूसने वाले जो दवा है, जैसा मैंने बताया कि इमिडाक्लोप्रिड है, उसको जो है आप आधा ग्राम या आधा ml प्रति लीटर की दर
1: से,
0: आधा ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है इस घोल बना करके उसका छिड़काव करते रहेंगे, तो इस तरह से जो है आपकी जायद की फसलों का काफी सुरक्षा होगा।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड नानपारा बहराई जाना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी मेरा मोबाइल नंबर जो है किसान भाई नोट कर लें, 99 19 20 66 41, 9919206641, 99 19 20 66 41।
1: डॉक्टर संदीप कुमार साहब चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब
0: देखिए कोई भी सब्जी अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके क्वालिटी का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता न खराब हो। आजकल जैविक जो है प्रबंधन की बात हो रही है तो उसमें आपका नीम जो है, नीम कौड़ी जो है, अब समय आ गया उसको इकट्ठा कर लें, और समय समय पर अगर 4% का घोल बनाकर छिड़कते रहते हैं तो आपको कीटनाशक इस्तेमाल का बहुत कम करना पड़ेगा, कभी भी नहीं भी करना पड़ सकता।
1: डॉक्टर संदीप कुमार साहब आज आप कार्यक्रम में आए और जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य इस समय क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देवेश भैया,
3: हाँ कांशा बहन,
2: डॉक्टर संदीप कुमार भैया जायद सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य विषय पर बहुत अच्छे थे, जैविक तरीका और घरेलू तरीका बताएं, यही खातिर डॉक्टर संदीप कुमार भैया के यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और इतने अच्छे तरीके से जो उन बतकही कही के जानकारी दवाइन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, उन्हें उनका बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
3: और बहनी अब देखो अपने जो उन श्रोता पंच हैं उनका इंतजार हुई कि कुछ गीत गौनाई अपनी बैठकी में हुई जाए, तो एक खेमटा है सतीश चंद श्रीवास्तव भैया के आवाज़ में, जैके बोल हैं चमके चंदा सा मुखड़ा तुहार, तो आ सुना जाए ई खेमटा।

0: वाह कांशावनी, गीत तो बहुत ही सुंदर रहा, मन सुन के प्रसन्न होएगा। और अपन जो उन गीत गौनाई होते हैं, वही के विशेषता यही होता है कि जब वही के श्रवण की जाए, वही का सुना जाए, तो तन मन दोनों झूम उठे।
1: बिल्कुल भैया, झूम उठा मन। और भैया मौसम जो है वो कबो आजकल देखक मिल रहा है कि कबो मौसम चित माँ बदलत है, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ वह परिवर्तन होत रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो कबो धूप रहा थे तो थोड़ी देर में यहाँ कबो जो है छैया आ जाते, कबो आंधी चरे लागत थे। तो यहाँ समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ कहा क्या मतलब है परिवर्तन होत है।
0: बिल्कुल, और यू जरूरी हो जाता है एक किसान खातिर कि वही का जौन है मौसम के सही जानकारी रहे। तो मौसम संबंधी जानकारी के बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि बताए दो अपने श्रोता पंचन का।
1: हाँ भैया, यह मौसम संबंधी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के अंत प्राप्त भई है। यके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तारीख 16/5/2026 का मौसम पूरी तरह तहिया शुष्क रहे की संभावना है।
0: तो यू तो भाई मौसम के जानकारी, और देखो अपन जौन खेती किसानी है कार्यक्रम, लोकायतन खेती किसानी जौन अपन कार्यक्रम है, वही माँ अपन जौन श्रोता पंच हैं वो का सुनय चाहत हैं, और उनका का नेक लग रहा है, का उनका जौन है सुनय के मन है, या कौन जानकारी चाहत हैं ई

0: चिट्ठी पत्री के माध्यमों से बता सकते हैं तो पता बता दो, और फिर वही के बाद हम बताई कि कल का सुन सकते हैं अपने श्रोतापंच अपने कार्यक्रम में।
1: हाँ भैया, अपने कार्यक्रम का पता है लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001।
0: और ईमेल भी कह सकते हैं तो ईमेल के जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस वो है farmandhome@gmail.com। और कल अपन जौन देखो घड़ी इशारा कर रही है कि अपन जो कार्यक्रम है वही के समय हो रहा है समाप्त, तो अपने पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
1: जय हिंद।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बेली पार्क क्षेत्र स्थित ताल नदौर में करीब 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में नई खेल संस्कृति आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बनाया जा रहा है।
3: हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
3: आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी।
2: श्री योगी ने कहा कि ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ी

0: खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपए देने के लिए पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रति आभार व्यक्त किया है। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाना जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था में आए सुधार ने आम नागरिकों से लेकर उद्योग जगत तक नया विश्वास पैदा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस स्टेडियम से प्रशिक्षण लेकर ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। 46 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30,000 होगी। स्टेडियम के बगल में 60 एकड़ भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसमें इंडोर खेलों की सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेडियम कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा। अंशकालिक अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय वितरण को लेकर कल प्रदेश भर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान और बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से प्रभावी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा बचत की अपील के मद्देनजर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का परिचायक होगी बल्कि आर्थिक अनुशासन और ऊर्जा बचत के दृष्टिगत समाज में सकारात्मक संदेश भी देगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एक विवादित बयान के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में एक सभा के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय की प्रथम नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों और गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: बहुत पुराना कॉलेज है, आजादी के बाद का पहला, और अब ये यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया है। इसमें रिसर्च वगैरह भी अब शुरू हो जाएगी या हो रही होगी, लेकिन अब क्या है कि रिसर्च बहुत पुरजोर तरीके से की जाएगी सबके साथ। तो फिर हाई क्वालिटी रिसर्च हो, स्टूडेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड हो, कैंपस का माहौल बहुत अच्छा हो, और इस पे मेरा प्रयास रहेगा।
0: चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि चित्रकूट में 90 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे।
3: उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर चित्रकूट के विकास के लिए आज चित्रकूट नगर में 90 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण और नगर के सुंदरीकरण, नगर के चमुखी विकास के लिए इस 26 और 27 इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।
0: वट सावित्री का पर्व आज प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग और पति के दीर्घ

स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री निर्जला व्रत रखा है। व्रती महिलाओं ने विधि विधान से सावित्री माता की पूजा के बाद बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर अटल सौभाग्य की कामना की। प्रयागराज में व्रती महिलाओं ने आज सुबह संगम में पवित्र स्नान करने के बाद बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने सुहाग की सलामती और लंबी उम्र की प्रार्थना की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मॉनसून 18 जून को गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में दस्तक देगा। इस वर्ष मॉनसूनी सीजन में सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। सिंचाई और जल संसाधन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए यह कक्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए जलस्तर की रियल टाइम निगरानी और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ सुरक्षा समितियां तैयार की जा रही हैं। इनमें संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर, ग्राम प्रधान और लेखपाल सहित स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में बनाई है मजबूत पहचान। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं का करा सकेंगे पुनर्मूल्यांकन। ऑनलाइन आवेदन के बाद 2 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। और प्रदेश में 18 जून को गोरखपुर के रास्ते मॉनसून देगा दस्तक। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने सभी 18 मंडलों में 31 मई तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।

0: नमस्कार, विज्ञान तकनीक और पर्यावरण से जुड़े विज्ञान जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। इस अंक में हम जानेंगे विज्ञान तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए इस सप्ताह के गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे 21वीं सदी का ईंधन, परमाणु सपनों को पंख लगाएगा थोरियम विषय पर भेंटवार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
1: धन्यवाद प्रवीण। आइए सुनते हैं विज्ञान समाचार। वाशिंगटन डीसी स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में अब भारत की एक ऐसी उपलब्धि को जगह मिली है जो तकनीक नहीं बल्कि जज्बात और संस्कृति से जुड़ी है। आधुनिक रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट के बीच इसरो की दिग्गज वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ की साड़ी को प्रदर्शित किया गया है। ये वही साड़ी है जिसे पहनकर उन्होंने भारत के ऐतिहासिक मंगलयान मिशन की कमान संभाली थी। ये प्रदर्शनी वैश्विक मंच पर भारतीय महिला वैज्ञानिकों की शक्ति और रॉकेट वुमन के योगदान का जीवंत प्रमाण बन गई है। नंदिनी हरिनाथ ने ये नीले और लाल रंग की रेशमी साड़ी उस दिन पहनी थी जब मंगलयान पृथ्वी की कक्षा छोड़कर मंगल की ओर बढ़ा था। मिशन मौसम के तहत मौसम और जलवायु निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT ने ऊंचाई पर निगरानी करने में सक्षम ड्रोन का विकास किया है। मानव रहित हवाई वाहन को, जिसका नाम HAD या हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है, विशेष रूप से ऊंचाई पर वायुमंडलीय अवलोकन और पर्यावरण निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित इस ड्रोन ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास पामनजी तट पर स्थित NIOT के समुद्र परिसर में अपने पहले क्षेत्र परीक्षण पूर्ण किए। अमेरिका के उत्तरी हिस्से में बसे उत्क्यागविक शहर इन दिनों चर्चा में है क्योंकि यहाँ सूरज अब अगस्त महीने तक डूबने वाला नहीं है। पहले इस शहर को बैरो नाम से जाना जाता था। ये जगह आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब स्थित है, इसी वजह से यहाँ साल के कुछ महीनों में सूरज बिल्कुल नहीं डूबता जबकि कुछ महीनों में सूरज निकलता ही नहीं। अब यहाँ मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज का दौर शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ लगातार दिन जैसा उजाला रहेगा।

0: और अब बात परमाणु ऊर्जा की। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा परमाणु जो खुली आंखों से दिखता भी नहीं है, उसमें इतनी ताकत है कि पूरे शहर को रोशन कर दे। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जिसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया के किसी देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे समुद्र तटों की रेत में छिपा वह सच है जिसे दुनिया थोरियम के नाम से जानती है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा की, और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीएम नौटियाल। स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपको बताते चलें कि डॉक्टर सीएम नौटियाल जी पूर्व वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के ऊर्जा और इससे जुड़े क्षेत्रों में अनुसंधान किए हैं, शोध किए हैं। जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ, यहाँ नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ कैसे हुआ?
1: ये बड़ी अच्छी कहानी है, और अगर किसी एक व्यक्ति को इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा सकता है तो वो थे होमी जहांगीर भाभा। उन्हें जनक कहा जाता है हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में या नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। उनके पिता चाहते थे वो इंजीनियर बने, तो वो चाहते थे कि उसी में वो आगे चल के एक मैनेजर का पद लें और बड़ी आरामदायक उनकी जिंदगी हो सकती थी। लेकिन होमी भाभा ने उनसे कहा कि आपकी इच्छा है, आपका आदेश है, इसलिए मैं इंजीनियरिंग तो करूंगा। तो वो इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज से उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी, अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा, मेरा जो पहला प्यार है वो फिजिक्स है, मैं आगे फिजिक्स पढ़ूंगा। तो उन्होंने 2 साल और वहां पर पढ़ाई की, उन्होंने उसके बाद कॉस्मिक रे में रिसर्च की, और फाउलर के साथ उन्होंने अपनी पीएचडी की, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला एलिमेंटल सिंथेसिस के क्षेत्र में। उसके बाद ये जब भारत आए, उनका संपर्क हुआ प्रोफेसर सीवी रामन से, जो उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में थे, और वहां पर इन्होंने काम करना शुरू किया। और जो शायद इंग्लैंड का एक लॉस था, वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन गया। उसके बाद सोचा कि भारत में ऐसे किस क्षेत्र में शोध शुरू करें जो हमारे देश का विकास भी करे और विज्ञान का विकास भी करे। उसके बाद 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन बना, उसके बाद बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी बना, यानी पानी उसमें रहता था और जो ऊष्मा निकलती थी उसे पानी सोख लेता था, और पानी जब ऊर्जा को सोखता था तो गर्म होता था, उसकी भाप बन जाती थी, वो भाप बाहर निकलकर टर्बाइन्स को चलाती थी, और उन जब टर्बाइन को चलाती थी तो हम जानते हैं कि अगर किसी सोलेनोइड को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाए तो बिजली पैदा होती। तो इस तरह से हमारा जो ये पावर रिएक्टर था वो बना। इसके बाद तो प्रगति लगातार होती रही। 1970 में अपने आप जो थे वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाए गए, उस टेक्नोलॉजी का हमारे देश में विकास किया गया, राजस्थान के एटॉमिक पावर स्टेशन बने। और उसके बाद 1974 में जो पोखरण 1 हुआ, स्माइलिंग बुद्धा, वो भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण था, लेकिन इसने भारत के लिए बहुत सारी समस्याएं भी पैदा कर दी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत विरोध हुआ, सैंक्शंस लगाई, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होनी बंद हो गई, दूसरे देशों ने एक तरह से असहयोग किया।
0: जी, तमाम अवरोधों संघर्षों के बावजूद हम लोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सफल रहे
2: जी,
0: और इस तरह से अपने देश में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ हुआ। अगर हम आम आदमी के लिए इसके बारे में बात करें कि नाभिकीय परमाणु ऊर्जा आखिर में होता क्या है, कैसे काम करता है?
1: हाँ, जैसा आपने आरंभ में कहा था कि एक परमाणु के अंदर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है ये हम नहीं जानते। दरअसल होता यह है कि जो कुछ भारी तत्व है, जैसे यूरेनियम है या थोरियम के कुछ समस्थानिक आइसोटोप्स हैं, इनको अगर तोड़ा जाए तो ये छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, लेकिन इनमें से इसके साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, तो इन सब का जोड़ जो आरंभिक मास या द्रव्यमान था उसके बराबर नहीं होता। वो जो खो गया द्रव्यमान या मटेरियल है उसका क्या हुआ? वो दरअसल ऊर्जा में बदल जाता है, क्योंकि किसी भी परमाणु से किसी बड़े परमाणु को बनाने में आप 2 परमाणु लीजिए, उससे आप तीसरा परमाणु भारी वाला बनवाना चाहेंगे, तो इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है। और अगर हम एक किसी भारी परमाणु को तोड़ के 2 छोटे परमाणु में तोड़ें तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है। जो परंपरागत नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है विखंडन की अभिक्रिया है, जिसमें यूरेनियम, जैसे यूरेनियम 235 उदाहरण के लिए, उसके नाभिक को जब तोड़ा जाता है न्यूट्रॉन्स की वर्षा करके, तो वो 2 हल्के तत्वों में टूट जाता है, और इसके साथ में वो कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करता है, और ये न्यूट्रॉन ऊर्जावान होते हैं, तो ये आगे चलकर जो आसपास में दूसरे यूरेनियम 235 के परमाणु होते हैं या नाभिक होते हैं उनसे टकराता है, उनको भी तोड़ देता है। तो मान लिया कि आरंभ में केवल 3 न्यूट्रॉन निकले हों, ये आगे चल के 3 और नाभिकों को तोड़ सकते हैं, और उन हरेक से 3-3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो ये एक श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन या कैस्केड शुरू हो जाता है, और ये संख्या जो न्यूट्रॉन्स की है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अगर ये प्रक्रिया इसी तरह से लगातार बढ़ती रहेगी तो हर बार वो न्यूट्रॉन्स कुछ ऊर्जा कैरी करेंगे, वो ऊर्जा हमें मिल जाएगी। अगर हम इसको कंट्रोल कर सकें तब तो ये नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन है, और अगर ये अनकंट्रोल्ड होगी, हम इन न्यूट्रॉन्स को उसी तेजी से बढ़ने दें, अगर उसको छोड़ दें बिल्कुल, तो वो इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि वो बम का विस्फोट हो जाएगा। और यही अंतर है परमाणु ऊर्जा को बनाने में या नाभिकीय ऊर्जा को बनाने में उनके रिएक्टर में और किसी परमाणु बम।

0: यानी न्यूट्रॉन जब तक नियंत्रण में है तब तक हमारे लिए उपयोगी है, अगर वही अनियंत्रित हो जाता है तो परमाणु विस्फोट की स्थिति बन जाती है। तो पिछले 80 वर्षों में इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है?
1: भाभा ने दोराबजी टाटा ट्रस्ट को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि मैं नाभिकीय ऊर्जा पे, कॉस्मिक रेस पे यानी अंतरिक्ष किरणों पे, मैं इन चीजों पर अपने देश में शोध आरंभ करना चाहता हूँ। तो उनसे आर्थिक सहायता मिली और उस समय जो तत्कालीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थी, आज भी उसका वही नाम है, इन्होंने हमारे देश में गंभीरता से परमाणु प्रोग्राम को आरंभ करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार ने सहयोग किया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन होमी भाभा की अध्यक्षता में स्थापित किया गया।
0: जी, और इस तरह से भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आगे बढ़ा। लेकिन हाल ही में कल्पक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी की सफलता की खूब चर्चा रही। यह आखिर है क्या और इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे?
1: क्रिटिकलिटी अचीव कर लेने का अर्थ है, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, कि एक सस्टेन्ड लगातार चलने वाला चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया हो जाए कि जब हम बौछार करते हैं न्यूट्रॉन्स की किसी यूरेनियम 235 के नाभिक पर तो वो टूट जाता है दो छोटे परमाणुओं में या छोटे नाभिकों में, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जावान न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ये आगे चलकर दूसरे जो परमाणु होते हैं उनको तोड़ते हैं और ये चेन जो है शुरू हो जाती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स का लॉस हो जाए, उदाहरण के लिए अगर उसका जो मास है न्यूक्लियर मटेरियल का द्रव्यमान बहुत कम है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद जो न्यूट्रॉन उसमें पैदा होंगे वो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से बाहर चले जाएंगे, तो आगे अब वो किसी चीज को विखंडित नहीं कर सकते और ये चेन रिएक्शन रुक जाएगा। क्योंकि जब एक बार न्यूट्रॉन्स बनने शुरू हो जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ वो वहां पर है, तो धीरे धीरे न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी, इतने न्यूट्रॉन होंगे, इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि वहां पर इतनी ऊष्मा, इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो इसके लिए इसको नियंत्रित किया जाना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या किया जाए, उदाहरण के लिए कैडमियम की रॉड्स, उनको डिप कर दिया जाता है उस रिएक्टर के अंदर। कैडमियम की खूबी यह है कि ये न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है, तो जितना ज्यादा हम उन कैडमियम की रॉड्स को उसके नीचे डालते चले जाएंगे उतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स सोखे जाते रहेंगे, एब्जॉर्ब होते रहेंगे, और हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो पैदा हुए हैं वो उतने ही बने रहें जितना हम चाहते हैं, जो ज्यादा होंगे उनको कैडमियम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। दुनिया का एक चौथाई या हो सकता है उससे भी अधिक थोरियम वो हमारे देश में है, आंध्र में बहुत ज्यादा है, उड़ीसा में है, केरल में जो बोनोसाई सैंड है समुद्र के किनारे उसमें भी थोरियम काफी है, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी मिलता है, शायद छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। हमारा देश वो है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम उपलब्ध है और उसकी माइनिंग करके हम थोरियम निकाल सकते हैं। लेकिन इस थोरियम में सबसे ज्यादा जो थोरियम होता है वो होता है थोरियम 232। अब आप देखिए कि हम जो अपने रिएक्टर्स में यूज करते हैं, जो प्राकृतिक यूरेनियम मिलता है उसमें मुख्य रूप से दो है, वैसे तीन उसके आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और एक और होता है जो बहुत कम होता है। तो हमारे पास वैसे ही दुनिया का 1-2% ही यूरेनियम था, उसमें से भी जो यूरेनियम 235 है वो उसका भी जो है बहुत छोटा अंश है, तो यूरेनियम की उपलब्धता कम है। तो क्या थोरियम से हम न्यूक्लियर रिएक्टर को चला सकते हैं, ये प्रश्न विज्ञानियों के सामने था और उसी समस्या का हल जो किया गया है वो हाल में इस बात में सफलता हासिल हुई है कि हम इस प्रक्रिया में यूरेनियम 232 जो है उसको हम बदल सकते हैं, थोरियम 232 को हम यूरेनियम 233 में बदल सकते हैं, जो फिसाइल है यानी जिसको हम फ्यूल की तरह नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन की तरह उपयोग में ला सकता है और उसके बाद आखिर में वो यूरेनियम 233 में बदल जाता है। वो हम यूरेनियम से इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि यूरेनियम के लिए हम कनाडा जैसे, कजाकिस्तान जैसे या रूस जैसे दूसरे देशों पर निर्भर थे। थोरियम हमारे अपने देश में है, इसकी कोई कमी नहीं है, हमारे देश में थोरियम की माइनिंग को बढ़ाया जा सकता है। अब हमें थोरियम मिल जाएगा तो अनुमान लोगों के अलग अलग हैं, कर कुछ लोगों का कहना है कि कई हजार साल तक के लिए हमारी ऊर्जा की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए हमारे देश का जो बजट है उसका जो सबसे बड़ा अंश खर्च होता है वो किस पे खर्च होता है, तेल और पेट्रोलियम को इम्पोर्ट करने में। अगर हम अपने आप पूरी ऊर्जा बनाने लगेंगे और हमारे देश की जो हमारा लक्ष्य भी है कि हम कुछ सालों के बाद 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा जो है न्यूक्लियर से बनाएंगे, तो हमारे देश की आवश्यकता जो ऊर्जा की है वो पूरी तरह से पूरी होंगे और अगले सैकड़ों साल तक या हजारों साल तक हमें ऊर्जा के स्रोत के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक और जो इसका इंप्लिकेशन है, हम कोयला नहीं जलाएंगे जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और क्लाइमेट में चेंज होता है। हमारे वाहन जो है वो तेल और पेट्रोलियम पर निर्भर नहीं होंगे, न तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है जिसके बारे में बार बार चिंता व्यक्त की जाती है वो भी कम नहीं होगा, ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाएंगे और वातावरण का प्रदूषण नहीं होगा। चूंकि 3,000 टन का जो कोयले का हमारा थर्मल पावर है उससे जितना प्रदूषण होता है उसके बहुत छोटा अंश का प्रदूषण जो है हमारे इससे होगा और वो भी उसके चलते समय में नहीं होगा। तो रिएक्टर से प्रदूषण नहीं होगा, रिएक्टर के लिए स्थान बहुत कम चाहिए, धुआं नहीं निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा और दूसरे फायदे इससे हैं, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी।

0: और अगर कोई देश ऐसे हैं जिनसे हमें विवशता में पेट्रोलियम या ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है और वो उन गतिविधियों का समर्थन करते हैं जो हमारे देश के हित में नहीं है, तो ये भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ।
1: जी, यानी आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह भारत के लिए लाभप्रद होगा। लेकिन हमारे नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि फुकुशिमा और चेर्नोबिल में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं?
0: जी, ये भी आपका एक बहुत रिलेवेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अब आप ये देखिए, फुकुशिमा और चेर्नोबिल या थ्री माइल आइलैंड की दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं, ये काफी पुरानी। जैसे फुकुशिमा की बात अगर हम करें जो जापान में हुआ था, ये एक बहुत ही रेयर घटना थी और उसकी स्थिति ये थी कि उस पावर रिएक्टर को बंद किया जाना है, ये निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका था लेकिन उसको बंद नहीं किया गया। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के पास उसका मेंटेनेंस का चार्ज था, उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया, तो कई साल तक उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी कि न केवल उस समय इसमें प्रॉब्लम आई, उसके साथ एक तभी जो है सुनामी भी आ गया। सुनामी आने की वजह से उसकी जो दीवार थी जो उसके चारों तरफ की थी, उस दीवार को पार करके पानी अंदर आ गया। अच्छा, उसका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खराब हो गया। तो वहां पर जो पंप लगे हुए थे जो इस न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग का काम करते थे, उनको जब बिजली मिलने बंद हो गई तो उन्होंने कूलिंग का काम भी बंद कर दिया, पंपों ने पानी पंप करना बंद कर दिया। तो कई सारे संयोग उस समय ऐसे हुए कि उसमें भी गड़बड़ हुई, सुनामी भी आ गया। और उस समय अब तो ग्रेविटी असिस्टेड कूलिंग होती है, यानी पानी ऊपर रखा रहेगा और बिजली हो या ना हो वो पानी नीचे आके हमारे टावर की कूलिंग कर सकता है और कोई खतरा नहीं हो। और बाकी अगर आप देखें तो फुकुशिमा वाले केस में भी सुनामी से मृत्यु हुई, न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं हुई। इसी तरह थ्री माइल आइलैंड में भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और जिम्मेदारी के साथ इनको चलाया जाना ये भी बहुत जरूरी है। और अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, और जैसे रूस के वैज्ञानिक ने कहा भी था कि अब जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, हमारे देश में बीवीआर के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं रूस के, मैंने देखे हैं रिएक्टर्स, अगर एक हवाई जहाज आकर भी उनसे टकरा जाएगा तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर को कुछ नहीं होगा।
1: बिल्कुल, समय के साथ नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम सुरक्षित होता जा रहा है। आप आकाशवाणी स्टूडियो में पधारे और परमाणु ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है कि अब आप जब भी समुद्र की रेत देखेंगे तो उसमें भारत के सुनहरे और ऊर्जावान भविष्य की झलक जरूर पाएंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

धड़कन फिल्म के लिए ये आवाज़ थी अभिजीत और अलका याग्निक की। और अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल को, फिल्म का नाम कृष।

मन फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।

हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से आज का यह अंक समर्पित है हिंदी साहित्य के संवेदना, विचार और सामाजिक सरोकार के साहित्यकार पद्मनारायण राय को। हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा में अनेक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को दिशा दी है। इन्हीं साहित्यकारों में पद्मनारायण राय का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। वो केवल लेखक नहीं थे बल्कि एक सजग चिंतक, संवेदनशील नागरिक और समाज के प्रति उत्तरदायी साहित्यकार थे। पद्मनारायण राय का व्यक्तित्व सादगी, विचारशीलता और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण था। उनका जीवन अनुभवों से भरा हुआ था और यही अनुभव उनकी रचनाओं की आत्मा बने। वो मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना और मनुष्य को मनुष्य के करीब लाना है। उनका स्वभाव सहज, सौम्य और विनम्र था। वो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी गहरे अर्थ खोज लेते थे। यही जीवन दृष्टि उनके साहित्य को विशेष बनाती है। पद्मनारायण राय ने हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में आम जन जीवन की पीड़ा, संघर्ष, आशा और विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और भाव प्रधान है। वो अलंकारिकता और शब्दाडंबर से दूर रहकर भाव की सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं। उनके लेखन में कृत्रिमता नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूति दिखाई देती है। पद्मनारायण की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना, सरल और प्रभावशाली भाषा, जीवन के यथार्थ से गहरा जुड़ाव। वो समाज की विसंगतियों पर चुप नहीं रहते थे। उनके लेखन में अन्याय, असमानता और संवेदनहीनता के प्रति मौन विरोध दिखाई देता है, लेकिन ये विरोध कटु नहीं बल्कि विचारोत्तेजक होता है। हिंदी साहित्य में पद्मनारायण राय का स्थान एक ऐसे लेखक के रूप में सुरक्षित है जिसने साहित्य को जन सामान्य से जोड़ा। उनका लेखन पाठक को सोचने पर विवश करता है और आत्ममंथन की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने साहित्य को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे जीवन की धड़कनों से जोड़ा। पद्मनारायण राय केवल लेखक नहीं थे, वो संवेदनाओं के सजग प्रहरी थे। उन्होंने शब्दों को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया बल्कि उन्हें समाज की पीड़ा, संघर्ष और आशा की आवाज़ दी। उनकी रचनाओं में मानवता की सच्ची पुकार सुनाई देती है। पद्मनारायण राय का साहित्य आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उसमें मानवता की आवाज है। वो उन रचनाकारों में से हैं जिनकी लेखनी समय के साथ और अधिक अर्थपूर्ण होती जाती है। उनका जीवन और साहित्य हमें ये सिखाता है कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने की प्रेरणा दे। पद्मनारायण राय हिंदी साहित्य की उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं जहां शब्द केवल शब्द नहीं रहते बल्कि समाज का दर्पण बन जाते हैं।

0: पद्मनारायण राय की लेखनी, उनके विचार और उनकी संवेदनाएं सदैव हमारे साथ रहेंगी। वो शब्दों में नहीं, हमारे चेतना में जीवित हैं। समय और संवेदना के रचनाकार पद्मनारायण राय। अभी आप ये विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। अब इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
2: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्त।

0: नृत्यों की कला से, साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गजलें। कलाकार हैं प्रतीक्षा मिश्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रतीक्षा मिश्रा की आवाज़ में गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से।

इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं फूल बने अंगारे, माई लव और उम्र कैद, और आवाज़ थी मुकेश की। इसी के साथ चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कला

0: कृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर

0: बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया।

गया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: CBSE makes study of three languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins three bronze medals in the women's 77kg category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें COVID-19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जना मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी ASML ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। ASML लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है, जो छोटे साइज के

जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है, जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जुनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया गोटा चांद लोदिया थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हलके से 9 मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमूई तौर पर 64 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं, लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहान के इनका से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिना उम्मीदवारों को यकजा किया था और पुणे की अपनी रिहायशगाह पर इन तलबा के लिए खसूसी कोचिंग क्लासेस का एहतमाम किया था। उसे इस महीने की 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस केस के सिलसिले में दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहल्यानगर से 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 मुलजिमों को अदालत में पेश किया गया और तफसीली पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील और रिमांड पर भेज दिया गया। जिन दीगर 2 मुलजिमों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें भी पुणे की अदालत में पेश किया गया और राहदारी रिमांड हासिल करके उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सीबीआई ने मुल्क में 6 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई भी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में मुबैना बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई की तहवील में भेज दिया है। खसूसी सीबीआई जज अजय गुप्ता ने इन दोनों को सीबीआई की तहवील में दे दिया है। इससे कबल जांच एजेंसी ने यह दलील पेश की थी कि मजीद छानबीन और वसीतर साजिश का पता लगाने के लिए इन दोनों को कौमी राजधानी से बाहर ले जाने की जरूरत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने इस साल 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए 3 जबानों के पढ़ने को लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और स्कूली तालीम 2023 से मुतालिक निसाब के कौमी तरीक़ेकार से मुताबकत रखते हुए 3 में से कम अज कम 2 मकामी जबानें होनी चाहिए। सीबीएसई ने वजाहत की है कि 10वीं जमात में तीसरी जबान के लिए कोई बोर्ड इम्तिहान नहीं होगा और उसने मजीद कहा कि R3 के लिए सभी जायजे का अमल मुकम्मल तौर पर स्कूल पर मबनी और दाखिली होगा। बोर्ड ने कहा कि R3 में तलबा की कारकर्दगी CBSE सर्टिफिकेट में मजकूर होगी। CBSE ने यह भी इतला दी कि R3 की वजह से किसी भी तालिब इल्म को 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान देने से रोका नहीं जाएगा। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे ने मुल्क में बीच ही में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने के मामले पर तबादला ख्याल के लिए आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें खासतौर

0: 14 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों के ताल्लुक से इस तरह के रुझान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की मुजवजा नई पहल के लिए अमल दरामद से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। स्कूली तालीम और खानदगी महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार की सदारत में ये मीटिंग हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्कूली तालीम और ख्वानदगी की महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने मीटिंग के दौरान बताया कि दस्तियाब आदद शुमार के मुताबिक पहली क्लास में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 62 बारहवीं क्लास तक पहुंचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 14 से लेकर 18 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे सरदस्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि इक्तसादी मुश्किलात, घरेलू जिम्मेदारियां और रोजी रोटी से मुतालिक चैलेंज उन बड़ी वजूहात में शामिल हैं जिनकी वजह से बच्चों को तालीमी निजाम बीच में ही छोड़कर अलग होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि असल तवज्जो बच्चों को बाजाबता स्कूलिंग में फिर शामिल करने पर होनी चाहिए और जो रेगुलर स्कूल वापस नहीं आ सकते उनके लिए सीखने के मुतबादिल होने चाहिए जिनमें NIOS और स्टेट ओपन स्कूल शामिल हैं। फौरी इकदामात की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब कुमार ने कहा कि कम से कम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह तक हर बच्चे को तालीम तक रसाई होनी चाहिए जो मकामी इक्तसादी मौके के मुताबिक रोजगार मिलने के हुनर से हम आहंग हो। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे के तहत गैर कानूनी तौर पर तश्कील दी गई सालिसी की अदालत की जानिब से दिए गए ताज़ा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इसे बिला जवाज करार दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि नाम नहाद सालिसी अदालत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे की अमूमी तशरीह के मामलों पर फैसला सुनाया था और साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत मजकूरा सालिसी इदारे को कानूनी एतबार से दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे को मुअत्तली की हालत में रखने के भारत के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहदे पर दस्तखत किए थे जो दरियाए सिंध के पानी में हिस्सेदारी और इसके इस्तेमाल से मुतालिक था। पिछले साल पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद भारत ने मजकूरा मुआहदे को मुअत्तली की हालत में रखने का फैसला किया था और यह कहा था कि यह कदम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत उसके इक़्तदार आला के हुकूक के ऐन मुताबिक है और ऐसा उस वक्त तक नाफिज रहेगा जब तक कि पाकिस्तान सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी के लिए मदद व एआनत बंद नहीं कर देता। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए अंडमान और निकोबार जजायर जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के हिस्सों में भी कल इसी तरह का मौसम रहेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते पेचिंग के अपने 2 दिन के दौरे में चीन के रहनुमा शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। एक बयान में क्रेमलिन ने कहा है कि सदर पुतिन इस महीने की 19 और 20 तारीख को यह दौरा करेंगे और ये चीन और रूस के दरमियान 2001 के दोस्ती के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के लीडर इज़ुद्दीन अल हद्दाद को हलाक कर दिया है जिसका 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में अहम रोल था जिसके बाद गजा में जंग शुरू हो गई थी। इसराइली फौज ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा शहर में एक फिजाई हमले में मारा गया। फौज ने बताया कि वह हमास की मिलिट्री क्यादत में आखिरी सीनियर कमांडर था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों में कलीदी रोल अदा किया था। गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की संजना ने खवातीन के 77 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 3 तमगे जीते। संजना ने स्नैच जुमरे में 96 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क जुमरे में 124 किलोग्राम का वजन उठाया और मजमूई तौर पर 220 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे के 3 तमगे हासिल किए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज बैंकॉक में मलेशिया के गो सी जिफई और नूर इजुद्दीन को सेमीफाइनल में 19-21, 22-20 और 21-16 से हराकर मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। कल फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर अजम ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी ASML ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े

0: मुलजिम पीबी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया है। और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था।

ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वज़कई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
2: मस्त बहार।

0: मेरे लिए।
1: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला

0: फिल्म भंगागारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद, मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966, निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाए का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपने

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमीन पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल तारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।
4: जाने।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरअसल आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता, मैंने मेरे हाथ में किधर है।
1: जी जी

मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने

और मैं चला जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना। मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने, दादा आप कल की बात कर रहे थे, मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ, मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों